0: अब मैं चाहते हैं।
1: अरे ये क्या कह रही हैं
2: आप? अपनी और जाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और जाइए।
3: हाँ गाओ।
0: मैं और नहीं गा सकती।
3: गाओ,
1: आपको गाना पड़ेगा।

हमने कई गाने एक साथ गाए, इसलिए बड़ी अच्छी दोस्ती थी। गीता बहुत जल्द किसी भी बात से परेशान हो जाती थी और परेशानी बढ़ जाती तो सीधे मेरे पास आ जाती। उसे मुझसे मिलने की जितनी जल्दी हुआ करती थी, उतनी ही जल्दी गीता ने इस दुनिया से जाने में भी दिखाई। ये वक्त का सितम नहीं तो और क्या।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो,

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या

0: करता है रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है, सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन. इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन. आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे. आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा. एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है एकाग्रता व मन में निकट संबंध। जैसा कि हम सभी देखते हैं, एकाग्रता व मन में निकट का संबंध है। किसी कार्य में जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति मन में गहरा उतरता जाता है। कार्य के प्रति लगन, निष्ठा, एकाग्रता एवं मौन से कार्य कम समय पर पूरा हो जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध जैन साहित्यकार टोडरमल उन दिनों अपना प्रसिद्ध ग्रंथ मोक्ष मार्ग लिख रहे थे। एक दिन होता क्या है कि भोजन करते समय वह अपनी माँ से बोली, माँ लगता है आज आप भोजन में नमक डालना भूल गई। तो माँ जो है वो मुस्कुराई और बोली, बेटा लगता है आज दो दिन अपना ग्रंथ पूरा कर लिया है। टोडरमल चौंक गया और पूछा, हाँ चकित होकर कहा कि माँ, हाँ माँ मेरा ग्रंथ आज पूरा हो गया है, लेकिन आपको इस बात का पता कैसे चला? माँ ने कहा कि नमक तो मैं तेरे खाने में 6 माह से नहीं डाल रही थी, लेकिन उसका अभाव तुम्हें आज पहली बार अनुभव हुआ, क्योंकि तुम आज ग्रंथ लिखन में धारित मौन व लगन एकाग्रता से बाहर आ गए हो। इससे मैंने अनुमान लगा लिया। तो आपने देखा, माँ ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को कैसे पहचान गया कि आज इसने अपने कार्य को पूरा कर लिया है। इसी तरह देखते हैं एकाग्रता की एक मिसाल और है स्पेस एक्स अंतरिक्ष अभियान के संस्थापक जो एक है एवं टेस्ला कार के जो कंपनी के मालिक है एलन मस्क। उनका भी यही है कि उसे बचपन में पुस्तकों के अध्ययन का शौक था। वो पुस्तक में इतना एकाग्र हो जाते थे कि उसे माँ के पुकारने का भी पता नहीं चलता था। उसकी माँ को यह लगने लगा कि मेरे बेटे के कान खराब है, क्योंकि निकट से पुकारने पर भी उसे मेरी आवाज जो है वो सुनाई नहीं पड़ती है। उसने अपने पुत्र के कान का ऑपरेशन तक करा डाला, परंतु बात नहीं बनी। माँ को बाद में यह समझ में आ गया कि मेरा पुत्र एकाग्रता की पराकाष्ठा रखता है, जिससे वह अपने कार्य में इतना मशगूल हो गया है कि उसे

आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देता। छात्र जीवन में एक बार इलन मस्क स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ रहा था, सड़क से एक बाराती जो है वो बाराती बैंड बजाते हुए वहां से गुजर रहे थे। थोड़ी देर में एक व्यक्ति वहीं पर आया और वहां पर आकर इलन से पूछा कि बैंड पार्टी इधर से जा चुकी है क्या? इलन ने कहा कि मैं पढ़ रहा था। अतः कौन आया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी होती है एकाग्रता। एकाग्रता जो है मौन के गर्भ से ही पैदा होती है। तो आपने देखा एकाग्रता अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो वो एकाग्रचित होकर ही हर कार्य को संपन्न करता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है एकाग्रता व मन में निकट संबंध। यह देखा गया है कि जिसकी जीवन में मन व पवित्रता की जितनी प्रधानता होती है, उसे वर्तमान में ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से चल रहे जो कोई ऐश्वर्य कार्य का बोध उतनी ही सहजता से हो जाता है। मौन व पवित्रता अमीरों के बजाय गरीबों में ज्यादा है, अतः वे ईश्वर के समीप सहजता से आ जाते हैं। मौन जो है ज्ञान मन चिंतन से गहराता है और तन मन धन की पवित्रता से ईश्वर से योग युक्त होना सहज हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं गणेश जी की एकाग्रता, यहाँ पर देखते हैं यादगार है ग्रंथों में वर्णन आता है कि वैदिक ज्ञान के विस्तार के बाद महर्षि वेदव्यास ने 100,000 श्लोकों वाले महाभारत को लिपिबद्ध करने का संकल्प किया। कहा जाता है कि वह धारा प्रवाह श्लोकों का उच्चारण करते थे और गणेश जी की हम एकाग्र होकर उसे लिपिबद्ध करते थे। गणेश जी उसे एकाग्र होकर लिपिबद्ध करते थे। कार्य पूरा होने पर महर्षि ने गणेश जी से कहा, महाभारत आपकी लेखनी से प्रस्तुत ग्रंथ है, मैंने तो केवल शब्दों की सृष्टि की है, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। गणेश जी ने कहा, प्रत्युत्तर उन्होंने दिया कि महर्षि, मैं इस कार्य में ये श्रेय का पात्र नहीं हूँ, आप तो ज्ञान की साक्षात मूर्ति और शब्द ब्रह्मा के साक्षात कोश ही। महर्षि ने देखा था कि लेखन के दौरान गणेश जी पूरे समय पूरी तरह से मौन थे, अतः उन्होंने प्रश्न किया, गणनायक मैं आपके वाक संयम व मौन को देखकर हतप्रभ था, कृपया मौन के महत्व से मुझे अवगत कराए। हम इसकी आप कृपा करें कि आखिर मौन क्या है। इस पर गणेश जी ने कहा, इंद्रियों का दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, दीर्घायु व ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इंद्रियां संयम का बड़ा महत्व है। वाक संयम को जो है साध लेने से अन्य इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। अधिक बोलने से अक्सर अनगर हम जो है वो अवांछित शब्द मुख से निकलते हैं, इससे राग द्वेष ईर्ष्या जैसी दुर्गुण बनते हैं। अतः एक एक शब्द विचार करके ही बोलना चाहिए। इस तत्व ज्ञान से महर्षि वेदव्यास पुलकित हो।

我不会离开，你马上手臂表示就一定要来离开你。我说那边可能是一件问题，你不要为这边你问题的高度大概把你们讲个了，我就是我不会投的，都已经完人的都一起给咱हम लेते ही छोटा सा ब्रेक और एक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है मौन जो है एकाग्रता व मौन में निकट संबंध।

तो हम देखते हैं कि दर्शन जो है आत्मा करती है किस चीज की, करोड़ों सुनते हैं परंतु कोई कोई सुन पाता है, क्योंकि सुनना एक बात है और सुन लेना बिल्कुल दूसरी बात है। सुनना अर्थात शब्दों को प्राप्त करना, सुन लेना अर्थात अभिप्राय यही ज्ञान को प्राप्त करना, उस पर अमल करना। सुनना क्रिया है और सुन लेना क्रियान्वयन है। मंदिर में करोड़ों भक्त आते हैं आरती गाने और प्रवचन सुनने को क्या कहते हैं, क्रिया करते हैं, परंतु कोई कोई ही आरती के भाव में एक कर भाव विभोर होते हैं और प्रवचन से स्वपरिवर्तित होते हैं। सुन लेना अर्थात समझ लेना, इसे कर्म में लाकर लाभान्वित होना। देखा जाए तो भक्तों के द्वारा मंदिर में इष्ट देव को मात्र देखा ही जाता है, बिरला ही कोई भक्त होता है जो देखता नहीं बल्कि साक्षात्कार या दर्शन करता है। देखती आंखें हैं और दर्शन आत्मा करती है। जो दर्शन करता है वह देहभान में नहीं रहता और इष्ट देव के गुणों व स्वरूप को जानता है, उनके स्वरूप में खो जाता है। वह फिर तृप्तता का अनुभव करता है। एक राजयोगी योग के दौरान खुली आंखों से सामने के स्थूल पदार्थों को नहीं देखता बल्कि मन की सूक्ष्म आंखों से परम धाम में परम पिता शिव का दर्शन कर रहा होता है। तो आपने देखा कि अगर मनुष्य चाहे तो अपनी एकाग्रता से, अपनी दिव्य गुणों से जो उनके अंदर होती है, आत्मा के जो दिव्य गुण है, उसको एकाग्रचित अगर कर लिया जाए, उसमें अगर टिक जाया जाए, तो उससे एक मौन में रहना तो एक उसका जो निकट जो उसका संबंध है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसकी एकाग्रता के कारण वो ईश्वर से भी अपनी जो है उनकी तृप्तता का अनुभव कर सकता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धार इस कार्यक्रम में मुझे सुन आपका फिर से स्वागत करती और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है एकाग्रता व मन में निकट संबंध। जैसे कि हम देखते हैं मनुष्य सारे दिन में पता नहीं कितने लोगों से कितना कुछ सुनता व देखता रहता है और यदि वह सारी बातों पर एकाग्र होकर अमल करे तो उसका दिमागी संतुलन गिर जाए। यह कुदरती व्यवस्था है कि मनुष्य काम की बातों को तो सुनकर उन पर अमल करता है परंतु बेकार की बातों को सुनते हुए भी अनसुना कर देता है। उसी प्रकार वह सारे दिन में कुछ न कुछ बोलता है परंतु उसमें दूसरों के द्वारा अमल करने के लायक बातें कम ही होती है। तो बेकार की जो बातें होती हैं, उन बातों को तो बोलना बंद क्यों नहीं किया जाए? कोई भी मनुष्य भला यह क्यों चाहेगा कि वह बेकार की बातें भी बोले और दूसरे उसे सुना हाँ और अनसुना कर दे। परंतु उसके स्मृति में ही यदि बहुत ज्यादा बेकार भरा हो तो वह बेकार स्वतः ही चेतना में आकर जीव से बाहर रहने लगता है। यदि इससे बचना है तो

जागरूकता का अभ्यास करना होगा, अर्थात यह ध्यान रखना होगा कि अवचेतन मन में भरी व्यर्थ की बातें लंबे समय तक स्मृति में ताजा न की जाए, ताकि वे पहले पुरानी भी पढ़कर और फिर बहुत पुरानी में पढ़कर अवचेतन मन में चली जाए और अंततः अपना वजूद खो दे। फिर साथ साथ यह भी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ नया विकार न पैदा किया जाए, अर्थात अर्थहीन महत्वहीन बातों को ना तो बोला जाए और न ही सुना जाए। जीव के मन का अभ्यास भी इसमें सहायक होता है, या फिर मित्तभाषी होकर रहा जाए जो श्रेष्ठ संघ से संभव है। तो आपने देखा कि हमें अगर मन को धारण भी करना है, हाँ, मन का जो निकट जो संबंध है उसकी एकाग्रता से ही उसका निकट संबंध है, और उसमें अगर हमारी एकाग्रता हमारी दृढ़ संकल्प के साथ हो तो उसपे हम स्वतः ही हम उस पर अमल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्ते को एक नए नजरिए से देखते हुए एक बार फिर इस श्रृंखला में हम आपके साथ हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। जब नजदीक से देखा तो हमने ये पाया कि चाहे वो रिश्ता घर का हो, परिवार का हो या फिर बाहर हमारे जहां हम काम करते हैं हमारे ऑफिस का हो, उस रिश्ते को अगर आज जो कुछ मैंने जाना है, सीखा है अपने बारे में, उसको अगर मैं अपनी जिंदगी में लेकर आती हूं तो हर रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है। आज उस रिश्ते की बात करते हैं जो कि सचमुच खूबसूरत ही है, क्योंकि कहा जाता है कि बाकी सब रिश्ते तो शायद हमारे हाथ में नहीं होते, बने हुए होते हैं, लेकिन ये रिश्ता हम खुद चुनते हैं और वो रिश्ता होता है एक दोस्त का। आज कहीं न कहीं उसमें भी दरार पड़ती नजर आ रही है, कहीं अपेक्षाएं हैं दोस्त से, कहीं हमें लगता है कि हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास तोड़ा गया है, कहीं न कहीं पीड़ा उसमें भी नजर आ गई है। तो ऐसा क्या हो रहा है इन रिश्ते में भी, इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, आज उस बहुत खूबसूरत रिश्ते की हम बात करना चाह रहे हैं कि जो हर रिश्ते से बड़ा कई बार बन जाता है। हम हर एक की बात छोड़ देते हैं लेकिन अपने दोस्त की बात मान लेते हैं, वो दोस्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन आज के इस दौर में कहीं न कहीं उस दोस्ती को भी हमने ऐसा लगता है कि खो दिया है। हम हर बार ये कहते नजर आते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, कहां गई वो प्योरिटी दोस्ती में।
1: हम अपने रिश्ते किन चीजों पर आधारित करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप हैज टू बी परमानेंट। अगर फाउंडेशन कोई टेम्पररी चीज है तो वो फाउंडेशन हेल्थी रहेगी, जब वो टेम्पररी चीज में कोई परिवर्तन आएगा। अब हमारी दोस्ती, क्योंकि दोस्त तो हम खुद से चूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई मे बी इट्स द ओनली रिलेशनशिप जहां हमारे पास फुल फ्रीडम है। हम अपनी चॉइस से यू नो वी डिसाइड कि हम किसके साथ ये संबंध जोड़ेंगे, बाकी सारे संबंध तो जुड़ जाते हैं या बने हुए मिलते हैं। तो इसमें ये किस बात पर आधारित है, इज इट बेस्ड ऑन फिजिकल थिंग्स, अगेन टेम्पररी थिंग्स, लुक्स, दूसरा दिखने में कैसा है, फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटस, डिग्री, यू नो पोजिशन, ऑल दीज थिंग्स विच आर टेम्पररी। क्योंकि आज बहुत बार हम देखते हैं कि इन चीजों पर दोस्ती बनती है, यू नो ये इस पोजिशन पर है, ये तो बहुत काम की पोजिशन है, इनके साथ दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए, यू नो तो ये रिश्ता बनाकर रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता मेरे काम आने वाला है। तो ये रिश्ता क्या होगा, यू नो दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन, आज पोजिशन है तो आपने रिश्ता बनाकर रखा हुआ, पोजिशन गई, रिश्ता फिनिश्ड। तो फाउंडेशन क्या है, तो ये जब हम अपनी दोस्ती ये संबंध में जोड़ते हैं, इसका फाउंडेशन शुड बी वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ द सोल रादर देन द रोल, जो उन्होंने अचीव किया है, अक्वायर किया है इस जीवन में, उस पर आधारित नहीं हो सकता। और जब वैल्यूज पर आधारित होगा तो वो परमानेंट है, और जो परमानेंट फाउंडेशन है वो हर ऊपर नीचे बात को क्रॉस करके चली जाएगी क्योंकि उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट डू आई लाइक इन यू, व्हाट इज इट अबाउट यू दैट लाइक, यू नो आई लाइक इट, विच वैल्यू अबाउट यू इज दैट यू नो अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप, दैट

0: is very important. And once I base it on those values, तो आपकी values कभी change नहीं होंगे, कभी भी नहीं. आप परिवर्तन हो सकते हैं, change होंगे, that will always be for the better. And once I have accepted you, कई बार लोग कहते हैं लेकिन उनके अंदर वो values थी जो आज
1: नहीं
0: है, शायद हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर थी जब हमारा ये संबंध जुड़ा था, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि अगर वो कहीं उस ट्रैक से किसी और रास्ते पर जा रहे हैं, हमने उन्हें देखा है उस रास्ते के ऊपर, तो हम दोस्त हैं, तो हम उन्हें फिर से उस रास्ते पर आने में सहयोग दे सकते हैं. Rather than saying कि आपके अंदर वो वैल्यूज थी जिनके लिए मैंने आपसे दोस्ती की, अब वो वैल्यूज नहीं है, सो we move apart. Then that was never a friendship anyways.
1: Again, दोस्ती जैसा आपने कहा कि अगर हम स्कूल लेवल पर बात करते हैं, क्योंकि वहीं से वो उसकी नींव पड़ जाती है, यहाँ देखा ये जाता है कि दोस्त के प्रति भी हम पोजेसिव हो जाते हैं. हमें ये लगता है कि ये मेरा दोस्त है तो ये मेरा ही रहेगा, वो मेरे जो मुझसे मेरी जिससे लड़ाई है उसका दोस्त नहीं हो सकता, या अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट
0: अच्छा,
1: है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वो है अगर, तो वो फिर किसी और का दोस्त कैसे हो सकता है. तो ये जो दो एस्पेक्ट हैं, मैं अभी बिल्कुल स्कूल और कॉलेज लेवल की बातें कर रही हूँ, कि जहाँ पे दोस्ती एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पोजिशन लेती है.
0: एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये रिलेशनशिप हम बार बार देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सोल्स, दो आत्माओं के बीच स्नेह और शक्ति, इसका लेन देन कहे या एक्सचेंज कहे, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आत्मा का सिर्फ मेरे साथ ही हो सकता है, और अगर और किसी के साथ हुआ तो इसका मतलब मेरे साथ कम हो जाएगा. नेवर. इट्स एनर्जी विच डजंट हैव अ फिजिकल पैरामीटर. टाइम का फिजिकल पैरामीटर हो सकता है कि अगर आप कल मेरे साथ एक घंटा स्पेंड करते थे, अब आपके और भी दोस्त बन चुके हैं, तो शायद आप मेरे साथ 5 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, बट देन इट वॉज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ एनर्जी एक्सचेंज. तो वेयर इज द क्वेश्चन कि अगर आपकी औरों के साथ रिश्ता जुड़ जाता है तो उसमें मेरे साथ कोई अंतर हो जाता है. ये जो पोजेशन की बात आती है या पोजेसिवनेस की बात आती है, ये अटैचमेंट है. Attachment to the image कि you are mine, you know, ego, ये बहुत सटल ego है, क्योंकि हमने कहा ego is attachment to a wrong image of myself. तो ये एक attachment है कि you are mine. And अब अगर मैं देख रही हूँ कि आप किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और के साथ बहुत ज्यादा time spend कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो image को insecurity होने लगती है कि कहीं you will leave me and go away. और जहां वो इनसिक्योरिटी होने लगती है, दैट इज व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग हर्ट एंड आई माइट रिएक्ट कि आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं, आप उनके साथ क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एंड दिस कैन हैपन इन एनी केस, मतलब वी हैव सीन कि इवन बिटवीन टू गर्ल्स,
1: दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग, नॉट ओनली बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय,
0: एनी रिलेशनशिप कि बिटवीन टू गर्ल्स, ओ हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अब मेरी फ्रेंड की दोस्ती ना किसी और से हो गई है, तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा. Why? I need to ask myself. आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन है, और वो कितने भी आत्माओं के साथ हो सकता है, क्योंकि उस पर कोई टाइम की बॉन्डिंग नहीं है. इट इज एनर्जी फ्लो, एंड वो जितना उल्टा सबके साथ फ्लो करे, आई शुड फील गुड. वाई डू आई कीप रिस्ट्रिक्टिंग इट? क्योंकि आई क्रिएटेड दिस इमेज दैट यू आर माइन. मेरी आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ गई. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी असली आइडेंटिटी भूल गई थी. तो जब हम वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है कि यू आर माई फ्रेंड या आई एम योर फ्रेंड, ये मेरी आइडेंटिटी है कि आई एम योर फ्रेंड, ये मेरी आइडेंटिटी है, और जहां मुझे लगता है कि आप कहीं और जा रहे हैं, तो मेरी वो आइडेंटिटी हिलने लगती है कि यू नो ये तो बहुत लोगों के फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो वो मेरी आइडेंटिटी जब हिलती है तब अंदर से डर लगता है.
1: बिल्कुल. और बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो मेरा, कई बार पता चलता है कि ओहो वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है. कैन आई वांट टू आस्क यू समथिंग? दोस्त जब बनता है तो हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें लगता है कि हमें समझ रहा है, और हम सब कुछ शेयर कर लेना चाहते हैं. क्या शेयर मुझे कर लेना चाहिए सब कुछ? ये बहुत से सवाल हैं स्टूडेंट बच्चों के भी. क्या मैं कंप्लीट ट्रस्ट कर लूं अपने दोस्त पे कि वो मेरी बात कहीं और स्प्रेड नहीं करेगा, मेरी हर बात मैं शेयर कर सकता हूं, या मुझे सोचना चाहिए उसको?
0: सी, इफ इट इज अ फ्रेंडशिप, तो वो ट्रस्ट के बिना तो फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप इज ट्रस्ट. अगर ट्रस्ट नहीं है तो कौन सी फ्रेंडशिप? अब जहां तक शेयरिंग

0: बताती है, अगेन दिस विल बी अ पर्सनल डिसीशन हरेक का, लेकिन हमें एक आवश्यकता लगती है कि कोई ऐसा हो जिसके साथ हम बात करें. और जनरली क्या होता है, हम बात एक्चुअली अपने आप से ही कर रहे हैं. You know, even if I am talking to you about a problem of mine, normally what happens कि मुझे आपसे advice नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई राय नहीं चाहिए उसके बारे में, मुझे सिर्फ कोई चाहिए जिसके सामने मैं बैठकर वो बोल सकूं, और बोलते बोलते बोलते मुझे खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी,
1: सोल्यूशन मिल जाएगा.
0: इट्स नॉट कि आप मुझे सोल्यूशन देंगे, क्योंकि उस पोजीशन में तो मैं ही हूँ, वो प्रॉब्लम में मैं ही हूँ, तो उसका सोल्यूशन तो मेरे पास है. लेकिन जनरली वी फील लाइक शेयरिंग विद पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर अपने आप से बात करना और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, ये हम थोड़ा सा अपने आप से डिस्कनेक्ट होने के कारण वो कर नहीं पाते हैं. तो जब हमें कोई मिल जाता है जिनसे हम वो बात कर सकते हैं, एंड विच इज अ गुड थिंग, इफ आई कैन शेयर विद समबडी तो वाई नॉट, बट विद फुल फेथ.
1: शिवानी, एक और एस्पेक्ट में लेती हूँ कॉम्पिटिशन. साथ साथ हम पढ़ रहे हैं और मुझे बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसकी परसेंटेज मुझसे ज्यादा आ जाएगी. कैन आई कम्पीट विद माई फ्रेंड? क्योंकि कम्पीट करना है अगर मुझे, तो फिर दोस्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ कम्पीट कर रहा होगा या कर रही होंगी. सो कैन आई कम्पीट विद माई फ्रेंड, और जिसके साथ मैं कम्पीट कर रही हूँ सेकेंड या थर्ड पोजिशन के लिए, वो मेरा दोस्त हो सकता है?
0: Yes, हो सकते हैं. जनरली वी फील देर आर अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स विच यू नो एवरी वन इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इन क्लास. लेकिन कि कॉम्पिटिशन कोई चीज नहीं है. आपको मार्क्स चाहिए, आपको एक परसेंटेज चाहिए, वो भी जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम बना हुआ है उस अनुसार हमें परसेंटेज चाहिए टू गो इन टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट और टू गो इन टू द नेक्स्ट प्रोफेशन. लेकिन उसमें ये तो कहीं भी नहीं है कि अगर दूसरे को भी उतने मार्क्स मिले तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है. सी, इफ माई फ्रेंड डजंट डू वेल, I will not like it. You know, I will feel, because the friend is in pain. वो दर्द में है तो मुझे खुशी कैसे हो सकती है? और अगर फ्रेंड खुश है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा. बाकी इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन. आई परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, ही और शी ऑल्सो परफॉर्म्स टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी. फाइनली एक ने फर्स्ट आना, एक ने सेकेंड आना, एक ने थर्ड, एंड दैट इज डजेंट मैटर. माई परसेंटेज, येस, मे बी दैट मैटर्स, एंड आई जस्ट फ्लो विद इट. एंड इन फैक्ट इट्स फन टू डू इट टूगेदर. It should be fun rather than being a negative undercurrent. We can really do it with that spirit of let's do better than what we did before. Rather than let me do better than you and you do better than me, let me outperform myself rather than outperform you.
1: Yes, that's very important. Shivani, ye shayad wo rishta hai jise hum maan ke chal sakte hain ki humne chuna hai to hum kabhi bhi chhod sakte hain. लेकिन यही रिश्ता वो होता है जिसमें हम सबसे ज्यादा भरोसा भी करके बैठे होते हैं. ये वो रिश्ता है जो हमें सबसे प्रिय होता है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ या वो भी छोड़ सकता है, और दूसरी तरफ ये कि क्योंकि ये मैंने अपनी चॉइस से बुना है तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, इसके लिए क्या मैं वर्क कर सकता हूँ?
0: सी, एक तो वी लिव टू मच इन पीछे क्या हुआ था या आगे क्या होने वाला है. तो ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना कि रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, रिश्ते कभी टूटते नहीं है. एक एनर्जी कनेक्शन कभी टूटता नहीं है. ये हो सकता है कि समय परिस्थितियों के कारण हम कभी बहुत ज्यादा समय मिलते हैं और कभी हम काफी समय नहीं मिल पाते. हो सकता है एक कंट्री में चला जाए, दूसरा एक दूसरी कंट्री में हो, तो ये नहीं बोलेंगे कि रिश्ता टूट गया. वी जस्ट अवे. इट्स जस्ट दैट अर्लियर हम एक ही क्लास में एक ही बेंच पे बैठते थे, तो वी वर 8 आवर्स टूगेदर, एंड अब हम बिल्कुल एक दो अलग देशों में है. रिश्ता कहाँ टूटा? रिश्ता टूटता नहीं है. समय परिस्थिति हमें नजदीक या दूर ला सकती है, लेकिन हमें अभी जब हम स्कूल या कॉलेज में है, हमें बैठकर ये नहीं सोचना है कि वी विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर, ये कभी नहीं टूटेगा. टूडे, अभी का मोमेंट क्या है, अभी हमारा ये संबंध कैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सारा दिन फ्यूचर के बारे में सोचना, बिकॉज हम एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. अगर आज हम दोनों एक दूसरे को गारंटी पेपर भी लिखते कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा सो कॉल्ड, या वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल हैपन लाइक दैट. हो सकता है कि अगले 10 साल आप एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले, ये पॉसिबल है. या हो सकता है परिस्थितियां ऐसी कुछ आ जाए कि आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो भी. तो वाई गेट इन टू दैट दैट कन्फ्यूजन? इट्स अ कन्फ्यूजन एंड इट्स एन अननेसेसरीली कहें जकड़ के रखने की कोशिश करना. रिश्ता ये नहीं है कि आप मेरे ही हो और आप सारी उम्र मेरे ही रहोगे. नो, इट इज वी आर एट द प्रेजेंट

0: मोमेंट टुगेदर एंड हमें ये मोमेंट अच्छा लगता है, अगला मोमेंट अच्छा लगता है, ईच मोमेंट को हम, सो दैट्स लिविंग इन द प्रेजेंट। और ये लिविंग इन द प्रेजेंट हर एक रिश्ते में इम्पोर्टेंट है।
1: मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, दोस्त में क्या इतनी ताकत होनी चाहिए? मुझे दिख रहा है कि मेरा दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है, चाहे वो स्मोकिंग की शुरुआत है, चाहे वो कोई भी और लत है या फिर किसी और नेगेटिविटी की। हाउ कैन आई ब्रिंग हिम बैक?
0: एम्पावरमेंट विद लव, क्योंकि लव वो पावर है जो वो वापस उनको ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति दे देती है। लेकिन वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि डोंट स्मोक, डोंट डू दिस, क्योंकि हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि ये अगर इस आदत की तरफ जा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई आदत की तरफ जाते हैं उसका रीजन होता है कोई ना कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, या तो डिप्रेशन, या घर में कोई इनसिक्योरिटी, या कोई स्ट्रेस, कोई फियर, कुछ इस तरह के नेगेटिविटी होगी। तो एक दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चीज के रूट पर आना। अभी तक बाह्य रूप से डोंट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजरियस, ये दैट पर्सन ऑलरेडी नोस। सो वी आर नॉट गिविंग लेक्चर्स, वी आर नॉट टू गिव एडवाइस, वी हैव टू टॉक टॉक टॉक, शेयर एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रूट जिस कारण से हम इस राह पर चलने लगे, और फिर उस रूट को एड्रेस करने की कोशिश करना। वो बिहेवियर तो बहुत छोटी बात है, वो एडिक्शन जिसको ले लिया वो बहुत छोटी बात है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर क्या पेन है, वो पेन को अगर मैं हील करने में या उसके साथ शेयर करने में वो सहयोग दे सकूं, दैट इज फ्रेंडशिप, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो। सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, गिव अ लॉट ऑफ लव एंड फाइंड आउट द रीजन फ्रॉम देयर, दैट विल बी हीलिंग एंड विद एम्पावरमेंट एंड नॉट नेगेटिविटी कि ये क्यों पी रहे हो, ये गलत है,
1: तुम गलत पे जा रहे हो तो मैं छोड़ रहा हूँ,
0: नहीं
1: मैं तो दोस्ती नहीं करूंगा।
0: सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दूसरा अगर ऐसा कुछ कर रहा है, देयर इज सम, यू नो, बहुत सारी चीजें एक पर्दे के आगे होती है और पर्दे के पीछे बहुत सारे हैं। एंड जनरली क्या होता है, हम सारा कुछ पर्दे के आगे देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये ऐसे हैं, अब ये बदल चुके हैं, अब ये क्यों बदले, उसके पीछे क्या हो गया, वो हम फाइंड आउट नहीं करते। पर्दे के आगे जो जो बदलता है हम अपना व्यवहार उस अनुसार बदलना शुरू कर देते हैं। द फ्रेंड इज द वन हु विल गो बिहाइंड द कर्टन। एंड ये फ्रेंड एक पेरेंट हो सकता है, वाइफ हो सकती है, कोलीग हो सकता है, या जैसे ये फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, गो बिहाइंड द कर्टन, फाइंड आउट कि वो व्यक्ति वाई इज ही इन पेन, व्हाट्स द रीजन, दैट इज फ्रेंडशिप।
1: शिवानी, हम जिस दौर की बात कर रहे हैं आज, हम ऐसे दौर में हैं जहां इन्फॉर्मेशन का इतना ज्यादा हमारे पास, पूरी हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो टेलीविजन देखें, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स में भी ये एस्पेक्ट बहुत देखा गया है कि लड़का लड़की जो साथ पढ़ रहे हैं वो दोस्त ना रह के कुछ और ज्यादा हो जाता है, जिसे सो कॉल्ड प्यार का नाम दिया जा रहा है, और यहां जो है मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। कैसे खुद को ये एहसास दिलाया जाए कि ये जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील किया जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, और एक जो आप दोनों हैं वो एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह आगे तक लंबा निभाया जा सकता है।
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक, जो आज हमारे स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं सारे, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इस जीवन की यात्रा में हमने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन हर चीज का एक सही टाइम होता है। और जब हम इस टाइम के विरुद्ध जाते हैं एंड वी ट्राई टू डू टू मच टू सून, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट। पढ़ाई का एक समय होता है जहां हमारी सारी शक्ति, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, ये सारी शक्ति उस पर फोकस होती है। ये हमारा समय है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने का, और उसके लिए हमें अपने आप को चैनलाइज करके चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम इस तरह के रिलेशनशिप्स की तरफ खींचते चले जाते हैं, या ज्यादातर कहीं पीयर प्रेशर की तरफ लगता है कि नहीं, दिस इज द थिंग, ये होना ही चाहिए इस तरह का संबंध, और हम इन तरह के संबंधों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो हमारी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है, और इससे हमारी पूरी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारा फोकस, हमारी पावर ऑफ डिसाइडिंग, ये सारा कुछ अफेक्ट हो जाता है। और इससे कई बार हमने जो करियर अपने लिए चूज करना था, सारे जो डिसीशंस है उस सब में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि हम अपने रास्ते से हटकर एक दूसरे राह पर चले गए। कई बच्चे हमें ईमेल्स लिखते हैं, फोन करते हैं कि हम पढ़ने बैठे, एक घंटा पढ़ने बैठे, लेकिन

0: out of 1 hour, 45 minutes, so I was thinking about her or thinking about him. So now what do? How do I bring my concentration back? See, once I give it away, I will have to understand that it's like falling down and again, now standing up. Lekin wo girne aur khade hone ke process mein chot lag jate hain aur dard hota hai. To sabse pehle to focus bahut clear ho ki aap padhai ke samay se guzar rahe hain. And this is an obstacle. Ye sirf ek distraction nahi hai. People say this is a distraction. I would say it's a very big obstacle jo aapki puri student life, pura career and your entire lifetime in terms of career and also in terms of personality. Career to phir bhi theek hai, bane jo bhi, lekin personality par jo impact padta hai iska, kyunki kai baar hum bahut sare complexes se guzar jate hain, you know, jaise aajkal bacche kehte hain, I like so and so, but unhone mujhe nahi accept kiya, you know, to jab unhe wo rejection milta hai, ye rejection ek bacche ki personality par itna deep impact chhod deta hai, kyunki the bachcha is very still not mature. Use pata nahi hai ki rejection ko kaise handle karna hai. Use ye bhi maturity nahi hai ki ye rejection us samne wale vyakti ki apni choice hai. Mujhe ye lagne lagta hai ki unhone mujhe reject kiya, ye mere andar koi problem hai. You know, mere andar koi kami hai. And it is the first seed of an inferiority complex. Ki I am no good. You know, jinko maine like kiya, unhone mujhe reject kar diya. Mujhe to wo bahut achhe lagte the. Unhe main kyun nahi achha laga? So the fault is with me. My self-confidence totally crashes. Totally. Self-esteem puri tarah se finished. Ab ye personality mein jo conflict a gaya, ki then they will say, pehle to main bahut confident tha, pehle to sab kuch theek tha mere saath, ab ye kyun ho gaya? Kyunki mere andar wo rejection ko face karne ki maturity nahi thi, kyunki abhi main wo age par nahi pahuncha. To understand. So, wo meri personality mein ek complex create karta hai. Aur ye complex mere saath mere relationships mein aage, mere professional relationships mein. Har jagah ek impact dalega. To ye mera kitna bada nuksan hua. Galti meri nahi thi. Lekin mera kitna bada nuksan ho gaya, jisko mujhe lifelong jhelna padega. Is ek rejection ki wajah se, main majority aur rishton mein vishwas nahi kar paunga. Kyunki kahin na kahin se mujhe dhokha mila tha. Ya to, you know, there was a relationship aur wo toot gaya, to unhone mujhe dhokha de diya. Ab agar kisi ne mujhe dhokha de diya us age mein, wo young age mein, I carry that lifelong and I feel ke sab log aise hain, dhokha dete hain. Maturity nahi hai. To hum kitna nuksan apna kar dete hain in raston par abhi chal ke.
1: Ek aur aspect jo sabse zyada violence ka aspect hum dekh rahe hain, wo hai ki obsessive jo कि वो मेरा ही है या वो मेरी है, इस उम्र में ही ये एहसास लेकर और वो कहीं ना कहीं इतना वायलेंट हो रहा है. हाउ टू एक्चुअली हैंडल इट, यू नो, दे कैन बी अ गर्ल जिसको एक लड़का ये कहे कि यू नो आई लव यू, एंड उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट ही करता रहे कि वहां से नहीं रिजेक्शन. रिजेक्शन को कितनी बार वायलेंस में कन्वर्ट किया गया?
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज पावर ही नहीं है ना. पावर नहीं है तो जहां रिजेक्शन आ गई, नेगेटिविटी आ गई, तो उसे एक आउटलेट चाहिए. तो आउटलेट या तो सेल्फ वायलेंस पर हो जाएगा, आप अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट कर लेंगे ना. सो मेनी पीपल ट्राई टू कमिट सुसाइड, या अपना डैमेज कर देते हैं, या अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं सबसे, ये भी सेल्फ डैमेज है. या हम दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इतनी नफरत अंदर भर गई है, तो वो आउटलेट कहां से आएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें ये जो हमारा एज है, दिस इज फॉर सिंपल beautiful friendships, very healthy relationships, जो हम बहुत लोगों के साथ बना सकते हैं. इस एज में आप ये नहीं डिसाइड करने की कोशिश करो कि मैं इनके साथ अपनी पूरी जीवन जीना चाहता हूँ, दिस इज माई पार्टनर. नो, बिकॉज राइट नाउ हम उस मेच्योरिटी लेवल पर ही नहीं है कि हम वो डिसाइड करें कि किसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहें. एंड जो हम फेज बिताने वाले हैं जिस एज का, अभी हम दोनों उस एज में ही नहीं है. तो रियली हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं. मे बी टुडे, यू नो, दे मे बी 15 इयर्स ओल्ड या 16 इयर्स ओल्ड, बट बाय द टाइम दे आर 25, दे विल बी टू डिफरेंट पर्सन. एब्सोल्युटली टू डिफरेंट पीपल. एंड तो इज इट पॉसिबल कि 15 या 17 की एज में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 25 या 40 की एज में हम एक दूसरे के साथ रहे? हाउ कैन वी डिसाइड दैट? बिकॉज दैट टाइम दैट पर्सन विल बी समबडी टोटली डिफरेंट. तो इस बचपने के एज में

0: हम वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं. तो हम बहुत सारे गलत डिसीशंस उस वजह से ले लेते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एट अ वेरी अर्ली एज हमारी थॉट्स के अंदर इम्प्योरिटी आनी शुरू हो गई है. हम वो बॉडीली अट्रैक्शन और उस तरफ जो एक प्योरिटी की एज है, यू नो, चाइल्डहुड इनोसेंस, चाइल्डहुड प्योरिटी को हम इतनी यंग एज में गवा देते हैं. और इम्प्योरिटी जहां आएगी वहां पीस वैनिश हो जाती है. एंग्जाइटी, एंगर, ये बहुत जल्दी उस एज में, क्योंकि हमने देखा कि उस दैट इज द सीड, उससे अग्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब ट्रिगर हो जाता है क्योंकि थॉट्स के अंदर इम्प्योरिटी शुरू हो चुकी है. तो क्या ये वो एज है? एवरी चाइल्ड टूडे, एवरी यूथ टूडे नीड्स टू स्टॉप एंड आस्क देमसेल्व्स कि राइट टाइम है, लेट्स डू इट एट द राइट टाइम. हर चीज का एक समय है और उस समय पर ही उस संबंध की तरफ हम ध्यान दें. अभी का समय है वेरी गुड फ्रेंडशिप्स. हमें जरूरी नहीं है कि एक के साथ एक नाम जोड़कर मुझे रखना है कि दिस इज माय रिलेशनशिप. नो, लव सो मेनी फ्रेंड्स, व्हाई कांट इट बी लाइक दैट?
1: दैट्स वेरी गुड एक्चुअली. एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार हम, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम सहज जुड़ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम ऐसे सहज नहीं जुड़ रहे होते. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात होती है. हमने जब कहा कि दोस्त हम चुन सकते हैं, दोस्त वो लोग हैं जो हमें चुने जा सकते हैं, पहली बार हमारे हाथ में ये है, क्या हम जिनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो हमारे दोस्त ही होंगे? या क्या हम देखें कि क्या वो दोस्त हमारे होंगे? और इस मोमेंट को तो हम अच्छे जी रहे हैं जो लंबा भी चलता है.
0: दैट्स व्हाट वी डोंट नीड टू डिसाइड अभी. सी, ये जो हम बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं ना, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये अभी डिसाइड करने की एज ही नहीं है. हर एज की अपनी इम्पोर्टेंस है. दिस इज द टाइम टू हैव फ्रेंड्स, यू नो, तो लेट्स कीप इट ओपन एट दैट. लेट्स जस्ट कीप इट एट दैट. उसको स्पेसिफिकली सेपरेट करने की कोशिश नहीं करें कि ये रिलेशनशिप बाकी सब रिलेशनशिप से अलग है. नहीं, दिस रिलेशनशिप इज लाइक ऑल अदर रिलेशनशिप, वेरी हेल्दी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. नहीं, ये डिफरेंट है. नो, बिकॉज टूडे फॉर यूथ और फॉर चिल्ड्रन इट्स मोर अ फिजिकल अट्रैक्शन. लेकिन अ रिलेशनशिप कभी फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड नहीं है. इट्स कॉन्शियसनेस, इट्स सोल्स, बिकॉज इट इज टू सोल्स जिनका कार्मिक कनेक्शन एक लंबे समय तक चलेगा. वो बॉडी कॉन्शियसनेस पर अगर आधारित होगा तो वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा. और इस एज में जब हम डिसाइड करते हैं, जिसकी आप बात करें, दैट्स मोर बेस्ड ऑन बॉडी कॉन्शियसनेस. और उसकी फाउंडेशन ही जब देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो वो फाउंडेशन तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी, बिकॉज माई अट्रैक्शन विल कीप चेंजिंग. That is not a solid foundation for a relationship.
1: बिल्कुल सुरेश शिवानी, ये तो हमने उस उम्र की बात की जो काफी वल्नरेबल भी होती है और जहां दोस्ती बहुत जरूरी होती है. लेकिन हर एज में देखा गया है कि फ्रेंडशिप इज वन रिलेशनशिप वी लुक फॉरवर्ड टू. प्रोफेशन में क्या सेम प्रोफेशन में है हम तब मैं दोस्त हो सकता हूं? क्योंकि ये भी बात कही जाती है कि प्रोफेशंस में दोस्ती नहीं होती है.
0: वो इसलिए क्योंकि हमने कंपटीशन डाला है और कुछ भी नहीं है. बाकी दोस्ती कुछ भी नहीं है. इट इज अ हेल्दी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जहां कंपटीशन नहीं होता है. लेकिन जहां हमने सोचा नहीं, या तो ये आगे जा सकती है हमें, देन आई विल फील नहीं मैं, क्योंकि फिर आप एक दूसरे से काज शेयर नहीं कर सकते. यू कांट बी योर सेल्फ विद द अदर पर्सन. आपको बहुत यू नो केयरफुल होकर चलना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी ऑन योर गार्ड. दैट्स वाई वी से बाकी तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज संबंध क्या है? दो आत्माओं का संबंध, एक दूसरे के साथ जो वो कम्युनिकेट करते हैं वो संबंध है. तो उसके ऊपर ना कोई प्रोफेशन इन्फ्लुएंस डाल सकता है, ना कोई पोजीशन, ना कोई स्टेटस. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस. वी क्रिएट दोस कॉम्प्लिकेशन.
1: बिल्कुल, एक दोस्ती एक ऐसा एहसास है जो हमेशा से बहुत अच्छा लगता रहा है. शिवानी, आज इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. हर रिश्ते की तरह हमने ये भी देखा कि मित्रता, जिसे हम सबसे गहरा रिश्ता मानते हैं, उसमें भी जो कड़वाहट कहीं ना कहीं आ जाती नजर आ रही है वो हट सकती है. और मित्रता अगर हम जब यंग एज में होते हैं, उस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसे किस परिपेक्ष में लें तो ये फ्रेंडशिप जो है वो सालों साल चल सकती है. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 09999344555, 09999344666, 09873666555.

और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अब एक और रिश्ता बाकी है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है रिश्ता अपने आप से और परमात्मा से। कैसा होता है ये रिश्ता, इसके बारे में बात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
3: करायचं।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
2: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं।

0: नमस्कार और स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। बहुत से फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से ईमेल्स आ रहे हैं और ये बात हमें समझ में आ रही है कि जिन मूल्यों की हम बातें कर रहे हैं, जिंदगी के जिन मुद्दों को हम जान रहे हैं, जिनके आंसर्स तलाश रहे हैं, उसमें कई कई मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं जब उन्हें हम प्रैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी फिर से हैं, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति शिवानी। और सबसे पहली बात आज, क्योंकि शुरुआत ही मैंने सीधी इससे की है कि हमने खुशी की बात की थी, हमने टेंशन की बात की थी, एंगर की बात की थी और जिस तरह का हमारे पास रिस्पॉन्स आया हमारे दर्शकों का, उससे तो मतलब लग रहा है कि लोग जो है वो बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं, जैसे मैं भी बहुत मोटिवेटेड रही हूं कि इसे इम्प्लीमेंट करने का, बात करने में। क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि बात समझ में आ जाए, समझ आ रही है लेकिन वो कंटिन्यूस इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। खासकर एंगर के ऊपर जो हमने बात की थी, जो रॉन्ग मिथ्स है, यू नो, रॉन्ग नोशंस को लेकर हम चल रहे थे, पीपल हैव अंडरस्टूड दैट, यू नो, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि दे आर रॉन्ग, क्योंकि हम कहीं खुश नहीं हो रहे थे गुस्सा कर।
1: आपने देखा लेकिन कल अपने आप को
0: कि गुस्सा ना करूं मैं। हाँ, बिल्कुल मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की लेकिन मुझे जो मुश्किल ये आई कि मेरे साथ गुस्से का ये था कि अगर मुझे काम निकलवाना है तो मुझे थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, ये मैं मानती थी और मैंने कोशिश की कि मैं गुस्सा ना करूं और प्यार से कोशिश करूं, लेकिन भाई पेशेंस चाहिए उसके लिए। और अल्टीमेटली आई रियलाइज कि मैं फिर बहुत ही यू नो लाइक सॉफ्ट हो गई, तो वो काम ही नहीं हुआ फिर। तो उसमें मुझे ये एक मुद्दा जो है कि गुस्सा ना करके, लेकिन अथॉरिटी तो रखनी चाहिए ना, वो कहीं वो बैलेंस
1: ये लेकिन जो ज्यादातर हमने देखा ना, जैसे आपके पास जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम फिनिश करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं फिनिश नहीं हो पा रहा। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपको क्या लगता है गुस्सा खत्म करने में कितनी देर लगेगी? जैसे कई लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, आज अगर डिसाइड करें कि हमें अपने, क्योंकि परेशान तो सभी हैं उससे।
0: एक्चुअली मुझे लगता है कि एक क्षण भी नहीं लगना चाहिए बेसिकली।
1: एक क्षण में खत्म हो जाएगा?
0: नहीं, क्योंकि आपका माइंडसेट की बात होती है। जिस दिन हमारा माइंडसेट पूरी तरह से ये रियलाइज कर लेगा तो चाहे जितनी भी हैबिट पड़ी हुई हो, कई लोग सिगरेट छोड़ते हैं तो एक मिनट में छोड़ते हैं,
1: वो भी तो करते हैं। वो वन मिनट कौन सा चाहिए, वो रियलाइजेशन कौन सी चाहिए, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरे काम की चीज नहीं है। अभी हम क्या कहते हैं, गुस्सा अच्छा नहीं है, गुस्सा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा करना पड़ता है। ये जो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है, जब तक ये मेरे पास बिलीफ होगा तो वो चीज मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई है। जैसे घर में सामान संभाल के रखते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए, यू नो, एंड इन द प्रोसेस बी फिल अप आवर हाउस विद
0: सो मेनी थिंग्स विच आर, और कभी काम
1: आए, बिकॉज वी केप्ट दैट थॉट कि पता नहीं कब काम में आ जाए। और एक्चुअली उसको बाहर फेंकने में कितना टाइम लगता, जिस दिन सोचा कि ये अब मेरे काम बिल्कुल नहीं आने वाला, हम उसे उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। गुस्सा पता नहीं कब मेरे काम आ जाए, कई ऐसी बातें होंगी जब मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। यू नो दीज जो थॉट्स हैं कि बिल्कुल खत्म कैसे हो सकता है, यू नो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूं। हाउ इज दैट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट्स नॉट पॉसिबल। यू नो ये जो पूरी सीरीज ऑफ थॉट्स चलती है कि आज की दुनिया में सबके साथ काम करते हुए पॉसिबल नहीं है,
0: काम नहीं निकलवा पाऊंगी मैं, कहीं गुस्सा तो करना ही पड़ेगा
1: और बाकी लोग नहीं तो मेरा अनड्यू एडवांटेज ले रहेंगे, मुझे एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, तो थोड़ा तो गुस्सा चाहिए। अब जब तक वो थोड़ा

0: a detached observer. And you watch me now. Okay, main shayad nahi gussa karu upar se, and I remain very calm that time. And I can just smile back. And after some time, when that person gets okay, then I will go and talk to him and say what I want. You are an observer. Aap kya conclusion nikal rahe hai? Am I weak? Your conclusion was I am strong. But I keep thinking, see, this is wrong belief. Main ye sochungi ki aap ye soch rahe hai ki main kamzor hoon. Aur aapko prove karne ke liye main chillana shuru kar do. And finally down the line mujhe kya farak padta hai ki aap kya soch rahe hain. Even agar aap sochein ki aap main kamzor hoon, that's fine. Wo aapki soch hai. Agar mujhe aisa rehkar acha lag raha hai, if I feel more energized, kyunki gussa karne ke baad I am discharged. I am absolutely de-energized and mera wo sambandh bigad raha hai. Ab aapka wo sambandh nahi hai, wo mera sambandh hai. Uski sanctity ko maintain karna mere liye important hai. Aap kya sochte hai usse mujhe koi farak nahi.
1: Lekin hota ye dekha gaya hai ki aap kisi ne aapse gussa kiya ya aapke insult ki aur aap wapas nahi react kar paaye, aap andar kulbulate rehte hain. Wo jo ek kulbulahat hai wo, to meri energy discharge agar ho jati to behtar tha.
0: ये भी एक बिलीफ है और समवेयर डाउन द लाइन मेडिकली उसको राइट भी प्रूफ कर देते हैं कि अंदर अंदर नहीं घुटना चाहिए, बाहर निकाल दो. लेकिन उस प्रोसेस में, क्योंकि कुछ समय हमने वो धारणा को लेकर देखा कि अंदर नहीं रखो, बाहर निकाल दो, लेकिन फिर हम निकालते ही रहे हर टाइम. You see, then we never really got over it. तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी चीज को forcefully भी छोड़ना पड़ता है. आपको उसको दो बार चार बार शायद वो आपको अंदर तकलीफ देगी, पांचवी बार वो अंदर भी तकलीफ देना बंद कर देगी. लेकिन अगर हम अपने आप को हर टाइम ये कह देंगे नहीं वो अंदर तकलीफ देती है, इससे अच्छा बाहर निकाल दो, when will it get over? It will go stepwise ना. First I stopped saying it. First I stopped doing it. पहले हम फिजिकली किसी पर हाथ भी उठा देते थे. First attention, हाथ नहीं उठना चाहिए. Second attention, मुख से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए. Third attention, गलत नहीं सोचना चाहिए. So maybe if I can't do it this way, then I will have to do it this way. But I will have to do it. I can't give myself the excuse कि नहीं निकालना बहुत अच्छा इसलिए करते रहो. That gave us more freedom. कि गुस्सा कर दो, करने से आप हल्के हो जाओगे.
1: हाँ,
0: किसको आज तक हल्का फील हुआ है गुस्सा होने के बाद? बोलते हैं इल्यूजन, आप गुस्सा कर दो आप हल्के. हल्का इज लाइटनेस, हल्का इज हैप्पीनेस. गुस्सा करने के बाद हल्का कब फील होता है? गुस्सा करने के बाद तो बहुत भारी लगता है.
1: बहुत बुरा लगता है एक्चुअली. हैवी और लाइट की बात
0: वही बुरा, मतलब दैट इज हैवीनेस ना. अपने आप से अंदर गिल्टी या अपने आप से क्या जरूरत थी, इसके बिना भी तो चल सकता.
1: अच्छा, और कई बार हम कहते इतना गुस्सा कर देते तो था.
0: हाँ, वो भी एक कारण
1: चले गए. ज्यादा कह दिया मैंने कुछ, इतना नहीं कहना चाहिए था.
0: क्योंकि जब रिएक्ट करते हैं तब कोई कंट्रोल नहीं होता है, तब ज्यादा और कम उस टाइम याद रहने वाला नहीं है. तो वो अपने आप से एटलीस्ट इनिशियली जब हमने ट्राई किया तो इट वॉज लाइक अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब ये कुछ भी बोले तो. हो सकता है शुरू शुरू में क्या हुआ कि ऊपर से नहीं कहा, अंदर बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था. अभी भी कई बार ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो स्टेज तक तो पहुंच जाए कि बाहर से तो बोलना बंद करे, धीरे धीरे अंदर से भी बंद हो जाता है.
1: यहाँ एक जो हमने पहले भी बात थोड़ी आधी छूटी थी, ये कि जब अथॉरिटी की कि अभी तक मैंने ये कहा कि मेरे लिए था कि भैया गुस्सा करूंगी तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं करते हैं. लेकिन जब मैंने ये कोशिश की कि भैया गुस्सा नहीं करते, प्यार से काम कराने की कोशिश करते हैं, तो प्यार से काम हुआ ही नहीं.
0: राइट.
1: तो मैंने बोला चलो काम ही नहीं होता, लेकिन ये भी तो नहीं होता.
0: वो तो पॉसिबल नहीं. हाँ. क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम लीडर या वट एवर प्रोजेक्ट हेड, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करनी है, या एज अ पेरेंट बच्चों के साथ, ये उस तरफ भी एप्लीकेबल है. लेकिन गुस्सा एंड डिसिप्लिन, कई लोग डिसिप्लिन के नाम पे बहुत गुस्सा कर देते हैं कि अगर मैंने मुझे बच्चों को तो बच्चे बिगड़ जाएंगे. वैसे ही उनकी हालत देख लो आज, इतना आपने डिसिप्लिन उस तरह से करने की कोशिश की, उनकी हालत आज देखिए क्या है. वो खुद ही इतना हॉलो हो गए हैं अंदर बिल्कुल. तो गुस्सा और डिसिप्लिन, लाइक वी डिस्कस्ड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स. गुस्सा इज रिएक्शन, डिसिप्लिन इज रिस्पॉन्स. किसी से कोई गलती हो गई है, हम उस टाइम कैसे रिस्पॉन्ड करें? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, सामने से कोई चलते हुए आ रहा है, चलते चलते बीच में एक पत्थर था, उसका पैर उससे ठोकर लगा, वो गिर गया, चोट लगी, बहुत जोर से चोट लगी. आप एक पेरेंट हैं या आप एक टीम लीडर हैं, अब आपका क्या रिस्पॉन्स होगा?

0: डेफिनेटली विल गो, आई गो एंड फाइंड आउट कि ज्यादा चोट नहीं लगी हो, या यू नो उसको यही समझाऊंगी कि देख के चलिए और चोट
1: पहले किस चीज को अटेंड करेंगे,
0: उसकी चोट
1: चोट को आप उसे उठाएंगे, उसे हील करेंगे पहले। आप उसे वहां खड़े होकर लेक्चर नहीं देंगे कि चलने का सही तरीका कैसा होता है, क्योंकि अगर आप देंगे भी तो वो सुनने की हालत में नहीं, ही इज इन पेन, फर्स्ट ट्रीट द वुंड। लेकिन हम अगर लेक्चर दें, और लेक्चर देना भी अगर हम और ही जोर से उसको पीटने लगे लाठी से, तुम ऐसे चले कैसे, तुम गलत चले कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिरने की, वॉट काइंड ऑफ डिसिप्लिनिंग इज दिस। तो सिमिलरली एक कंपनी में या एक पेरेंट के साथ किसी ने कोई गलती कर दी है, वो व्यक्ति ने गलती करने के बाद ही हिमसेल्फ नोज ही इज मेड अ मिस्टेक, और द चाइल्ड हिमसेल्फ नोज आई हैव नॉट डन वेल इन माई एग्जाम्स, बट दैट टाइम दैट पर्सन इज ऑलरेडी इन पेन, उसको अंदर ऑलरेडी पता है कि मेरे से गलती हुई है, अब मुझे डांट पड़ने वाली है, नाउ यू नो दैट फियर एलिमेंट इज देयर, ही इज इन पेन। यू एज अ लीडर, यू एज अ पेरेंट, व्हाट्स योर रोल राइट नाउ, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। हम वही कर रहे हैं कि दूसरा गिरा हुआ है, वो दर्द में है, हम वहां उसको खड़े होकर और पीटते हैं, तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने ये किया क्यों। जब वो ठीक हो जाता है तब हम उसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब वो दर्द में है हम उसे और पीटते हैं, उसे लेक्चर देते हैं,
0: और जब वो उसे कुछ
1: समझ नहीं आ रहा, वो उस समय सुनने की समझने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं हम इनको इतना समझाते हैं लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा समझाने का समय गलत था। हम तब समझा रहे थे जब वो समझने वाली स्थिति में नहीं थे,
0: जब ऑलरेडी प्रॉब्लम है।
1: जस्ट लुक एट द सिचुएशन ना, कि मेरे से कोई गलती होगी एंड माई बॉस जस्ट सेज नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, मैंने भी ऐसी गलतियां की थी, इट्स अंडरस्टैंडेबल, एंड ही टेक्स यू, ही जस्ट एक्सेप्ट्स यू, हील्स योर वुंड, लेकिन फिर वो हील होने के बाद फिर वो आपको बैठकर
0: समझा,
1: आपसे अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन उस टाइम वो भी सही बोलने की स्थिति में, क्योंकि वो रिएक्शन वाला मोड खत्म हो गया है, और आप भी उस टाइम अच्छी तरह से समझने की स्थिति में है। और क्योंकि जब आप दर्द में थे तब उसने आपको सपोर्ट दी थी, वो आपकी बात और भी अच्छी तरह से सुनेगा, अगर आप उसे कुछ कहेंगे भी उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो दर्द में है और तब आप उसको बोल रहे हैं तब आपकी सही बात भी
0: समझ ही नहीं
1: आएगी, अच्छी नहीं लगेगी,
0: पहुंच ही नहीं पाएगी,
1: आप अच्छे नहीं लगेंगे उस टाइम, आप ही अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए एक बच्चे को वो पेरेंट उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा होता। एक बच्चे के मार्क्स कम आए, एक बच्चा फेल हो जाए, मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन हु कमिट सुसाइड, व्हाई डू दे कमिट सुसाइड, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेसिंग द पेरेंट, नॉट बिकॉज दे फेल्ड। तो रीजन कितना अलग है। आज अगर वो पेरेंट को जिसका बच्चा चला गया उसे ये पता चले कि मेरे डर के कारण वो बच्चे ने अपनी जीवन दे दी, वो पेरेंट क्या कहेगा, तुम वापस आ जाओ मैं तुझे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। नाउ व्हाट डू यू, दैट्स द पॉइंट, नाउ व्हाट कैन वी डू। वो बच्चे के अंदर पहले से वो विश्वास होना चाहिए था कि माय पेरेंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दैट वुड हैव हैपेंड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरी कोई भी गलती होगी वो मुझे समझ लेंगे, एंड ऐसे पेरेंट्स हैं, वी हैव दैट काइंड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बट देन वी नीड दैट मोर नाउ।
0: यस,
1: गलतियां हो रही है।
0: कॉलर, यू नो वी हैड अ कॉलर, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आए हैं। इनफैक्ट हमारे साथ मुंबई से शिखा का ये फोन था, और उनकी यही प्रॉब्लम जो आज हम पेरेंट की बात कर रहे हैं कि शी इज गॉट अ डॉटर हू इज 9 ईयर ओल्ड, और वो ये कह रही थी कि शी इज अ वर्किंग वुमेन, उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी रह रहे हैं साथ में, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप क्योंकि इतने साल 10 साल शादी को भी हो गए हैं तो ठीक ठाक है पर कोल्ड है, बेटी को ऑलमोस्ट मदर इन लॉ ने बोला बिकॉज शी इज अ वर्किंग वुमेन, एंड अब जब 9 साल की बच्ची हो गई है, देन शी सेज, शिखा सेज कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बच्चा तो मेरे हाथ से चला गया है, क्योंकि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई डॉटर, एंड नाउ आई वॉन्ट टू डेवलप दिस रिलेशनशिप एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड, सडनली शी हैज बिकम सो रूड। मेरे मदर इन लॉ के साथ जो मेरा रिलेशनशिप होता है उसका रिस्पॉन्स मेरी बेटी के साथ मुझे दिखने लगता है, और वो मेरे साथ इतनी बदतमीजी, इतनी कुछ, अब मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई हूँ, शी वॉज लिटरली क्राइंग, यू नो, व्हेन शी कॉल्ड अप एंड शी सेड कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा मेरा अपना ही नहीं रहा, और नौकरी करना भी मेरी मजबूरी थी क्योंकि यू नो पूरा फाइनेंशियल सब कुछ डिपेंड करता था बाकी सारी चीजें, तो अब मैं क्या करूं, कैसे वो रिलेशनशिप दोबारा डेवलप करूं।
1: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर खुद डिप्रेशन में है, मतलब खुद बहुत लो फील कर रहे हैं, दूसरे को हील नहीं कर पाएंगे, दूसरे को प्यार देना है वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि खुद अंदर नफरत भरी हुई है, तो

0: इज अ वेरी इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन. जो दूसरे को देना चाहते हो वो पहले खुद अपने अंदर भरा हुआ होना चाहिए. अब इनके केस में शायद जो हो रहा है, फर्स्ट फैक्टर इज कि द मदर इन लॉ इज कंट्रोलिंग द चाइल्ड. यू नो दैट समवेयर इन द सबकॉन्शियस दैट इज क्रिएटिंग अ बिगर प्रॉब्लम. यू नो वो एक एलिमेंट जो बीच में आ रहा है कि मेरी बेटी मेरा न सुनने के बजाय उनका सुन रही है.
1: लेकिन बेटी के लिए भी बिल्कुल जायज है कि वो बचपन से जो करता है
0: तो वो एक नेचुरल बॉन्डिंग है, तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. तो वो तो एक नेचुरल बॉन्डिंग थी. लेकिन इनको जो अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपने आप को वो राइट थिंकिंग पैटर्न पे लाना पड़ेगा कि फाइनली शी इज हर ग्रैंड मदर, शी इज डन सो मच फॉर हर. आफ्टर ऑल आई कुड वर्क ओनली बिकॉज शी वॉज देयर. तो मेरा तो मतलब जैसे आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उसने उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश करके आज ये मिसिंग एलिमेंट है और इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं.
1: बट यू नो व्हाट शी इज सेइंग एक्चुअली कि वो उनकी जो परवरिश है वो उन्होंने अपने बेटों की भी परवरिश कोई बहुत अच्छी नहीं करती. यू नो ना, बट दैट्स अगेन शी फेस की शी वॉज इंटेलिजेंट गर्ल, शी फेस की वो बच्चे को भी जो कर रही है क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है.
0: right.
1: खाने का, पीने का, पढ़ाने का पूरा तरीका बदल गया है. अब जब मैं उसे अपने बच्चे को अपने हिसाब से करना चाहती हूँ जो कि आज के परिवेश में देखते हुए सही है, तो शी डजंट वांट दैट.
0: शिखाया को क्या करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अभी वो शायद सटली सबकॉन्शियसली वो बच्चे को अपनी ग्रैंड मदर से छीनने की कोशिश कर रही होगी. एंड सिंपल बात यह है कि एक नेगेटिव
1: थॉट प्रोसेस
0: एक पॉजिटिव रिजल्ट जेनरेट नहीं कर सकता. अगर हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए उसकी इनपुट भी पॉजिटिव होगी. नेगेटिव इनपुट दे, पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट डाले और पॉजिटिव आउटपुट हो, इम्पॉसिबल. तो जहां उनका ये थॉट है वो परवरिश गलत थी, मुझे उसको उससे अब ले लेना है. शी शुड कम अंडर माई कंट्रोल, शी शुड नॉट लिसन टू हर, शी शुड लिसन टू मी. ऑल द थॉट्स आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रैक. तो ऑब्वियसली जब हम नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं इतनी ज्यादा, तो वो बच्चा मेरे करीब आने की बजाय
1: दूर, बहुत दूर हो जाए,
0: और भी दूर, और कहीं ऐसा न हो कि वो शायद बहुत ज्यादा दूर हो जाए. बिकॉज आई एम सेंडिंग ओनली नेगेटिव एनर्जी.
1: व्हाट शुड
0: नेगेटिव एनर्जी उसको रिपेल करेगी ना. सी नेगेटिव एनर्जी ऑलवेज टेक्स मी अवे फ्रॉम अ पर्सन. एंड इस प्रोसेस में वो अपने मदर इन लॉ से भी बहुत दूर हो जाएंगे, अपने हस्बैंड से भी हो सकता है कि डिस्टेंस हो जाए, बच्चे से डेफिनेटली डिस्टेंस हो जाएंगे. तो थॉट प्रोसेस को एक एक जो इन्होंने ये थॉट ली इसको थोड़ा सा चेक करें. फर्स्ट मेरी ग्रैंड मदर, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने जो किया बहुत अच्छा किया, आई एम ग्रेटफुल टू हर, एंड एक्चुअली गो एंड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड. दूसरा, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी परवरिश की होगी, उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और आज मेरी बेटी जो है वो उनकी वजह से उस तरह से बनी है. थर्ड शी कैन डू इज गो एंड डिस्कस विद हर कि बेबी विद द चेंजिंग टाइम्स डू यू फील इट इज ओके. क्योंकि इट्स नॉट राइट कि जिसने इतनी मेहनत की थी आप जाके उससे कोई चीज को छीन लो. वो बच्चा भी आपके साथ वो रैपो नहीं बिल्ड करेगा. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक टीम बनाएं, आप दोनों मिलकर अब उसकी परवरिश करें और वो बच्चे को इतना वो स्नेह दे, इतना प्यार दे, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब मदर एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. दिस इज नॉट एन ऑफिस रिलेशनशिप. तो इट इज जस्ट वन, शी इज जस्ट वन स्टेप अवे. सो शी शुड टॉक टू हर मदर इन लॉ एंड मिलकर वो जो उनको चेंजेस लाने हैं परवरिश में उनके साथ मिलकर करे, उनसे दूर होकर ना करे. तब वो करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड शील एंजॉय द प्रोसेस एंड ऑल थ्री ऑफ देम will come closer. And the way she is doing it right now, all three of them are going to go absolutely away. And just give lot of love. Lot of love internally. And lot of love internally tab diya jata hai jab koi negative thought nahi hogi. Hum kehte to hai, matlab no mother will say ke I don't love my child. Lekin ye jo sari negative thoughts hain, ye usme ek leakage hai. To jitna ye hat jayenge, aapka jo pyar hai, wo undiluted, you know, ekdam unadulterated hai. Absolutely pure and selfless. Uska result acha nahi hai.
1: बिल्कुल. और बहुत यू नो बिकॉज इनकी प्रॉब्लम एक बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन इसको इस तरह से इंटरप्रेट करके आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक यू माइट से कि किसी यू नो लाइक मदर इन लॉ से, या अगर आगे चल के ये भी हो सकता था कि सेपरेट हो जाएं, क्योंकि यही प्रोसेस रहते
0: हैं. बट दैट्स डैमेजिंग ना.
1: यस,
0: आज एक और इसी प्रोसेस की वजह से आज हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए. हमने ये सोचा कि न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर, नाउ वी रियलाइज नो दैट्स ऑल्सो failure. Because everything that was there was for a purpose. Lekin humne

0: के बेनिफिट्स देखने की बजाय हमने सोचा नहीं हम अब हम अपने आप ही पाल लेंगे ना, हम अकेले रह लेंगे ना, इनकी इंटरफेरेंस को कौन टॉलरेट करेगा।
1: डेफिनेटली, और एक बार फिर हमने थॉट पावर की जो पावर है उसका एग्जांपल देखा, सामने आया कि जिस चीज को उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है और कितना जेन्युइन, किसी भी काउंसलर के पास जाएंगे तो उन्हें भी वो जेन्युइन ही लगेगा, लेकिन वो जो नेगेटिविटी इनके अंदर खुद ही जनरेट
0: और वो खुद ही उसको पॉजिटिव कर लेंगे,
1: कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टर शिवानी, आज एक बार फिर एंगर को हमने, एंगर के एस्पेक्ट्स को लेने की कोशिश की और ये बात क्लियर होती जा रही है कंटिन्यूअसली, यू नो, कि हमारे रॉन्ग बिलीव्स जो है वो गलत थॉट्स जनरेट करते हैं, गलत एनर्जी जनरेट करते हैं, एंड नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली रिपेयर and then positive thoughts will create positive destiny. Thank you so much. और आपको बता रहे हैं कि देखिए जैसे कितने सारे हमारे पास लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी स्वागत करते हैं और कोशिश हम ये करें हर रोज, जैसा कि सिस्टर शिवानी बता रही हैं कि पॉजिटिव थॉट्स को ही जनरेट करने की कोशिश करें। इसके लिए यही जरूरी है कि अपने बिलीव, अपनी मान्यताओं को सही रखें। आप हमें कॉल कैसे कर सकते हैं, फोन कीजिए 9873666555 पर, और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी फिर आपके साथ होगा, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।

फाट लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, फाट लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ खटक होई बेकरी, सही सही सही सही सही झाक दिनक दिन झाक दिनक दिन झाक दिनक दिन झाक दिनक दिन झाक आँख मिल जाई है सजनिया।

0: करी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होते करी
1: तो।

0: दो बनिया रामा कैसा जादूगर,
1: मन ले दो बनिया रामा कैसा जादूगर।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लेट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माय एनर्जी लाइक दिस। माय एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया तो बाहर जाओ कर क्या, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत।
3: दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कई बार एक दूसरे से कहते हुए, यार आज दिल नहीं कर रहा। कोई कहता है दिल मत दुखाना। कई बार हमने ये भी कहते हुए सुना है दिल से करना। हम बार बार दिल की बातें तो करते हैं, लेकिन दिल है क्या, दिल को समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम हृदय रोग विशेषज्ञ को दिल से जोड़ देते हैं, लेकिन वो तो केवल एक शरीर के अंग को ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन दिल या हार्ट, जिसको इंग्लिश में हम कई बार हार्ट हार्ट हार्ट कहते भी रहते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे मेरे जीवन को और आपके जीवन को टटोल रहा है, इसके बारे में हम नहीं सोचते। लेकिन जो सोचते हैं वो न केवल अपने दिल का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने दिल का ख्याल रखते हुए कईयों के दिल को सशक्त बनाते हैं। 107.8 FM रेडियो मधुबन पे आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम, और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही यशस्वी हस्ती हम मौजूद है। दोस्तों, मुझे ये आपके सामने जाहिर करते हुए बहुत खुशी हो रही है, मैं कहूंगा मेरा दिल बाग बाग हो रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ है हार्टफुलनेस फाउंडेशन के जो सृजन करता है, जो बीज है, आदरणीय दाजी, जिन्हें हम प्यार से दाजी कहते हैं, लेकिन लोग उनको पहले तो कमलेश पटेल जी के नाम से जानते थे, लेकिन प्यार से सब उन्हें दाजी कहते हैं। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने आदरणीय दाजी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। आइए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दाजी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद शांतनु, धन्यवाद, थैंक यू।
3: और आपका जो व्यस्तता है वो हम सब जानते हैं, आपको अक्सर हम सुन रहे होते हैं, कभी आप यहाँ हैं, कभी आप वहाँ हैं, और इस व्यस्तता के बीच में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, तो उसके लिए सबसे पहले हम बहुत आभारी हैं आपके।
4: मेरा कर्तव्य है जैसे यशस्वी भारत बनाना है, जब सुना यशस्वी भारत के लिए कुछ बोला जाए तो ये तो महा अपॉर्चुनिटी है, महा तक है ना?
3: जी,
4: हम तो जैसे एक मिलके एक ऐसे देश को, देश की क्षमता को कहो या देश की पहचान को कहो, उसको आगे बढ़ाना है।
3: जी, तो जैसे ही आपने कहा कि एक साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है, और उसी यात्रा में हम यशस्वी भारत के एक के बाद एक के बाद हम हमारे स्पीकर्स, हमारे भारत के रत्नों से, भारत के जो नायाब हीरे हैं उनसे मिलते हैं, उनमें से एक आप हैं। आपकी कहानी मैं समझता हूँ हर युवा को, हर बच्चे को इसलिए जानने जरूरी है क्योंकि एक बैलेंस की कहानी है। मैं जैसे समझता हूँ कि कैसे गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, लोकाचार व्यवहार बिजनेस आदि सब कुछ करते हुए भी किस प्रकार से आध्यात्म का हाथ पकड़ करके व्यक्ति न केवल अपना लेकिन अपने आसपास के लोगों का जीवन में बहुत बड़ा एक कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, मार्मिक परिवर्तन ला सकता है, उसका मैं समझता हूँ आपका जीवन एक बहुत सुंदर मिसाल है। लेकिन आपकी जुबानी आपकी कहानी सुनने में हमें बहुत मजा आएगा, तो हम शुरुआत से जानना चाहेंगे कि क्या थी ये यात्रा, कैसी थी ये यात्रा, और आपकी जुबानी ये जानना चाहेंगे।
4: वेल, बचपन से ही अपने देश में, खास करके हमारे जमाने के लोग जब आध्यात्मिकता थी और तुरंत मुड़ जाते थे। एक जमाना हर आदमी की चाह होती थी कि हम विवेकानंद जैसे बने, दयानंद जी जैसे बने।

0: सुभाष चंद्र बोस जैसे बने, महात्मा तिलक जैसे बने, अच्छे लोग बने। और हमारे हीरो जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे, और खास करके उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंसा, मोस्ट एडोरेबल पर्सन, वेरी सिंपल इंडिविजुअल। तो उस दिशा में मेरी गतियां और कृतियां भी उसी दिशा में चल रही थी। तो एक बार वेकेशन में सोचा, हमारा कॉलेज का वेकेशन होता है, तो सुबह एक समय ख्याल आ गया, चलो आज संन्यास ले लेते हैं। ले लिया, घर छोड़ दिया मैंने और नदी के किनारे चला गया। गांव से हमारे नदी का किनारा बहुत नजदीक था, नर्मदा, और वहां पे शिव जी का एक मंदिर है, वहां जाके रुक गया हमें। और वहां पे अघोरी बाबा होते हैं, वो परिक्रमा करते हैं नर्मदा नदी की, नदी मुख से जहां सागर से मिलती है वहां तक दोनों तट पे वो घूमते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। शाम हो गई तो मैंने मुझे एक अघोरी बाबा आके बोले, बेटे क्या चाहते हो, सुबह से यहाँ बैठे हैं, वो कुछ बोलते भी नहीं। मैंने बोला कुछ चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा एक चीज कि आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपके शिष्य के वास्ते सेवा करूंगा। तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, क्योंकि मेरी जब मैं उस समय 18 साल का लड़का था, और उन्होंने देखा ये मासूम बच्चा ऐसी ढूंढ में निकल रहा है, उसका जवाब मेरे पास अभी भी नहीं है। वो 80 प्लस उम्र के होंगे बुजुर्ग अघोरी बाबा, उनकी आंखों में आंसू ऐसे, वो सिंसियरली बोल रहे हैं मुझे कि बेटे तू वापस घर चला जा, मैंने भी तेरे उम्र पे ऐसे ही घर छोड़ दिया था, भटकता रहता हूं, अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया मैंने, शांति भी नहीं मिली, अभी भिख मंगा हो गया हूँ, इधर एक गांव से दूसरे गांव, ये लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, घर भी नहीं माथे पे, ध्यान कैसे करेंगे, खाने की चिंता, कहाँ रहेंगे उसकी चिंता, और बीमार होएंगे तो कहाँ जाना, कैसे करना होगा, तो तू घर चला जा, तेरा गुरु तुझे ढूंढ लेगा।
1: अच्छा, गुरु ही तुम्हें ढूंढ लेंगे।
0: हाँ, तो ऐसा ही हुआ। एक महीने के अंदर ही एक लड़का मिला मुझे, मेरा जो दोस्त था, वो बोले भाई कम आई विल टेक यू टू वन प्रिसेप्टर, जो ट्रेनर थे सहज मार्ग पद्धति के ट्रेनर, जिनको प्रिसेप्टर भी कहते हैं अंदर श्री रामचंद्र मिशन
1: जी।
0: तो वहां ले गए, वो बोले कि आपको इंस्टेंटली आपको समाधि में रख देंगे, जैसे प्राणाहुति की वजह से उसका प्रयोग करके आपको एकदम वही हालत को पहुंचा देंगे जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओगे। चलो इससे बोला कहाँ से मिलेगा, और मैंने बोला कितना पैसा लगेगा, बोला जीरो फीस, देयर आर नो चार्जेस फॉर ब्रह्म विद्या, इन लाइन विद अवर इंडियन ट्रेडिशन के ब्रह्म विद्या के लिए कोई फीस नहीं होती है, और दक्षिणा भी शुरुआत में नहीं होती है, दक्षिणा तो मन चाहे तो बाद में आप दे सकते हैं, वो भी यदि आप सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हुए तो। लेकिन आजकल एक माहौल ऐसा बन गया है, फिर ठीक है ये सब, लेकिन और आगे चल के बहुत बहुत बातें हुई जो हम करेंगे अभी, लेकिन पहले ही इंटरेक्शन में जब उन्होंने मुझे ध्यान करवाया तो वो खुद रोने लगी, क्योंकि मैं ध्यान में इतना गुम हो गया था पहले ही ध्यान में। उन्होंने मेरे पांव थोड़ा थप थपाया, क्योंकि उन्होंने बताया बस कीजिए भाई, ओम शांति। अब ध्यान, इनका ध्यान जब पूरा होता है तो प्रशिक्षक ओम शांति बोलते हैं, या पांव जब वो आंख खुलती नहीं है तो जरा पांव पे ऐसा करते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया क्योंकि मैं एकदम गुम हो गया था। तो बोले कि आपके संस्कार इतने तगड़े हैं, आप बहुत वृद्धि करोगे कि आप रेगुलरली ये ध्यान की पद्धति अपनाए रखो, शाम की सफाई करो हृदय की, सुबह का ध्यान करो, और रात को सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके सो जाओ। दिस प्रिस्क्रिप्शन वॉज गिवन टू मी
1: फॉर माय
0: तीन बातें। उनसे बोले कि आप पूरा पूरी हेल्थ आपके तैयार हो जाएगी, कि फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ विल बी इन सिंक। बढ़िया जी, पहले ही सत्संग में जिसको हम कहते हैं तो डूब गया, तो एक ही चीज मुझे ग्लो नजर में आया वो था परमहंस की, चेहरा नहीं था सिर्फ ग्लो था, और वो ग्लो ऐसा याद करा रहा है कि हाँ ये परमहंस ही है, और जस्ट हाथ जस्ट ऐसा दिखाई दिया हाथ, इट वॉज ए सिग्नल कि नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ, यू हैव फाउंड योर गुरु. देन दैट वॉज श्री रामचंद्र जी फ्रॉम शाहजहानपुर. उस समय मैं कॉलेज में था और जा तो नहीं सकता था उनको मिलने, लेकिन नेक्स्ट जब ईयर एंड होता है ना तो वैकेशन में बाद में चले गए उनको मिलने, और उनसे फिर से मुलाकात हुई, और तभी से ये रफ्तार चालू है. सुबह शाम लेफ्ट राइट ध्यान करना है, और हफ्ते में दो तीन बार प्रशिक्षक के पास जाके और एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है, ग्रुप सत्संग होता है. सो और उस जमाने में मेरे बहुत दोस्त थे 20-25 हमारे कॉलेज में क्लास, सब ध्यान करने लगे, और अब सब बच्चों को देख के हमारे प्रोफेसर लोग भी बहुत खुश थे कि ये बच्चों में कुछ और चीज है. तो वो पूछते आप लोग क्या करते हो, सो बता दे क्या है, तो वो लोग भी शुरू किए, तो एक माहौल बन गया अपने कॉलेज में भी और अपना जो हॉस्टल था वहाँ पे भी, क्योंकि जहाँ एक बंदा ध्यान करे और जहाँ 20-25 लोग ध्यान करे वो तो माहौल
1: अलग है. जी जी.
0: और हम जब इनके कांटेक्ट में रह के बात करते हैं तो उनकी फैमिलीज आनंद आता है, क्योंकि उस जमाने से अभी तक जो ध्यान करता है उस फैमिली पे तो असर तो जरूर पड़ेगा ही. उनके बच्चों के संस्कार देखो, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के संस्कार देखो, और जो नहीं करते हैं उनसे भी मुलाकात कभी न कभी हो जाती है, उनके संस्कार देखो, उनके चेहरे की रोशनी देखो, बहुत फर्क है. तो ये तो अपनी आंखों से देखे हुए हैं, इसके लिए जेनेटिक या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है ही नहीं, है ना. ये फैमिली को देख लो और ये फैमिली को देख लो, जो 25 साल से करते आए हैं और जो 25 साल से जो नहीं करते हैं, ये तो कंट्रोल ग्रुप और साइंटिफिक ग्रुप अंडर टेस्ट हो ही गया. और नॉट ओनली दिस ग्रुप बट मेनी अदर पीपल, जहां जहां भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति चलती है वहां रोशनी तो आएगी ही, उसकी असर तो पड़ेगी, दिया जलाओ तो अंधेरा तो जाएगा ही.
1: ये जो आपने बात कही कि दिया जलाया और अंधेरा तो जाएगा ही, जैसे आपने कहा कि आपके जीवन में गुरु के आने से या एक सहज मार्ग के द्वारा आपके जीवन में एक रोशनी आने लगी, लेकिन जो वो आपके अंदर का सन्यासी था जिसको सन्यास करना था, उसको कैसे आपने शांत किया? क्योंकि आपने पढ़ाई जारी रखी, आपने फार्मास्यूटिकल में पढ़ाई की, उसके बाद फिर आप विदेश गए, आगे भी पढ़ाई जारी रखी, बिजनेस किया, क्योंकि जनरली जो सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं उनको लगता है बस सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके बैठ जाए तो ही शायद ईश्वर के साथ प्राप्ति होगी या ईश्वर के साथ मुलाकात होगा या अध्यात्म की प्राप्ति होगी, लेकिन आपने जारी रखा, तो कौन सी वो बात थी सहज मार्ग की, या कौन सी वो बात आपके प्रिसेप्टर की या गुरु की ऐसी आपको अच्छी लगी जिसने आपको सन्यास का एक नया रूप समझाया?
0: हमारी जो प्रिसेप्टर थी द्रौपदी देवी अग्रवाल, हाउसवाइफ, जब उन्होंने मेरी बात सुनी कि मैं सन्यासी बनने का इरादा है तो वो हंसने लगी और कहने लगी सन्यासी बनोगे शादी नहीं करोगे? मैंने बोला नहीं करूंगा. क्यों? मैंने बोला विवेकानंद जैसे बनना है मुझे. तो शादी नहीं करोगे उसका मतलब है आप ईश्वर से भी बड़े स्मार्ट हो क्या? मैंने बोला समझा नहीं, मैं ईश्वर से तो कैसे स्मार्ट हो सकता हूँ? तो बोली ईश्वर इतना बेवकूफ नहीं है कि जब उन्होंने दो सेक्सेस बनाए पुरुष और स्त्री, एक काफी होता तो दुनिया चल जाती, दूसरे की जरूरत है, नेचर की डिमांड है. अप्रकृतिक जीवन जी के आप कभी भी आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं ला सकते. प्रकृतिक जीवन से ही साहजिक रूप से अपने जीवन की सब घटनाएं को आगे बढ़ाना है. आध्यात्मिक जीवन में भी इतना डूबना नहीं है कि आप समाज पे पैरासाइट बन जाए.
1: जी.
0: और उसकी वजह से आपकी फैमिली भी सफर करेगी, माँ बाप भी सफर करेंगे, आपको चैन कैसे मिल सकता?

0: जब वो सफर करेंगे आपके सेपरेशन से, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जंगल, ब्रिंग जंगल इन योर होम के
1: जंगल में ना जाकर के जंगल को ही अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले।
0: हाँ जी, तो आध्यात्मिक में इतना मत डूबो कि अपनी भौतिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए, और भौतिकता में भी इतना मत डूबो कि आध्यात्मिक जो जिम्मेदारी है खुद की और वो मिट जाए। आध्यात्मिकता किसी को धंधा करने से रोकती नहीं है, नौकरी करने से रोकती नहीं है, खाना खाने से रोकती नहीं है, सब कुछ नैसर्गिक रूप से नेचुरली हो जाए,
1: स्वाभाविक लगे, नेचुरल लगे।
0: नेचुरल
1: मतलब अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उसके मेहनत से दिखता है कि बहुत परिश्रम है, बहुत कठिन है ये रास्ता, तो शायद लोग उस रास्ते पे आकर्षित ही नहीं हो चलने के लिए। लेकिन अगर कोई रास्ता सटीक है तो वो सहज भी होगा, सरल भी होगा और नैसर्गिक होगा। जैसा मुझे समझ में आता है कि हर प्राकृतिक चीज बड़ी सरल है और प्राकृतिक चीजें, स्वाभाविक चीजें बड़ी सरल है। जैसे ही हम उसमें कुछ अपना अपना कुछ, जैसे कहें हिंदी में, हम होशियारी करने जाते हैं, उसको कुछ आर्टिफिशियल बना देते हैं, दैट आर्टिफिशियल शब्द ही ऐसा है कि उसमें हमने बहुत ज्यादा कुछ कर दिया है और उसका जो नैसर्गिकता है, स्वाभाविकता है, वो खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि आज जो हमारे पास, मैं तो यूं कहूंगा कि लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं, आपका जो जनरेशन रहा है दाजी, वो बहुत सौभाग्यशाली जनरेशन रहा है कि आध्यात्म का मूल्यांकन नहीं हुआ था, आध्यात्म आध्यात्म था, धीरे धीरे आध्यात्म का ग्लोबलाइजेशन हो गया, उसका वैश्वीकरण हो गया और आध्यात्म का भी मार्केटिंग होने लगा और आज इतना बड़ा एक शॉपिंग मॉल है लोगों के सामने कि ये ब्रांड नहीं तो वो ब्रांड, वो ब्रांड नहीं तो ये ब्रांड, और ब्रांड में भी फिर तुलना करते रहना कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन ज्यादा बेटर है, कौन कम बेटर है, और इस कंपैरिजन के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम इस दुविधा में चले जा रहे हैं और हमारा जो वैल्यूएबल एनर्जी और समय है वो छूटता जा रहा है, हमारी कैपेसिटी कम हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को जिसको आध्यात्म के बारे में थोड़ा कम पता है, उसको रुचि है उसमें, वो एंटर करना चाहता है, वेयर डू दे स्टार्ट, कहाँ से उनकी शुरुआत होनी चाहिए?
0: आपने अच्छा एग्जांपल दिया मॉल का शॉपिंग मॉल में सब गुरु लोगों की दुकानें खुली हैं, तो विंडो शॉपिंग तो करना पड़ेगा
1: देखना तो पड़ेगा,
0: देखना तो पड़ेगा, राइट। और हो सके, जैसा हमने एक बार ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में सहज मार्ग के प्रशिक्षक को बुलाया गया था, दिस गोज बैक इन 2001-2002, तो उस समय में न्यूयॉर्क में रहता था, तो मैं चला गया, उनको 3 महीने के लिए प्रोग्राम करना था, वीकेंड्स प्रोग्राम फॉर फिलोसॉफी। तो हमने प्रपोज किया कि फिलोसॉफी की बातें करें, उसके बदले खास करके हम जोर देंगे प्रैक्टिस पे, 80% प्रैक्टिस एंड 20% सब डिस्कशन होगा। तो उस समय मैंने वैसे ही खोपड़ी में ख्याल आया कि चलो ये शॉपिंग मॉल में जाते हैं सब आध्यात्मिक शॉपिंग मॉल्स है, मैंने बोला आप अपने आप ही 5-6 सिस्टम नक्की कर लो, ये सिस्टम ए बी सी डी, आप जितने एट दैट टाइम 20 बच्चे थे, 20 यंगस्टर्स कॉलेज गोर्स, तो उनको हमने डिवाइड कर लिया, आपको जितना जो सिस्टम पसंद हो वो लिख लो थियोरेटिकली, उनका प्रैक्टिस कैसा है, और मैं आप आपके माँ बाप को भी कुछ पता हो कोई सिस्टम के बारे में वो भी इंक्लूड कर लो, बाद में आप सब स्टूडेंट्स ऑल दिस सिस्टम एक्सचेंज करो, है ना। तो इन्होंने लिस्ट बनाया था करीबन 21-22 सिस्टम का, तो मैंने बताया कि एवरी वीक एक सिस्टम को अपनाओ आप, उसको प्रैक्टिस करो आप, और उसके बारे में डायरी लिखो आपको क्या अनुभूति हुई। बड़े ढंग से लिखते थे वो, जब ज्ञान नहीं होता था या प्रैक्टिस चुप जाते थे वो लिखते थे आज मुझ नहीं हुआ, तो इतना ऑनेस्ट तो थे ही थे वो लोग। बाद में मैंने बताया हार्टफुलनेस के बारे में कि आप हार्टफुलनेस करो, हृदय पे ध्यान करो संकल्प करके कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है,

0: और बाद में आखिरी वीक मैंने उनको बताया कि अभी फिर से हार्टफुलनेस करो ऑन द हार्ट विद अ संकल्प के हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, बट वन एडिशन वॉज देयर, दैट वॉज प्राणाहुति. प्राणाहुति प्लस हार्टफुलनेस मेडिटेशन, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो वो हफ्ता उन्होंने ये किया, तो उससे क्या पड़ जाता है फर्क, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? हार्टफुलनेस विदाउट प्राणाहुति एंड हार्टफुलनेस विद प्राणाहुति का क्या फर्क असर पड़ता है, वही मैं अपने जो श्रोता है उनको ही रिक्वेस्ट करूंगा. आप कुछ भी कर लो लेकिन कुछ तो करो, साइंटिफिक माइंड से करो कि उससे हमारे में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या अनुभूति आ रही है. कि हम क्या होता है कि आमतौर पे आजकल के बच्चों में वर्सेस जनरेशंस बिफोर, वो मान्यता या बिलीफ सिस्टम में मानना तो चाहते हैं लेकिन दे वांट सम प्रूफ. व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड, व्हाट इज द साइंटिफिक बैकग्राउंड बिहाइंड इट. तो वी मेक द एक्सपेरिमेंट,
1: किसी ने किसी कसौटी पे उसको जांच करके जचा हुआ चीज को इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं
0: जी. तो ये लोग क्या करते हैं कि आप कोई भी शख्स को खास करके अपने इंडिया में पूछो कि डू यू बिलीव इन गॉड, ईश्वर में मानते हो या नहीं
1: जी,
0: तो हर बंदा बोलेगा हाँ मानते हैं भाई
1: जी.
0: और बुजुर्ग से पूछो तो बुजुर्ग लोग को ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो कई कोई गुस्सा भी करेगा, अरे कैसी बात करता है भाई कि मैं तो हैं? क्या ऐसा नहीं लिखा ही देता है कि मेरे सर पे तिलक है, क्या नहीं लगता है कि मैं ध्यान करता हूँ या पूजा पाठ करता हूँ, ईश्वर में तो मानता हूँ. लेकिन जब हम आगे प्रश्न करते हैं ना कि आप क्यों मानते हो, तो वो क्या बताते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म ऐसा कहता है, हमारे पंडित लोग ऐसे कहते हैं, हमारी ऐसी
1: हमारे घर में मम्मी पापा ने बोला है, इसलिए ये भी
0: हाँ. मम्मी पापा को पूछोगे तो वो भी पूछेंगे माँ ने बताया ऐसा
1: जी. हाँ.
0: लेकिन आप खुद क्या कहते हो उसका जवाब नहीं मिलेगा राइट. ये मान्यता हो गई, मान्यता से हम खुश हो जाते हैं. आई बिलीव इन गॉड एंड देट बिकम्स द बिगेस्ट कॉन्सोलेशन. बट वॉट विल यू डू नेक्स्ट, आगे क्या करोगे? मान तो लिया कि ईश्वर है, आगे क्या करोगे? ईश्वर को हृदय में रख दिया, हमेशा साथ में रखा, तो बड़ी मुसीबत खड़ा करोगे देखिए आपको. अंदर रखोगे साथ साथ रखोगे तो बोलता ही रहेगा ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर. दिल की आवाज तो वही है. दिल की आवाज हमेशा, जब भी कुछ गलत होता है ना तो अंदर से एक वॉइस ऑफ कॉन्शियंस हो जाती है. उस समय क्या होता है, हृदय भारी हो जाता है या हृदय को कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना खुशी पैदा हो जाती है, सैडनेस हो जाती है. कुछ गलत करते हैं या करने वाले होते हैं तो ऐसा ही होता है. कई लोग पूछते हैं कि जब मैं अच्छा करता हूँ तब हृदय कुछ बोलता नहीं है, दिल कुछ भी नहीं बोलता है. अरे भाई जब तू अच्छा कर रहा है तो वार्निंग की क्या जरूरत है? वार्निंग तभी मिलती है, रेड फ्लैग तभी होता है जब कुछ गलत होता है. फुटबॉल में हम देखते हैं ना, किसने कुछ गलत कर दिया था, रेड फ्लैग, येलो फ्लैग. तो हृदय भी ऐसे फ्लैग रेज करते हैं. और यदि इफ यू लिसन टू दिस फ्लैग फ्लैगिंग बाय द हार्ट, देन अपना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट होएगा.
1: मतलब जो दिल कह रहा है उसको नजरअंदाज नहीं करे. कई बार लोग इस जुमले का इस्तेमाल भी करते कि दिल को मत मारो, दिल को मत मारो. मतलब वो जो विवेक है अंदर का, जो कॉन्साइंस है, उसके हिसाब से अगर व्यक्ति चल रहा है तो वो सदा ही वो सदाचारी जीवन यापन करेगा. लेकिन क्या ऐसा आपको लगता है कि लोगों में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिसकी वजह से हम दिल की सुनना बंद कर देते हैं? कौन से वो चीज आपको लगते हैं, कौन से वो मुख्य कारण है जिनकी वजह से हम हमारे हार्ट को नहीं सुनते हैं, उसको दबा देते हैं एंड वी मूव ऑन?
0: एक चीज है अहंकार. है ना, अहंकार में क्या होता है, माँ ने बोल दिया, इवन छोटे बच्चे

0: तीन चार साल के जो होते हैं, बेटे ये कर ले, तड़ांग करके जाओ, नहीं करूंगा मैं, वो सोचते भी नहीं है। और यही आदत सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के साथ, ईगो जब डोमिनेट करता है, मैं उनकी क्यों सुनू, मैं तो उनसे बड़ा हूं, मैं उनकी सुनेगा तो मेरी इज्जत जाएगी। सच है फिर भी डेलिबरेटली वी से नो। पॉलिटिक्स में भी डिसएग्रीमेंट आर बिकॉज ऑफ दिस। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एग्जांपल दे रहे, उन्होंने कुछ प्रोग्राम रख दिया कि हम क्रिमिनल लॉज चेंज करेंगे, इट इज गुड फॉर द कंट्री, बट ऑपोजिशन आदत है, ऑपोजिशन करना
1: आदत है। यू कहेंगे कि जॉब है कि जो भी बोला जाए उसके अगेंस्ट में बोलना है।
0: तो हर परिवार में भी ऐसा ही होता है, बीबी बोले कि मेरे मामा पप्पी आ रहे हैं, हस्बैंड जानता है कि मामा पापा आएंगे और तो बीबी तो खुश रहेगी ही, फिर भी वो कभी कभी नाराज हो जाते हैं, वो तो बार बार आते रहते हैं, तो ऑपोजिट होता है। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है, डिजायर्स, अति डिजायर, अति इच्छाएं इतनी होती है जिसकी वजह से हम जो सच है वो फॉलो नहीं करना चाहते हैं, झूठ के पीछे पड़ जाते हैं। राइट, किसी से साथ आपका मन लग गया, प्रेम हो गया, जिससे आप शादी करना चाहोगे, विवाह करोगे, उनके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगे आप, लेकिन माँ बाप ने अपोज कर लिया। माँ बाप बोलेंगे कि क्या इस घड़ी के लिए हमने आपको बड़े किए थे कि आप अभी सुनते नहीं हो हमारी। वो ब्लैकमेल करते हैं अपने दिल की आवाज को बंद करके। जब माँ बाप की सुनते हैं हम, सुनना तो चाहिए लेकिन अपने दिल पे पत्थर लगा के जब उनकी बात सुनते हैं तो कोई सुखी नहीं होता है, न तो आप रहोगे न वो बंदा या बंदी खुश रहेंगे। जिनको आपने मना कर दिया वो भी खुश नहीं रहेंगे, वो खुश नहीं तो उनकी बीवी भी खुश नहीं रहेगी, तो पूरी दुनिया वैसे ही उसका रिपल इफेक्ट पड़ता ही रहता है, पड़ता ही रहता है। इस इज द चेन रिएक्शन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ अ डिजीज ऑफ अनहैप्पीनेस।
1: इसका मतलब जब भी हम दिल की नहीं सुनते हैं तो हम खुद भी नाखुश रहते हैं और अपने चारों तरफ एक नाखुशी का वातावरण पैदा करते हैं। इट्स मोर लाइक अ वायरस।
0: यू एक्सप्रेस इट बेटर देन आई डिड, थैंक यू।
1: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो आपके संग का रंग लग गया मुझे। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो आपने दो कारण बताए कि अहंकार और इच्छा, इच्छाएं और अहंकार, ईगो एंड डिजायर्स, ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है ये द्वेष पैदा करते हैं जिसकी वजह से वो अपने दिल की सुनना बंद कर देते हैं। तो इस अहंकार और इस इच्छा पे अगर किसी को जीत पानी है तो उसको क्या करना चाहिए?
0: कई लोग बोलते हैं,
1: कभी मैं कहूंगा दाजी अगर आप इसको अपने एग्जांपल से बताएं हमें कि कभी आपके सामने भी ऐसी परीक्षाएं आई होंगी जहां पर अहंकार ने आपको आपके दिल पे विजय प्राप्त करने की कोशिश की होगी या इच्छा ने उसको दबाने की कोशिश की होगी। आप अपनी किसी उदाहरण से अगर हमें समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा और ज्यादा क्लियर समझ आएगा।
0: एक जनरल प्रिंसिपल मैंने हमारे गुरुदेव के जो है वो पहले से ही एडॉप्ट कर लिया था छोटी उम्र से ही। उनका कहना है कि ये अहंकार जो चीज है इतनी बुरी नहीं है, बुरी हो सकती है। आप डॉक्टर नहीं हो शायद, और आप कहो कि मैं डॉक्टर हूँ, मिसरिप्रेजेंटेड। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, किसी को अपना बड़प्पन बताना चाहते हो कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ? दैट इज वन पार्ट ऑफ ईगो। सेकेंड पार्ट, आप यदि डॉक्टर हो और यदि आप कहो कि मैं डॉक्टर हूँ, वो गलती नहीं है, इसमें बड़प्पन
1: स्वाभिमान है, स्वाभिमान है या स्वमान है, रिकॉग्नाइज योरसेल्फ।
0: लेकिन पूरे लंदन में मेरे से अच्छा कोई डॉक्टर है ही नहीं।
1: दिस इज घमंड,
0: घमंड। और हम देखते हैं कि आपने पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट किया, हर दिन ट्रीटमेंट करते हो, लेकिन हर दिन की जो ट्रीटमेंट है उसमें आप सुधार लाना चाहते हो, वो भी तो ईगो है, मैं करूंगा, अच्छा करूंगा, वो भी बट ये भलाई के लिए अच्छा है, मुझे वो इम्प्रूव करेगा, मुझे ट्रांसफॉर्म

0: कि इच्छाएं गलत नहीं है लेकिन गलत इच्छाएं वो नहीं रखना है। तो दोस्तों जो भी आप सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ ये जो चाबी दाजी ने हम सबको दी है, इस चाबी को आप अपने पल्लू के साथ अपने दिमाग में अपने दिल में गांठ बांध लें कि इच्छाएं गलत नहीं है लेकिन गलत इच्छाओं से हमें दूर रहना है। और गलत इच्छाएं कौन सी है कैसी है ये मैं समझता हूँ हर कोई उनके दिल से अगर पूछे तो जरूर बताएगा। ऐसी इच्छाएं जो आपके दिल को ना खुश कर रही हैं, किसी के दिल को ना खुश कर रही हैं, उनसे दूर रहना ही हर एक के लिए भला है। आइए इस बातचीत को हम जारी रखते हैं। आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम 107.8 FM रेडियो मधुबन पे। और आज हमारे साथ मेहमान, मैं तो कहूंगा मेहमान नहीं, हमारे अपने ही हैं, दाजी। दाजी से हम बातचीत कर रहे हैं और दाजी ने हमें अभी तक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं, लेकिन एक और अभी इंटरेस्टिंग चीज हमें दाजी से जानना है और वो है उनका भारत से दूर विदेश में अमेरिका में रहते हुए भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार उनको पकड़ के रख पाना कितना मुश्किल लगा आपको?
1: मुश्किल तो कैसे होएगा, जिसे प्यार हो गया उनके साथ रहने से मुसीबत तो होती नहीं है, जिसके साथ प्यार नहीं है उसके साथ रहना मुसीबत हो जाती है।
0: ये सही बात
1: है ना। तो जो संस्कृति हमें एक तरह की नरिशमेंट हमारा पोषण कर रही है वो तो अपना स्वभाव बन जाता है
0: जी। तो अगर मैं ऐसा कहूँ दाजी कि आप ये मान रहे हैं कि भारतीय संस्कृति ने आपको आपका एक स्वभाव दिया, लेकिन जिस जमाने में आप विदेश गए उस जमाने में बहुत ही हेय दृष्टि से एशियन सिटीजन्स को देखा जाता था, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ से जो भी लोग आगे जाते थे या दूसरे विदेशों में जाते थे उनके प्रति जो दृष्टि होती थी, जो व्यवहार होता था वो थोड़ा सा भेदभाव वाला होता था। और मैं समझता हूँ शायद आपको भी कभी ये फेस करना पड़ा होगा। ऐसे में आपने क्या इस्तेमाल किया, कौन सी बातों को ध्यान में रखा और कैसे इस चीज को अपने लिए एक पॉजिटिव माहौल तैयार किया?
1: भेद तो मुझे एनकाउंटर करने का मौका ही नहीं आया, क्योंकि हमारा प्रोफेशन इतना नोबल है, फार्मासिस्ट, और वैल्यू भी इतनी है, तो कोई दे डोंट लुक डाउन अपॉन यू, nobody dare to because of your education and who you are. Secondly, मैं बताना चाहूंगा, हमने इच्छा के बारे में बात की, अहंकार के बारे में बात की, तो एक सिंपल फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे। और एक चीज खास करके जो हमारे गुरुमंत जी का मंत्र जैसा है कि देर इज नथिंग रॉन्ग, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, ही सेज देर इज नथिंग रॉन्ग इन थिंकिंग योर सेल्फ टू बी ग्रेट, गो अहेड थिंक दैट यू आर ग्रेट, बट ऑलवेज थिंक दैट द अदर पर्सन इज ग्रेटर।
0: बहुत सुंदर।
1: तो ये बाद में अहंकार का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, देर विल बी हार्मनी,
0: क्योंकि आपने नम्रता को भी साथ में रखा है कि भाई मैं महान हूँ लेकिन मेरे सामने वाला मेरे से भी महान है। तो ये जो सम्मान और खुद को मान देना, मतलब आपने खुद को भी मान दिया, सामने वाले को भी सम्मान दिया, तो ये बहुत सुंदर एक फॉर्मूला आज हम सबको आपने दिया दादी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि खुद को ग्रेट समझो लेकिन सामने वाले को अपने से भी ग्रेट समझो। लेकिन कई बार सामने वाले को अगर हम अपने से ग्रेट समझते हैं और उस सामने वाले से अगर हमको कुछ लॉस हो जाता है या कुछ अप्रिय अनुभव होते हैं, तो ऐसे में इस फॉर्मूले को आप कैसे जारी रखते हैं?
1: हंस लो थोड़ा।
0: बिल्कुल,
1: उनको मजा लेने दो, बिकॉज वन हु लाफ्स लास्ट लाफ्स द बेस्ट।
0: बिल्कुल
1: है ना। तो उनको उनको खुशी चाहिए, उनको प्रेज चाहिए, तो प्रेज करो ना, डोंट इंसल्ट अ पर्सन। इफ दे वॉन्ट टू बी हैप्पी लेट देम बी हैप्पी, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट इम्पोर्टेंस, शावर देम विद ट्रेमेंडस प्रेजेस एंड इम्पोर्टेंस, बट इट शुड नॉट बिकम फ्लैटरी।
0: मतलब सामने वाले को अगर प्रशंसा ही चाहिए तो दिल से उसकी प्रशंसा करो, लेकिन चापलूसी नहीं करो या उसके लिए जो हम कहते हैं मक्खन नहीं लगाया करो उन्हें, वो चीज। लेकिन दाजी जब आप आज के युवा जनरेशन को देखते हैं और कई लोग जो हैं वो अपने देश में रहते हुए भी और देश के बाहर भी जब जाते हैं और देश के बारे में बातचीत करते हैं, तो अक्सर करके हमने देखा है कि बातचीत जो है वो थोड़ा नेगेटिव होता है, थोड़ा सा उत्साहहीन होता है या बस खामियां ही खामियां गिनते रहते हैं। कौन कितनी खामियां गिना सकता है, कौन कितने बुरे अनुभव गिना सकता है।

0: चेहरे का एक होड़ लगा हुआ होता है। ये मुझे पता है और हमारे कई श्रोता साथी इसको मानते हैं कि ये अपनी अंतरात्मा के लिए बड़ा घातक होता है, इससे कैसे बचा जाए?
1: By cultivating negative attitude, it's your choice. Cultivating positive attitude is also your choice. जब भी हम negative attitude को जारी रखते हैं तो देखो अपने हृदय पे क्या असर पड़ता है। जब पॉजिटिव एटीट्यूड को हम देखते हैं तब हमारी हेल्थ, हमारे माइंड, अपने मूड पे कैसा असर पड़ता है वो देखो
0: जी।
1: क्या नेगेटिव बोलने से वो नेगेटिव चीज चली जाएगी? नहीं जाएगी। आप जब भी आते हो बोलते हैं कि वो यहाँ करप्शन ज्यादा है, करप्शन तो सब जगह है ना, यूके में देखो या यूएस में देखो या डेनमार्क में देखो, सब जगह करप्शन तो है ही है। आप वहां लंबे समय तक वो सोसाइटी में रहोगे तब पता चलेगा। करप्शन एक ही फॉर्म के नहीं होते हैं। इंडिया में करप्शन का फॉर्म देखते हैं हम एक ही ढंग से, आर्थिक, इसको कितना पैसा दिया, उसको इतना पैसा दिया, राइट, ये आर्थिक ढंग से हम बोलते हैं करप्शन। लेकिन इमोशनल करप्शन भी होता है, व्यावहारिक करप्शन होता है, अपने कम्युनिकेशन में करप्शन होता है,
0: किसी से ज्यादा अच्छा पेश आ रहे हैं, किसी से कम अच्छे पेश आ रहे हैं। जी बिल्कुल,
1: है ना, छोटे बच्चे टेलिंग फादर एफ वर्ड, राइट, telling father I hate you or hey telling mother I hate you is very common in the western world, right? So corruptions are there at many levels, pollutions are there at many levels, right? So look at the positive, sab jagah pe kuch na kuch to hai hi, yadi hum chahe to hum dono ka samanvay kar sakte hain, best of both the worlds. India represents the heart, western world represents the mind. Western people have a very sound mind, organized mind. If we can make use of that organized mind with the generous heart that we are gifted with, we can create new humanity on this planet. Right? देखो आप अपने डॉक्टर्स लोग कहो या फार्मासिस्ट लोग कहो या इंजीनियर्स लोग कहो, राइट, और many people who are working in sanitations at airports in London, अपने इंडियन ही है ना, दुबई में भी देखो इंडियन ही है या पाकिस्तानी, बट यहाँ आते ही सब थूकते हैं, यहाँ पे फेंकते हैं कुछ न कुछ।
0: जी
1: डॉक्टर वहाँ है, उनका एजुकेशन भी यहाँ ही हुआ था, इंडिया में ही, वहाँ जाके देयर एटीट्यूड, देयर वर्किंग स्टाइल, एवरीथिंग चेंजेस, द सिस्टम, द रिवॉर्ड, the peer pressure, your influence of the surrounding, it does make a difference.
0: ये आपने एक बहुत अच्छी बात सामने लाई कि आपका जो वातावरण है, जिस सिस्टम में आप हैं, जो अवार्ड, पनिशमेंट, पीयर प्रेशर, ये जो भी चीजें हैं, ये आपके व्यवहार को बहुत ज्यादा निर्धारित करती हैं। लेकिन जो आपने एक फॉर्मूला बताया वो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा कि विदेश जो है, या जो हम कहेंगे पश्चिम के देश हैं, उनके पास एक बहुत संतुलित मन है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मन है, और भारत या एशियाई देशों में जो लोग रहते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा दिल है, एक जेनरस हार्ट है, और दोनों का जो समन्वय है, दोनों का जो संतुलन है, वो एक व्यक्ति को बहुत अच्छा सफल बना सकता है। लेकिन क्या ये चीज करने के लिए, संतुलन को करने के लिए, हमारी आज की जो भागम भाग वाली जिंदगी है, वो हमको समय या फुर्सत देती है? एक बिजी यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ
0: जी।
1: सभी को खुशियाँ चाहिए, सुख चाहिए, चैन चाहिए, हैप्पीनेस कहो। ये मैं नहीं कहता हूँ, श्री कृष्ण भगवान गीता में बताया है, सभी प्राणी को सुख चाहिए
0: जी।
1: जीव जंतु को भी सुख चाहिए, इंसान को भी, आदमी को भी सुख चाहिए। सुख को प्राप्त करने के लिए, हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? हार्मनी। देयर मस्ट बी इनर हार्मनी एज वेल एज आउटर हार्मनी। आउटर हार्मनी

0: मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, खुद की कर सकता हूँ। और दिस इनर हार्मनी इज पॉसिबल व्हेन आई हैव अ कंटेम्पलेटिव माइंड। मैं समझाता हूँ, देखो डिफरेंस बिटवीन कंटेम्पलेटिव माइंड एंड नॉट सच ए कंटेम्पलेटिव माइंड। जो दिमाग कंटेम्पलेटिव नहीं होता वो डिस्टर्ब रहता है। डिस्टर्ब माइंड में हार्मनी कभी नहीं आ सकती, राइट? तो कंटेम्पलेटिव माइंड जहां हार्मनी पैदा होती है वो कभी हो सकता है जब हमारा माइंड जो है फोकस्ड हो। यदि फोकस्ड माइंड को बनाना है तो ब्रेन एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा।
1: आपको मसल्स बनाना होता है तो आप जिम जाते हैं, ऐसे माइंड को स्ट्रांग बनाना है तो माइंड को भी एक्टिव रखना होता
0: है। एक्सरसाइज उसकी एक्सरसाइज लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ध्यान,
1: मेडिटेशन कहने लगे हैं।
0: तो ध्यान लीड्स टू फोकस्ड माइंड, फोकस्ड माइंड लीड्स टू कॉन्टेम्पलेटिव माइंड, दैट लीड्स टू हार्मोनी, दैट लीड्स टू हैप्पीनेस। And from that happiness, you can transcend further to joyful state, to blissful state, and beyond. And everything starts with simple practice of closing your eyes. आँख बंद है क्या? आँख बंद करना आपको बहुत तकलीफ होती है? ऐसा ही करना है ना, आँख बंद करो, उसमें तो कुछ तकलीफ है ही नहीं, तो क्यों नहीं करते हो?
1: तो ये सवाल आज दाजी हम सबसे पूछ रहे हैं दोस्तों। मैं भी आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा, खुद से भी, कि कहां दौड़े जा रहे हैं, क्यों दौड़े जा रहे हैं। दौड़िए, लेकिन बीच बीच में अगर रुक करके आंख बंद करने का मौका खुद को नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? और क्या यही कारण आगे चल करके हमें बहुत ज्यादा दुखी कर सकता है? तो क्यों ना हम पहले ही प्रिकॉशन ले लें, जैसे दाजी ने कहा कि रोज थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा सा भी आप समय निकालते हैं और अपने लिए समय निकालते हैं, अपने मन को सशक्त बनाने के लिए ध्यान, चाहे आप कोई भी प्रकार का ध्यान का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, सिर्फ थोड़ा सा समय निकालने की बात है, अपने मन को एक दिशा देने की बात है। और जैसे दाजी ने एक सुंदर फॉर्मूला हमें बताया कि मन को एकाग्र करना है, और एकाग्र करने से मन जो है वो कॉन्टेम्पलेटिव हो जाएगा, मतलब विचारणीय हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे विचार क्रिएट करेगा, इससे अंदर में हार्मनी आएगी अर्थात समरसता आएगी, और वही समरसता जो है हमारे अंदर सुख या हमें सुखी करेगा। और एक सुखी व्यक्ति ही दूसरे को सुख पहुंचा सकता है। जैसे इंग्लिश में कहावत है दोस्तों, हर्ट पीपल हर्ट पीपल, एक दुखी व्यक्ति दूसरों को दुखी ही करता है। तो वैसे ही एक सुखी व्यक्ति दूसरों को सुखी ही कर सकता है, जैसे दाजी ने अपने हार्टफुलनेस फाउंडेशन के द्वारा किया है। आज लाखों लोग हैं, केवल भारत ही नहीं विदेशों तक में भी लाखों लोग हैं जो अलग अलग धर्म और अलग अलग मान्यताओं से आते हैं, लेकिन सहज मार्ग के द्वारा और हार्टफुलनेस फाउंडेशन के द्वारा दाजी की प्रेरणाओं से उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। दाजी आप कई लोगों से मिलते हैं और कई लोग आके आपको अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने परिवर्तन की कहानी सुनाते हैं। कोई एक कहानी जो आपको ऐसी याद आती हो जिसने आपको भी सरप्राइज कर दिया कि वाह ये तो एक बहुत सुंदर स्टोरी है।
0: बहुत ऐसी स्टोरीज है,
1: लेकिन एक जो सतह पे है अभी आपके।
0: बहुत है भैया, लेकिन तो एक कहानी जो मेरे दिमाग में आती है जो कॉन्ट्रास्टिंग है
1: जी।
0: एक महिला, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। किसी ने बताया कि आप थोड़ा हार्टफुलनेस में जाके ध्यान कीजिए, तो हमने बताया देखो ये हीलिंग के लिए नहीं है, लेकिन जिनकी के जो अपना जो ध्येय है उस प्राप्ति के लिए है, जिस ध्येय के लिए हमने जन्म लिया उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए ये ध्यान की पद्धति आप करोगे तो आपको शांति हो जाएगी। तो उनको हमने थोड़ी प्रक्रिया दिखाई और उनको थोड़ी हृदय में जल्दी शांति मिले, इसलिए भी एक्सेलरेटेड पाथ जो हम बताते हैं पोलारिटी एंड अदर एक्सरसाइजेस हीलिंग करवाते हैं। उनका टेंशन दो अल्टीमेट लास्ट मोमेंट पे थी, खत्म हो गया टेंशन। उनके चेहरे पे रोशनी आ गई, जैसे चेहरे पे से कोई प्रकाश नहीं हो बस एकदम मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो गई नहीं। एक दो साल और बढ़ गए।

0: खुशी खुशी हो गई सी
1: जी। ये जो कहा हुआ था कि खुशी जैसी खुराक नहीं, मतलब खुशी जैसी कोई दवाई नहीं है, तो शायद उनको डर इस बात का था कि मौत का डर था, लेकिन जब वो खुशी उनको मिली तो उस खुशी ने बहुत अच्छा मरहम का काम किया उनके लिए।
0: इसी फील सो गुड कि अभी मैं तैयार हूँ। आई मीन इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर अ पर्सन दैट आई एम रेडी फॉर माई डेथ। वो आखिरी मोमेंट के लिए मैं ईश्वर से मिलन करने के लिए तैयार हूँ। जो बड़े बड़े सन्यासी लोग भी तैयार नहीं होते हैं, तपस्या करते ही रहते हैं 1 लाख 10 लाख 10 हजार साल 100 साल, लेकिन यदि आप अपने जीवन का ध्येय 10 दिन में खत्म कर लो तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना ईश्वर की भी।
1: जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह यहाँ पर भी हमें भी अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। तो दाजी, एक आखिरी सवालों के सिलसिले में मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आप भारत का भी कोना कोना जा चुके हैं, जैसे एज अ स्टूडेंट भी, एज आज आप दाजी के हिसाब से भी पूरे देश में भ्रमण करते हैं, और भारत सब कहते हैं कि विविधताओं का देश है, हर चीज में विविधता है, वेशभूषा से, भाषा से, भोजन से, हर चीज में विविधता है, मान्यताओं में भी विविधता है, लेकिन आपके नजरिए में कौन सी वो एक चीज है, एक बात है जो भारत को चाहे कितनी भी विविधता हो एक करती है?
0: ईश्वर प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति श्रद्धा या ईश्वर के प्रति अंधश्रद्धा, वो एक करती है।
1: जी,
0: अंधश्रद्धा
1: भी और अंधश्रद्धा भी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ईश्वर के प्रति प्रेम तो है ही, लेकिन श्रद्धा भी है और कहीं कहीं पर अंधश्रद्धा भी है,
0: वो एक करती है ऐसे।
1: जी, और अगर हमारे सभी श्रोता साथियों को, जिसमें गृहिणी भी हैं, युवाओं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवाएं हैं और हर प्रकार के श्रोता साथी हैं जो आज सुन रहे हैं, उनको अगर आपको कोई एक संदेश देना हो तो वो कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
0: एक ही, मान्यता बुरी नहीं है, ईश्वर की मान्यता बुरी नहीं है, लेकिन वहाँ हमारी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, कुछ करना चाहिए। मान्य है लेकिन आप करोगे क्या? ईश्वर में मानता हूँ लेकिन आपने आगे कुछ किया? व्हाट्स द नेक्स्ट?
1: अनुभव भी तो करना जरूरी है जी।
0: अनुभव किया, वो मान्यता से एक स्टेप आगे है, लेकिन एक बार अनुभूति हुई तो ये क्या इनफ है? कई लोग बोलते हैं मैं कैलाश गया या हरिद्वार गया या द्वारका गया, ये अनुभव हुआ मुझे, इज इट इनफ? तो वैसे कहते हैं ना कि आप एक दोस्त के वहां चले गए आइलैंड में, बड़ा अच्छा लगा उनके हॉस्पिटलिटी, 3 मंथ्स आपने वहां रहे, रिच हॉस्पिटलिटी, सब कुछ मिल जाता है, घर पहुंचे फैमिली को बताया मेरे दोस्त ने इतना देखभाल किया, गुड हॉस्पिटलिटी, तो इन द हार्ट ऑफ हार्ट बाद में आप सोचोगे क्या? हॉस्पिटलिटी तो अच्छी थी, लेकिन के आई विश आई वॉज ऑल्सो एज रिच एज माई फ्रेंड। सो द एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटलिटी इज गुड, बट उससे बेहतर है कि मैं उनके जैसा बन जाता, राइट? Experience of love, experience of peace is good, experience of divine is good, but I wish I can also become divine myself like the Lord.
1: मतलब शांति का अनुभव करना अच्छा है, लेकिन अगर मैं खुद शांत स्वरूप बन जाऊं या शांतपूर्ण हो जाऊं तो मेरे साथ भी जो लोग होंगे उन्हें भी शांति का अनुभव होगा। इट बिकम्स लाइक लाइट में आना तो अच्छा है लेकिन खुद भी लाइट बन सकते हैं। ये जो एक संदेश दाजी ने आज हम सबके सामने रखा है कि अनुभव और अनुभव से आगे स्वरूप, वो बनने की आवश्यकता है। लेकिन दाजी, यहाँ पर खेल खत्म नहीं होता है, हम आपके साथ खेलना चाहेंगे एक रैपिड फायर राउंड, जो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे और जैसे हम सब करते हैं।
0: लेकिन आई एम नॉट डन विद दैट।
1: ओके, वेरी गुड।
0: आई एम नॉट डन बिकॉज डिवाइन बन गए या आनंदमयी हो गए, सच्चिदानंद की हालत पहुंच गए, वो किया एंड है? नहीं है, वहां से असल शुरुआत होती है।

0: असल रेनन्सिएशन, असल संन्यास तो वही है, उसको भी छोड़ दो एंड मूव टुवर्ड्स अल्टीमेट इन्फिनिटी वेयर देयर इज नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग. इट इज नॉट दैट देयर इज नथिंग, बट दैट फीलिंग दैट ट्रांसेंड्स एवरीथिंग, द एक्सपीरियंस ऑफ दैट इन वेदास दे कॉल इट नेति नेति नेति, मीन्स not this, not this, not this. You know, Vedas in Upanishad, वो लोग बताते हैं, सब सकारात्मक चीज बताते हैं, ये है ये है, ये है पूरा वेद में. लेकिन अंत में जो अंत की हालत है उसको उन्होंने नेति नेति नेति कर दिया. क्यों? क्योंकि वो असल हालत जो है उसको इस दुनिया की कोई भी चीज के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते. It is not nothing. But there is nothing in this world with which you can compare.
1: मतलब उसकी तुलना या उसके परिपेक्ष में कोई उदाहरण भी नहीं दिया जा सकता, इस वजह से शायद उन्होंने नीति नीति कहा.
0: जी जी जी. So now we can go for rapid fire.
1: Yeah, very nice. तो सवाल साधारण से सिंपल से होंगे और एक शब्द में या एक फ्रेज में या एक वाक्य में उसका जवाब देना होगा. आप उत्तर देने के बाद उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं. तो पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: लव.
1: बहुत सुंदर. प्रेम ही सेवा है. प्रेम क्या है?
0: ईश्वरीयता.
1: वाओ. शांति क्या है?
0: सहजता.
1: बहुत सुंदर. परिश्रम क्या है?
0: इसका जवाब मैं दूंगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं इसका जवाब. सहज जब जीवन होता है तो उनको परिश्रम जैसी कोई चीज लगती ही नहीं है. परिश्रम उसको लगता है जिसको श्रम करने की इच्छा नहीं है. समझ गए आप मेरी जो कहना चाहता हूँ? परिश्रम उसको कहते हैं जो काम नहीं करना चाहता है. सो इन शॉर्ट वन वर्ड, अनविलिंग हार्ट दैट doesn't would like to that would not prefer to work.
1: इसका मतलब श्रम तभी है जब आप अनमने मन से उस काम को कर रहे हैं, और अगर आपने दिल से उस काम को किया तो फिर वो परिश्रम है ही नहीं, श्रम है ही नहीं.
0: बेकार का शब्द है.
1: बहुत सुंदर. कर्म क्या है?
0: ब्रह्म विद्या के पीछे जो कुछ भी करे वो कर्म.
1: भारत क्या है?
0: एकात्मा.
1: एकात्मता. बहुत सुंदर. और हार्टफुलनेस क्या है?
0: एवरीथिंग दैट यू डू विथ योर हार्ट.
1: एंड दाजी कौन है?
0: आपका दोस्त.
1: बहुत सुंदर. दाजी, आपने आखिरी जवाब से मैं समझता हूँ पवेलियन पार्क पहुंचा दिया गेंद को, जो हर एक के दिल तक जाएगा और हर एक के दिल को हार्टफुलनेस, जैसे आपने कहा कि उसके हृदय को भरने जैसी क्षमता रखने वाला आपका ये उत्तर, कि आप हर एक के दोस्त हैं. और इसी दोस्ती की वजह से ही मैं समझता हूँ जीवन भरपूर महसूस होता है. वो व्यक्ति बहुत ही धनवान हो सकता है, बहुत ही ऐश्वर्यवान हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास दोस्त नहीं है तो वो कुछ भी नहीं. और जैसे आपने हमें और हम सभी श्रोताओं को अपना दोस्त बनाया, तो आज हम भी खुद को बहुत ऐश्वर्यवान और धनवान समझ रहे हैं.
0: तो मैं आपको एक ही मैं प्रश्न पूछता हूँ, रैपिड फायर, ओनली वन.
1: जी, मुझे और मेरे साथ सभी श्रोता साथियों को.
0: हाँ जी, दोस्त क्या है?
1: तो साथियों, आप सबके लिए भी सवाल रखा है दाजी ने, दोस्त क्या है. आप अपने जवाब रेडियो पर भेज सकते हैं, और आप अपने जवाब अपने आसपास के कोई भी आपके साथ हो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं. वह मुझे जो लगता है दोस्त क्या है, मैं वो दाजी के साथ शेयर करना चाहूँ जो मेरे को पर्सनल लगता है. दाजी, दोस्त वो है जिसका दिल दुआओं से भरा हुआ है हर एक के लिए, और किसी के लिए भी अगर आपके दिल में दुआएं हैं तो आप दोस्त हैं.
0: मैं कहूँगा दोस्त एक शब्द है, उसको डिवाइड कर लीजिए. दोष अस्त. जो दोषों को अस्त करता है, अपने मित्र के दोस्तों को अस्त करने में सहायक होता है, वो दोस्त है.
1: बहुत सुंदर. जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे दोष को अस्त करने वाला ही दोस्त है.
0: थैंक यू.

0: always have improvised on my rough suggestions. You have
1: not at all. ये आपका बढ़पन है जो आप इतने ऊंचाई से इसको देख रहे हैं, बट ये मुझे लगता है जो आपने बहुत सुंदर एक अगेन फॉर्मूला हम सबको दिया कि अगर मैं मेरे साथ बैठे व्यक्ति के किसी भी दोष को कम करने में मदद कर रहा हूँ तो मैं उसका दोस्त हूँ, और ये दोस्ती की परिभाषा जो है ताउम्र हम सब के साथ रहने वाली है। लेकिन दादी, जैसे आज आपने हमें अपना समय दिया और हमारे साथ एक बहुत अच्छा कीमती वक्त अपना गुजारा, हम चाहेंगे कभी आप हमारे साथ दोबारा ऐसे ही जुड़े और हमारे श्रोता साथियों के सवालों का कभी लाइव भी जवाब दे। तो अगर ऐसा कभी भविष्य में हो तो आपके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें जरूर समय दें।
0: थैंक यू, प्रणाम।
1: थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं तो दोस्तों कहूंगा क्योंकि आज दोस्ती की एक नई परिभाषा समझ में आई और दोस्त शब्द का एक नया मतलब समझ में आया। दोस्त वह जो अपने साथ रह रहे व्यक्ति के किसी भी दोष को अस्त करने में या खत्म करने में बहुत बहुत अहम भूमिका निभाता है। खैर, मैं और आप एक दूसरे के दोषों को खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि दोष को खत्म हमें खुद ही करना होता है, लेकिन हम मदद जरूर किसी न किसी की कर सकते हैं, और ये मदद करने में कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और इस मदद करने में ही दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। और दिल को सुखी रखना ये कैसे किया जाता है, आज दाजी ने हम सबको बताया। दोस्तों, आज मैं और आप मिल रहे थे यशस्वी भारत कार्यक्रम में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कमलेश पटेल जी को, जिन्हें हम प्यार से दाजी कहते हैं। दाजी हार्टफुलनेस फाउंडेशन के फाउंडर रह चुके हैं और उनके मार्गदर्शन में कई लोग आज भी अपने जीवन में संपूर्णता का, सुख का अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी किया होगा उनकी बातों को सुनते हुए। यशस्वी भारत कार्यक्रम आप सुनते रहिएगा क्योंकि अगले एपिसोड में हम एक और नई हस्ती को लेकर के आएंगे जिनके जीवन के अनुभव हमें ऐश्वर्यवान बनाएंगे। लेकिन तब तक दो चीजें जरूर कीजिएगा। पहला, दोस्त का फर्ज जरूर निभाइएगा, दिल को खुश रखिएगा, दिल की सुनते रहिएगा, और हाँ, रेडियो मधुबन सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बकवास है सब बकवास। सब बकवास है सब बकवास। बालू मेहरा जिसकी चलती है हुकूमत उसकी है दुनिया का दस्तूर यही सब गलत यहाँ ताकत ही सही सब बकवास। किसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए हम उसे सख्त सख्त सजा दें।

0: about something, the mind just goes on and on.
1: आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा, जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे.
0: आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा. एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी.
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो
1: विद ब्रह्मा कुमारी। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि खुद को स्वर्ग बनाना है, अपने अंदर स्वर्ग बनाना है। वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। किस किस से हम चिढ़ते रहेंगे, किस किस के, और फाइनली एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा था कि लोगों के बारे में सोच सोच के उनके बारे में उनके मिस्टेक्स या उनकी नेचर और जो उनसे डिस्टर्ब होते होते होते होते होते उनको जवाब देने में, उस तरह से रिएक्ट करने में, मैं भी उन्हीं की तरह बनता जा रहा हूं।
2: How does change reach the whole world? होता ही ऐसे है। एक व्यक्ति कुछ करेगा, उसको देख एक और करेगा, फिर एक और करेगा, एंड वेरी सून पूरा समाज ऐसा करेगा। अब इसका ऑपोजिट करते हैं, हम फिर से वापस अपनी ओरिजिनलिटी पे जाते हैं, हमें देख एक और जाएगा और एक और जाएगा और एक और जाएगा।
1: पॉसिबल है ये?
2: तो उस साइड पॉसिबल था तो ये साइड क्यों पॉसिबल नहीं है?
1: अच्छे की तरफ जल्दी नहीं आते लोग,
2: जाते हैं।
1: एक बात बताइए,
2: क्योंकि
1: कोई मेरे से जब बात नहीं करे अच्छी तरह से तो मैं दूसरे दिन उससे अच्छी तरह बात नहीं करता हूँ। बड़ा इजी है। कोई बहुत अच्छा हो तो मैं वैसा अच्छापन लेके उतना मैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता हूँ।
2: थोड़ा सा अच्छा हो जाते हैं ना, हो गया कमाल,
1: हो गई
2: वंडरफुल। यही तो करना है। आपने कहा अगर कोई मेरे से बहुत अच्छे से करे तो मैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता हूँ, हो गया, वही तो करना है।
1: एक पॉइंट ये अच्छा लगा और दूसरा ये लगा, जिसे मुझे अभी चलते चलते बात करते करते याद आया कि मैंने किसी को ऐसे करा तो उसने इतना सा कर दिया तो वो तक मुझे हर्ट होता था। मैंने बोला अच्छा नेक्स्ट हम इतना कर रहे हैं और ये ऐसे करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो मिलते हैं देखते हैं, मैं वेट करता रहता कब वो करेंगे और मैं ऐसे करूं। तो इमेजिन करो कितना अपने आपका टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और
2: एनर्जी वेस्ट, अपनी पावर वेस्ट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी ओरिजिनलिटी से हम खुद ही खुद को दूर करते गए।
1: क्योंकि मेरा स्ट्रांग बिलीव था ना, एक्सेप्ट

0: has already begun for you. You know that.
1: नहीं मेरा तो है लेकिन मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ मेरी पुरानी बातों का और थोड़ा सा उसका अभी उसका मतलब उसकी दो मटकी है अभी ऐसा नहीं कि पूरा हाथी हाथी दिखा
0: नहीं, एक मिनट पुरानी बातों की अभी सिर्फ दो में अटके हैं
1: हाँ जी
0: तो बाकी कहाँ गया
1: बाकी साफ होता गया
0: तो जब इतना सारा साफ होता गया तो दुम को जाने में कितना टाइम लगेगा
1: वो डिस्टर्ब करती है मुझे
0: इम्पोर्टेंट इज मैंने इतना सारा साफ किया तो ये भी तो साफ हो जाएगा
1: नहीं मुझे ये डर है कि वो दुम के साथ वापस न आ जाए ना पीछे
0: हम अटेंशन रखते हैं ना हर रोज कॉन्शियस इसीलिए डेली स्टडी डेली मेडिटेशन एक टेबल है घर पे उसको रोज साफ करना है एक दिन हम घर में एंटर किए हमने देखा वो टेबल तो बहुत सालों से साफ ही नहीं हुई है तो उसके ऊपर धूल धूल धूल इतनी लेयर्स बनी हुई थी ठीक है अब हम उस घर में रहने लगे तो ऑब्वियसली हम उस टेबल को रोज साफ करेंगे तो अब क्या होता है हम पहले दिन ही आके हमने बहुत सारी धूल की लेयर तो ऐसे ही उड़ा दी तो फर्स्ट वाइप में बहुत सारी धूल तो फर्स्ट वाइप में मिट जाती है फिर उसके नीचे रह जाते हैं छोटे छोटे छोटे छोटे मार्क्स जो ऐसे फर्स्ट वाइप में नहीं मिटते जिनके ऊपर ना थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ता है अच्छे से लेकिन साथ साथ ये इम्पोर्टेंट होता है कि रोज एक बार कपड़ा जरूर मारना है जिस टेबल पे रोज कपड़ा मारेंगे अब तो वो साफ ही रहेगी ना देयर इज नो चांस कि वो इतनी सारी लेयर्स ऑफ धूल वापस आ जाएगी उसके ऊपर वो तो अब नहीं हो सकता
1: बहुत मिनिमम आएगी और वो साफ करते
0: तो
1: रहेंगे
0: तो
1: निकल
0: जाएगी और धीरे धीरे तो हमें अभ्यास हो जाएगा धूल आई साफ यू नो कुछ लोग देखो कितने क्लीन होते हैं हर थोड़ी देर के बाद आके साफ करते हैं ये नहीं करते कि दिन में एक ही बार साफ करेंगे
1: रेस्टोरेंट्स में होता है होटल्स में
0: हर थोड़ी देर बाद साफ
1: हाँ एक एक एक आदमी खा के उठा साफ दूसरा आदमी खा के उठा साफ
0: बस सिंपल है एक को मिले उसके बाद साफ किसी ने कुछ कहा उसके बाद साफ
1: ये इतना अच्छा एज एन एक्टर आई कैन इमेजिन खाने की टेबल पे वो डोसा इडली सांभर खाया लड़का आया साफ दूसरा फिर आया कस्टमर आया साफ ऐसी हर एक
0: मैं आई विश नहीं किया साफ करो फिर मैं आई ठीक से बात नहीं की उसके बाद साफ करो
1: ये मुझे
0: फिर उसके बाद कोई और आया उसने तो गलत ही बोल दिया साफ करो साफ करते जाओ करते
1: अच्छा
0: जाओ।
1: देखो ये जो जो रेस्टोरेंट में बॉयज सर्व करते हैं वेटर्स होते हैं लड़के होते हैं वो साफ करके चल रहे डोंट इवन केयर वो खाया कौन आया था कब गया था अपना पैसा देके निकल भी गया
0: उनका रोल है
1: उसका रोल है सिर्फ साफ रखना
0: मेरा रोल है सिर्फ अपने आप को साफ रखना कौन आया था क्यों उसने वो खाया था और क्यों उसने खाते खाते गिराया भी था ठीक से नहीं कर सकता था वो
1: आधा छोड़ के भी गया जूठा छोड़ा
0: सोचो
1: पैसा वेस्ट किया इतना सब कहाँ सोचते
0: सब क्यों
1: उठाया प्लेट फेंका निकला
0: नेक्स्ट रोल अपना रोल हम तो यही कर रहे हैं आज वो आया क्यों आके फिर ऐसे खाया क्यों फिर ऐसे बोला क्यों
1: बट ये लड़का अगर डीप थिंकिंग करो जो साफ करता है टेबल को ही मस्ट बी सेइंग ना कम वॉट में कोई चैलेंज हो आधा छोड़े जूठा छोड़े ज्यादा मंगाए कांच तोड़े आई डोंट केयर माई जॉब इज जस्ट टू क्लीन कोई भी आ जाए कोई परिस्थिति आ जाए कैसा भी आ जाए
0: एंड वो टाइम वेस्ट ही नहीं कर सकता उन लोगों के बारे में सोचने में
1: क्योंकि उसको फिर से साफ रखना है
0: हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अब दूसरे लोगों के बारे में सोचने
1: so
0: में
1: beautiful.
0: हम एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते दूसरे लोगों के बारे में सोचने में आप देखो आप इतने दिन से कह रहे थे फिर लेकिन उसने ऐसा बोला क्यों लेकिन उसने ऐसा किया क्यों लेकिन उसने आके विश किया क्यों नहीं वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी
1: उसे टेबल में सांभर इडली दाल गिराई क्यों
0: हाँ इट्स पेटी एज दैट एक्चुअली
1: वो आता है अपनी बाल्टी ले रहा क्लीन किया निकल गया और जाके कपड़ा धोया दोबारा रेडी फॉर द नेक्स्ट
0: रेडी टू मीट द नेक्स्ट पर्सन
1: और उसके काम के घर चले जाते सोचा था आराम से एंजॉय द फ्रूट ऑफ दैट वर्क
0: अब हम भी यही करेंगे हमारा फोकस अभी आपने पिछली बार कहा लेकिन इसका मतलब क्या इसका मतलब कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा अच्छा फिर कितनी बार बोलेगा उन्होंने ऐसा बोला क्यों उन्होंने ऐसा किया क्यों नाउ ऑल दैट लिस्ट विल हैव टू गो एंड देन ओनली हैव टू बी वन लाइन मुझे क्या करना है इस पर आना ही होगा वो सारी बातें वेस्ट ऑफ जो आपने कहा ना जैसे वेस्ट ऑफ
1: टाइम एनर्जी
0: एंड वो कितनी सारा दिन है और हरेक के साथ है तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही होगी
1: खाली एनर्जी वेस्ट हो रही होती है उसके साथ हर्ट होता है पेन होता है
0: सोल पावर वेस्ट हो रही है
1: नो नॉट ओनली दैट उस हर्ट पेन में

0: दूसरों को भी उस तरह से बात भी तो कर देता हूँ,
1: क्योंकि सोल पावर वेस्ट हुई ना।
0: हाँ, तो आगे कार्मिक अकाउंट भी खराब होता है ना।
1: आत्मा की शक्ति अगर चार लोगों के बारे में सोचने से डिप्लीट हुई तो बाकी चार लोगों के साथ भी वो आत्मा प्यार से कैसे बात करेगी। सो सबसे पहले अगेन फाउंडेशन मंत्र क्या होगा, सिचुएशंस एंड पीपल, लोग और परिस्थितियाँ मेरे डेफिनेशन ऑफ सही के अनुसार नहीं होंगे।
0: बेस्ट सिस्टर, ये तो बहुत आपका ऊंचा वाला डेफिनेशन है।
1: हाँ।
0: वो सिंपल लाइन में एक इमेजिनेशन करता हूँ, एक लड़का छोटे से शॉर्ट बनियान में यहाँ कपड़ा लटकाता आया टेबल साहब के, चला इज नॉट इंटरेस्टेड कौन खाया क्या नहीं खाया क्या गिराया क्या नहीं। अपन तो साफ ही करते रहना है बेस्ट।
1: अब साफ भी करते क्यों रहना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार गंदा हो रहा है। जब अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी गंदा होना कम हो जाएगा। जब ये अभी क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस है कि लोग ऐसा तो करना चाहिए ऐसा, जब धीरे धीरे हमारी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट ही खत्म होने लगेगी क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी नहीं वो मेरे अनुसार चल सकते।
0: अगर मेरा ईगो हर्ट हो रहा है कि फलाने ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, और मैं दुखी हो गया, तो फिर मेरा ईगो यहाँ हर्ट होना चाहिए कि मैं हार गया।
1: हाँ बिल्कुल,
0: सक्सेसफुल
1: बिल्कुल
0: इन प्लेइंग गेम्स विद मी, वो माइंड गेम जो भी। अगर सपोजिंग
1: उसको अभी तक हार नहीं सोचा था ना कि हम हार गए, हमने ये सोचा ही नहीं था।
0: अभी सोच रहा हूँ।
1: हाँ,
0: अभी एनालिसिस कर रहा हूँ।
1: एंड अब सेल्फ रिस्पेक्ट ये कहनी चाहिए कि दूसरे मुझ पर हावी नहीं हो सकते, एंड देर नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली, वो उनका संस्कार है, वो हम आगे देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आज से हम दिन में 1000 बार अपने आप को ये याद दिलाएंगे, लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार नहीं हो सकते।
0: ये आज का मंत्र है?
1: ये आज का नहीं मंत्र है,
0: जीवन भर
1: का। जीवन का मंत्र है,
0: लोग और हमारे अनुसार
1: नहीं हो सकते।
0: लोग एंड सिचुएशंस,
1: सिचुएशंस ऑल्सो आर नॉट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द वे वी वांट देम टू बी, इवन द वेदर इज नॉट गोइंग टू बी द वे आई वांट इट टू बी।
0: छोटी मैं चाहता हूँ कि साइलेंस रहे, शादी हो रही है।
1: हाँ,
0: और ये बैंड बजा बजा है, मुझे 10 बार रुकना पड़ा।
1: लेकिन आप शूटिंग कर रहे हैं ना?
0: हाँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ,
1: टॉलरेट।
0: लेकिन मैं यहाँ टॉलरेट कर रहा हूँ विदाउट गेटिंग एंग्री और डिस्टर्ब।
1: दैट इज ऑल एंड उसके पीछे भी
0: बिकॉज आई न्यू यस्टरडे कि यहाँ होने वाला है,
1: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू नो कि आप उसको रोक नहीं सकते। अगर
0: हाँ, वैसे देखो मैं उसको भी तो नहीं रोक सकता जो मुझे विश नहीं करते, हाउ कैन आई स्टॉप।
1: सेम थिंग, जब हमें पता होता है ना कि हम सामने वाले को रोक नहीं सकते। अभी आपको पता है कि इस बैंड बाजे को आप रोक नहीं सकते, इस ऑडियो डिस्टरबेंस को आप रोक नहीं सकते, वो चल रही है और आप उसी के बीच रहकर अपना काम कर रहे हैं।
0: या तो मैं एक फिल्टर लगाने की कोशिश करूं, और फिल्टर नहीं हुआ तो यहाँ से हटके मैं कहीं और जाके करके आऊं,
1: या मैं यहीं बैठकर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके कर लूं।
0: और
1: जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस सिंपल थिंग ओनली। अब इसमें हम सारी चीज किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने ऊपर। आपने कहा या तो फिल्टर लगा लें, या यहाँ से,
0: या आपने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा,
1: हम अपना वॉल्यूम बढ़ा लें, या हम यहाँ से शिफ्ट हो जाए, या हम पूरी कॉन्सेंट्रेशन से करें, हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन हम ये सारी एनर्जीज किस पर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर। लेकिन अगर हमारे अंदर एक थॉट अभी आ जाए कि हम इनको रोक सकते हैं, तो हम ये सारी चीजें छोड़कर हम उनको रोकने की मेहनत करते जाएंगे। जब तक हमें लगता है कि हम उनको रोक सकते हैं, हम उसी के ऊपर वर्क करते हैं।
0: लेकिन ये एपिसोड चल रहा है ना जैसे,
1: ये चल रहा है,
0: उसके बावजूद चल रहा है, जब जब गैप मिल रहा है हम कर रहे हैं,
1: यही जीवन है, उसी के बावजूद हमें चलना
0: कर करके कर।
1: दिस इज ओनली पावर टू टॉलरेट एंड एडजस्ट। लेकिन फोकस सारा एडजस्ट करके चलने पर क्यों है, क्योंकि फर्म बिलीफ है उनको हम नहीं रोक सकते। ये फर्म बिलीफ कितना इम्पोर्टेंट है। आर यू गेटिंग हर्ट कि वहाँ वो आवाज क्यों हो रही है?
0: नो।
1: आर यू गेटिंग डिस्टर्ब्ड इमोशनली कि वो लोग क्यों आवाज कर रहे हैं?
0: ये अचानक नहीं हुआ ना, आई एक्सपेक्टेड इट, आई न्यू दैट कल मालूम।
1: वेरी गुड, यू एक्सपेक्टेड कि ये डिस्टर्बेंस होगा।
0: करेक्ट।
1: नाउ दैट मीन्स यू वर प्रिपेयर्ड।
0: प्रिपेयर्ड, कल मालूम था मुझे आज शादी है।
1: बस आज प्रिपेयर हो जाइए कि आज सारा दिन में लोग आपके अनुसार नहीं चलने वाले। सिंपल।
0: ये कैसा प्रिपरेशन है? ये नेगेटिव प्रिपरेशन।
1: ये नेगेटिव
0: प्रिपरेशन। जाके बोलो आज के बाद मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, आज के बाद मेरी कोई
1: नहीं करेगा। ये नहीं कहा। ये कहा कि लोग हमारे सही के अनुसार नहीं चलने वाले हैं। ये थोड़ी कहा कि लोग हमारे से प्यार नहीं करेंगे।

0: एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आपने कहा कल से हम प्रिपेयर थे, ये आवाज आने वाली है, लेकिन हमें ये भी पता था कि इस आवाज के बीच रहकर ही हमें काम करना है। तीसरा, हम अभी उस आवाज के बीच बैठे हुए हैं, आवाज भी चल रही है, लेकिन हमारा फुल फोकस किस पर है, हमें इसके अंदर संभाल के अपनी शूटिंग करनी है। दिस इज जर्नी ऑफ लाइफ। आज हम प्रिपेयर हो जाए कि हमारे आसपास लोग अपनी अपनी आवाजों के अनुसार चलेंगे, अपने अपने संस्कार के अनुसार चलेंगे। आई डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी द वे आई वॉन्ट देम टू बी।
1: पॉसिबल कैसे, इनकी यहाँ शादी हो रही है एंड आई वॉन्ट देम टू बी क्वाइट।
0: वेरी गुड, इनके लोगों के अलग अलग संस्कार हैं एंड आई वॉन्ट देम टू बी लाइक माई संस्कार। शादी वाले तो फिर भी क्वाइट हो सकते हैं, अगर हम उनको बोलेंगे ना तो वो चुप भी हो जाएंगे, लेकिन आत्माएं अपनी संस्कार कैसे बदल देंगे।
1: आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि संस्कार बदलना आसान है।
0: हम जब अपना संस्कार बदलना चाहें तो वो आसान है,
1: दूसरे का इम्पोसिबल।
0: दूसरे का संस्कार नहीं ना बदल सकते। कितना देखो प्रिपेयर्ड अगर हो जाए, दिस इज ओनली ज्ञान ना, ये ज्ञान है प्रिपरेशन। आपको कल नॉलेज मिल रही थी कि ये होने वाला है, माइंड को प्रिपेयर कर लिया था, आज उसी के बीच बैठकर इतने प्यार से काम कर रहे हैं, ये जीवन है। ज्ञान मिल गया, लोगों के संस्कार अलग अलग हैं, लोग लंबी यात्रा पर वो संस्कार लेकर आए हैं, हमारे कहने से वो उसको बदल नहीं सकते। ज्ञान मिल गया, ये कलयुग है, हर आत्मा अंदर किसी न किसी कारण से दुखी, परेशान, अशांत है, चाहे वो उसका इंफीरियोरिटी है, किसी का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी का ईगो है, किसी की जेलसी है, लॉन्ग लिस्ट, अंदर दुखी है। नॉलेज मिल गई,
1: बात आपकी समझ में आ रही है,
0: नॉलेज मिल गई, अब प्रिपेयर हो जाए, अब प्रिपेयर हो जाए कि आज
1: अगला इंसान। आपकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा ना अभी एम्पैथी भी हो रही है कि अगला इंसान बेचारा क्या क्या चीजों से गुजरा होगा, किन किन चीजों से, और कितनी कम नॉलेज जो भी हो या क्या नहीं मिला होगा जिंदगी में, क्योंकि ऐसा बन गया वो बेचारा।
0: कंपैशन, कंपैशन आ गई,
1: एक्चुअली आई है, सीरियसली आई है। अभी जो बात कर रहा हूँ, जो आपसे बात करते करते उस व्यक्ति के बारे में भी आई कि उसके साथ क्या नहीं हुआ होगा जो, और मतलब कितनी चाइल्ड लाइक चाइल्डिश बात है कि चलो लेट्स प्ले द गेम विद इट, ऐसा खुला दिखता है कि आप गेम कर रहे हो, लेकिन कितना उसके अंदर दर्द होगा, कितनी मैच्योरिटी होगी, कितनी लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज होगी।
0: अब आप हर्ट होंगे उससे सर?
1: अब नहीं होगा, नहीं हो भी नहीं रहा हूँ, अब तो मुझे एम्पैथी आ गई।
0: कितना इजी है, कितना टाइम लगा?
1: काफी टाइम लगा।
0: कहाँ टाइम लगा?
1: आधे घंटे से मैं आपका दिमाग,
0: आधा घंटा तो जीवन बीत जाएगा समझने में ये सारी बातें।
1: नहीं, बट आई एम फीलिंग लाइटर, डू यू नो दैट, बाय थिंकिंग, टॉकिंग टू यू।
0: सी अगेन, लेट्स गो बैक टू द सेम इंसिडेंट। अगर हमें नॉलेज नहीं होती कि यहाँ एक शादी होने वाली है, हम प्रिपेयर नहीं होते कि यहाँ आवाज होने वाली है, तो हम क्या करते, हम आते अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पूरा सेटअप करते और फिर सडनली ये आवाजें आती, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता डिस्टर्बेंस, इरिटेशन। हमने इतनी मेहनत की, हमने सब सेट किया, अब ये आवाज कर रहे हैं, और हमारा फर्स्ट रिएक्शन उसके बाद होता किसी तरह हम कोशिश करके उनको रोकते हैं, हमारे कहने से वो रुकते ना। हम जितना उनको रोकने की कोशिश करते ना, वो शायद अपने बैंड बाजे का वॉल्यूम और भी ज्यादा बढ़ा देते, एंड वेरी सून वो और हम एक कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे होते हैं। This is conflict.
1: But here is expected. वहाँ थोड़ी मानता कि घर में ऐसी औलाद पैदा होगी किसी को।
0: आपको ये नहीं मालूम था कि आपके घर में सारे जो संस्कार आएंगे वो अलग अलग होंगे?
1: नहीं मालूम था
0: क्या?
1: आज अभी मालूम पड़ा कि दुनिया में लोगों के संस्कार ऐसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं तो सोचा था कि बेटा बेटा होगा, बेटी बेटी होगी, दामाद दामाद होगा, बहू बहू होगी, रिश्तेदार ऐसे होंगे, ऐसे होना चाहिए। मैंने तो पिक्चर बना के बैठा हुआ था
0: कि वो कैसे होंगे,
1: वो जो पिक्चरों में दिखाते हैं
0: नी
1: राम सीता लक्ष्मण आज्ञाकारी, ये
0: सत्युग
1: सत्युग, मैं तो खुद को और बना के बैठा था।
0: लैक ऑफ नॉलेज ना,
1: लैक ऑफ माई नॉलेज,
0: लैक ऑफ आवर नॉलेज, दिस इज लैक ऑफ आवर नॉलेज। तो अब हम उसको स्टेप वाइज लेते हैं।
1: शादी वाला एक्सपेक्ट

0: उसको करना आसान है। ये तो अनएक्सपेक्टेड बातें कर रहा था ना मैं आपसे।
1: ये भी एक्सपेक्टेड है, अभी तक हमारी एक्सपेक्टेशन की लिस्ट।
0: एक बात बताइए आप, कई मदर्स का ये प्रॉब्लम है, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे बड़े होने तो खेल रहा है, माँ माँ माँ माँ कर रहा है, शादी होने के बाद वाइफ वाइफ वाइफ कर रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं, नमस्ते नहीं, कुछ नहीं, वाइफ है नहीं, जिंदा है, भूल गया, तो वो क्या एक्सपेक्टेड होता है उस औरत को? अब मदर इज एक्सपेक्टेड कि आज शादी, मतलब इतने चाव से बहू को आशीर्वाद दे के, अपने जेवर दे के, अपना घर चार दे के, जिंदगी दे के उसको शादी कराती है, और यू मीन टू सी शी इज एक्सपेक्टिंग दिस आफ्टर दैट?
1: शी ओनली हैज टू बी प्रिपेयर्ड।
0: तो देन यू विल से कि ये तो नेगेटिव सोच रहे हो।
1: हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, हम प्रिपेयर्ड हैं कि हर आत्मा उसके संस्कार और कार्मिक अकाउंट से चलेगी।
0: Nobody is prepared, sister. नहीं तो सारी माया इतनी दुखी नहीं होती है,
1: तो फिर
0: सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा होगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, कमाएगा, बच्चे लाके गोद में रखेगा, खाना लाके देगा, मेरी बात सुनेगा, बहू मेरे पाकी पांव छुएगी, ऐसा सब प्रिपरेशन होता है उनका।
1: तो प्रिपरेशन ही अगर सही नहीं हुआ तो?
0: नहीं, प्रिपरेशन सही यहाँ पर नहीं है, नहीं है, लोग बदल गए हैं, ऐसा नहीं है।
1: लोग बदल गए हैं मतलब क्या, कि डे बाय डे लोगों की पावर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना?
0: पावर कम होने में और कॉमन थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा बड़ों का रिस्पेक्ट करना,
1: जिस चीज को हम कॉमन कहते हैं, आपके लिए ये कुर्सी उठाना ऑर्डिनरी बात है, आप एक हाथ से उठा लेते हैं तो आप कहते हैं कॉमन बात है ना ये कुर्सी उठाना, मेरी तो ताकत खत्म हो चुकी है, तो जो बात आपके लिए कॉमन है,
0: respect does not take energy, sister.
1: Takes a lot of self-respect.
0: What?
1: Respecting other people takes a lot of self-respect.
0: आपने तो बोल्ड कर दिया मुझे, ये क्यों सब गेंद डाल दिया?
1: जो आत्मा आपने कितनी बार कहा, जो आत्मा खुद से प्यार नहीं करती वो दूसरों को प्यार नहीं कर सकते, जो आत्मा अंदर खुश नहीं वो दूसरों को खुशी नहीं दे सकती, जो आत्मा शांत नहीं वो शांति दे नहीं सकती, जो आत्मा स्वमान में नहीं वो सम्मान दे नहीं सकती।
0: दिस इज रियली रियली समथिंग नाइस।
1: रिस्पेक्ट देना इजी नहीं है आज।
0: आप दोबारा बोलेंगे, सच अ वंडरफुल, आई वुड लाइक टू लिसन टू दैट अगेन।
1: टू रिस्पेक्ट अदर पीपल आई हैव टू बी इन माय हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट।
0: व्हाट अ वंडरफुल लाइन।
1: तो वो कहाँ इजी है आज, वो तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स बनी हुई है अभी।
0: फाइनली कम बैक टू द सेम,
1: जब हमें कहते हैं ना ईगो, ईगो मीनिंग लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, अहंकार है तो स्वमान की कमी है, तो आज तो हम में से मेजोरिटी में कितना अहंकार है, तो जहाँ अहंकार है वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है औरों की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? हाँ ये आप बोलो कि हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, खाना पूछो, ये कर सकते हैं हम, रिस्पेक्ट करना इतना इजी नहीं है। So our expectations we will have to change. We will have to work on it.
0: धीरे धीरे डिप्लीट जो हो रही है आत्मा की एनर्जी, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो रहा है, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है,
1: जो खत्म होती है सेल्फ एस्टीम फर्स्ट चीज है जो खत्म होती है। आज क्यों सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए हम चीजें खरीद रहे हैं, हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हम अपने कनेक्शंस को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हम अपने पोजेशंस को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, सिर्फ लोगों की रिस्पेक्ट ऐसे मांगने के लिए, क्योंकि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं है। इफ अ सोल इज इन अ सीट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको कुछ नहीं करना है लोगों से रिस्पेक्ट मांगने के लिए, क्योंकि इट्स इंजॉइंग इट्स रिस्पेक्ट।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा दिमाग हल्का हो गया, बिकॉज नाउ आज कुछ बात समझ में आई।
1: थैंक यू सो मच,
0: ओम शांति,
1: ओम शांति,
0: थैंक यू, थैंक यू।
2: ईच टाइम समवन डिड नॉट बिहेव in a nice manner with us and we responded in a similar way, we allowed ourselves to shift from our original qualities of peace, love and happiness. We then started looking for happiness, searching for peace and asking for love. Power to tolerate means to not get affected internally at the thought level when situations and people are not the way we feel.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger. तभी वो रियल दायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर

0: हिट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो. तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव. तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर. उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो. एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं. एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: और हो तुमसे ही जुल्फों की शाम।
1: वाह

की आग में पलती अरे हो रोशनी करती हूँ जलती अरे जो मिलते नहीं तारे तो अंगारों से तनखों से जाती हूँ मैं उसने की आग में पलती अरे हो रोशनी करती हूँ जलती।

गली गली लिए तेरा प्यार अड़े है कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मेरी जान अब न कहना के जाती हूँ मैं गली गली लिए तेरा प्यार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 107.8 खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: भारत की गाथा को लेकर चलते हैं अब पश्चिम बंगाल की ओर, जो कि भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है। पश्चिम बंगाल पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, और इसकी राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा बांग्ला। यहाँ नृत्य, संगीत तथा चलचित्रों की लंबी तथा सुव्यवस्थित परंपरा रही है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी, भूदेव मुखोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद जैसे मौलिक सामाजिक चिंतकों की भूमि रही है।
2: A galaxy of eminent speakers are scheduled to address us, and it gives us great pleasure to once again invite Swami Vivekananda to speak. His subject for today, Why We Disagree.
3: I will tell you a little story. You have heard the eloquent speaker who has just finished. Let us cease from abusing each other. I was very sorry that there should be always so much variance. But I think I should tell you a story which would illustrate the cause of this variance. A frog lived in a well. It had lived there for a long time. That would do credit to our modern bacteriologists. In this way, it went on and became a little sleek and fat. Well, one day, another frog that lived in the sea came and fell into the well. Where are you from? I am from the sea. The sea? How big is that? Is it as big as my well? And he took a leap from one side of the well to the other. My friend, said the frog of the sea, how do you compare the sea with your little well? Then the frog took another leap and asked, is your sea so big? What nonsense you speak to compare the sea with your well. Well then, said the frog of the well, nothing can be bigger than my well. There can be nothing bigger than this. This fellow is a liar, so turn him out. That has been the difficulty all the while. I am a Hindu. I am sitting in my own little well and thinking that the whole world is my little well. The Christian sits in his little well and thinks the whole world is his well. The Mohammedan sits in his little well and thinks that is the whole world.
0: चलिए अब जानते हैं कुछ यहाँ की भूगोल के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान, उत्तर में सिक्किम, पश्चिम में बिहार, झारखंड, दक्षिण पश्चिम में उड़ीसा तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम बंगाल का इतिहास भी अनोखा है। भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास में बंगाल का विशिष्ट स्थान है। सिकंदर के आक्रमण के समय बंगाल में गंगा रीदई नामक साम्राज्य था। गुप्त तथा मौर्य सम्राटों का बंगाल पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में शशांक बंगाल प्रदेश के नरेश बने। ऐसा कहा जाता है कि उसने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर पूर्वी भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद गोपाल ने सत्ता संभाली और पाल राजवंश की स्थापना हुई। पाल शासकों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और लगभग 4 शताब्दियों तक राज्य किया। पाल शासकों के बाद बंगाल पर सेन राजवंश का अधिकार हुआ, जिन्हें बाद में दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने परास्त किया। 16वीं

शताब्दी में मुगल काल से पहले ही बंगाल पर अनेक मुस्लिम राजाओं और सुल्तानों ने शासन कर लिया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बंगाल का पहला मुस्लिम विजेता था। मुगलों के पश्चात आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आगमन से आरंभ होता है। सन 1757 में पलासी के युद्ध ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी, जब अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल और भारत में अपने पांव जमाए। सन 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला और तेजी से भड़क उठी, जिसका पटाक्षेप 1947 में देश की आजादी और विभाजन के साथ ही हुआ। 1947 के बाद देशी रियासतों के विलय का काम प्रारंभ हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। 1956 की सिफारिशों के अनुसार पड़ोसी राज्यों के कुछ बांग्ला भाषी क्षेत्रों का पश्चिम बंगाल में विलय कर दिया गया।

नवजागरण काल के दौरान भारत में कई प्रभावशाली व्यक्तित्व ने समाज उत्थान के लिए कार्य शुरू किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, श्री अरविंद आदि कुछ प्रमुख नाम हैं। विधवा विवाह, बाल विवाह की समाप्ति और स्त्री शिक्षा को लेकर जागरूक रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वे स्वयं दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रशासक, सुधारक एवं मानववादी थे। फिर उल्लेख में आते हैं राजा राम मोहन रॉय। यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित और तात्कालिक भारतीय समाज की कुरीतियों, सामाजिक व्यवस्था से निराश, जमींदारी प्रथा, छुआछूत की प्रथा, सती प्रथा, महिलाओं की अशिक्षा आदि को लेकर ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर दूर किए। रूढ़िवादिता को दूर करने के प्रयास और सामाजिक जागरूकता को लेकर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना

इस गीत के बोल भी आजादी की लंबी लड़ाई में सदा साथ दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की बात की जाए तो गरम दल नेशनल कांग्रेस से संबंध रखने वालों की सूची में अग्रणी नाम सुभाष चंद्र बोस का आता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना करना, जय हिंद का नारा जन जन की आवाज बना देना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह युवा वर्ग में जोश की तरह छा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी सी संगठन को तैयार किया। गरम दल के एक और क्रांतिकारी जो मात्र 19 साल की उम्र में ही आजादी की लड़ाई में शहीद हुए वो कोई और नहीं खुदीराम बोस थे। 19वीं शताब्दी के एक और ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व प्रसिद्ध कर दिया, हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक रूप में भारत में और औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा के लिए विशेष योगदान दिया स्वामी विवेकानंद। विश्व धर्म 1893 संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने शिकागो गए और भाषण में सिर्फ एक आवाज गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, मेरे प्रिय अमेरिका के भाइयों और बहनों। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रगान जनगणमन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चैटर्जी भी भारत की इसी भूमि की देन हैं। छोटे आकार के बावजूद पश्चिम बंगाल से भारत के सकल घरेलू उत्पादन का लगभग छठा हिस्सा आता है।

पश्चिम बंगाल की आर्थिक व्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के 4 में से 3 व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ पटसन, कपास, कागजों की मिलों का प्रमुख केंद्र भाटापारा है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ के नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। पूर्ण सुंदरवन 102 द्वीपों का समूह है, जिसमें से 48 बस्ती है। यह लगभग 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ है। लगभग 40 लाख लोग सुंदरवन में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग 60 से 120 वर्ष पहले आकर बसे और यह लोग पूर्णतः वनों से मिलने वाले साधनों पर आश्रित हैं। इन लोगों की जीविका खेतीबाड़ी, मत्स्य पालन, लकड़ी और शहद संग्रहण से है। यहाँ की संस्कृति भी बहुत खास है। बंगालियों ने

हमेशा से ही साहित्य, कला, संगीत और रंगमंच नाटकों को संरक्षण दिया है। बांग्ला साहित्य का आविर्भाव 12वीं सदी से पहले हुआ। हिंदू धर्म के एक सघन भावात्मक स्वरूप चैतन्य आंदोलन को मध्यकालीन संत चैतन्य, जो 1485 से 1533 के दौरान रहे और काफी प्रेरित किया, जिन्हें 19वीं सदी के आरंभ तक बांग्ला कविता के परिवर्तित विकास को आकार दिया। इसके बाद पश्चिम के साथ हुए संपर्क ने एक धूर्त बहुमुखी सृजनात्मक युग की शुरुआत की। आधुनिक युग में अन्य साहित्यकारों के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1861 से 1941 के दौरान आए और जिनका योगदान आज भी भारतीय साहित्यिक परिदृश्य पर छाया हुआ है,

এতদিন যদি বাধা পড়ে কাজে আরো প্রাথে যদি

मनोरंजन की यह पहचान करने वाले और कलाकारी को समझने वाले लोग बंगाल में बहुत मौजूद हैं। रंगमंच यहाँ लोकप्रिय है तथा नए कलाकारों के साथ साथ पेशेवर कलाकारों द्वारा मंच प्रस्तुति उच्च कोटि की होती है। यात्रा खुले रंगमंच पर होने वाला पारंपरिक कार्यक्रम है, जिसकी कथा वस्तु अब स्पष्ट रूप से पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों से समकालीन विषय वस्तु में परिवर्तित हो रही है और यह ग्रामीण एवं शहरी दोनों जगहों पर लोकप्रिय है। कथाकाता एक धार्मिक जाप और लोक गीतों पर आधारित ग्रामीण मनोरंजन का एक पारंपरिक स्वरूप है। फिल्म उद्योग सुस्थापित मनोरंजन का एक आधुनिक लोकप्रिय साधन। बांग्ला फिल्मों ने भारतीय कथा वस्तु

उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए। सत्यजीत राय, तपन सिन्हा, मृणाल सेन, अपर्णा सेन जैसे निर्देशकों के कार्य का विशिष्ट

पश्चिम बंगाल का संगीत बहुत मीठा माना जाता है। यहाँ पारंपरिक संगीत भक्ति और सांस्कृतिक गीतों के रूप में है। रविन्द्रनाथ टैगोर नजरुल गीति द्वारा लिखित एक संयोजित रविंद्र संगीत, जिसे विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पारंपरिक लोक गीतों में पिरोया गया है, बंगालियों के सांस्कृतिक जीवन पर यह सशक्त प्रभाव छोड़ता है।

यहाँ पर दृश्य कला परंपरा के अनुसार मुख्यतः मिट्टी की मूर्तियाँ, पक्की ईंटों, टेराकोटा की कृतियों और सज्जा चित्रों पर आधारित है। कोलकाता की इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, द बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट और कोलकाता विश्वविद्यालय की विज्ञान प्रयोगशालाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 19वीं सदी की सुविख्यात भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान सभा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्व भारतीय विश्वविद्यालय भारतीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के अध्ययन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। पश्चिम बंगाल में श्रद्धा और सद्भावना से कुल त्योहार मनाए जाते हैं और उनका अंदाज देखने योग्य ही होता है। दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके अतिरिक्त काली पूजा, सरस्वती पूजा, दीपावली भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी, लक्ष्मी पूजा, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी हो या ईद और क्रिसमस, सभी त्योहार बड़े खुशी से मनाए जाते हैं। बंगाल में आयोजित होने वाले मेलों में गंगा सागर मेला, केंदोली मेला, जाल पेश मेला, राश मेला तथा पोष मेला प्रमुख है।

त्योहार तो मना लिया, अब चले आपको ले चलते हैं बंगाल की गलियों में घुमाने। वैसे तो पर्यटन के हिसाब से यहाँ कई स्थान हैं, पर उनमें से प्रमुख का है हावड़ा शहर, जो कि पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पर्यटक स्थलों में हावड़ा ब्रिज पर्यटकों को आकर्षित करता है। हावड़ा ब्रिज के अतिरिक्त पर्यटक यहाँ पर हावड़ा स्टेशन, महान बरगद का पेड़, बेलूर मठ, गारचुमोक, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, विद्यासागर सेतु आदि देख सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। बंगाल का एक और शहर है जलपाईगुड़ी, जो कि खूबसूरत नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर चाय के बगानों और जंगल बहुत सुंदर। यहाँ रहने वाले निवासी बड़े मिलनसार और हसमुख हैं। वो जलपाईगुड़ी में आने वाले पर्यटकों का स्वागत बड़े आदर और उत्साह के साथ करते हैं।

0: चलिए इसके बाद बात करते हैं पुरुलिया की, जो पश्चिम बंगाल का आभूषण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अटचला और चारचला शैली में बने मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के अतिरिक्त बगमुंडी, बिरचंदीनाथ, बुद्धपुर, चौरा और गनपुर पर्यटक स्थल है। अब चलते हैं वर्धमान। यहाँ धान के खेतों के अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों जैसे कर्जन गेट, कंचन नगर, 108 शिव मंदिर, मकर और कल्याणेश्वरी मंदिर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ और महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र कोलकाता, दीघा, बोक्खाली सी रिजॉर्ट, सागर द्वीप, सुंदरवन, बंदेल, तारकेश्वर, हुगली, शांति निकेतन, दार्जिलिंग, कालिंपोंग आदि। पश्चिम बंगाल घूमने के लिए समय कम पड़ सकता है, पर खूबसूरत जगहों की यहाँ कमी नहीं, इसीलिए हम अपने सफर को यहीं रोकते हैं। 29 राज्य, एक राष्ट्र, एक कहानी।
1: हमारे साथ जुड़े रहिएगा हुनरी आवाज़ में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ये भी है वो भी है, दिल पहचाने मेरे यार है तू जाने, ये भी है वो भी है तू भी है।

0: जन अनजन यहाँ सब है जीवन, ये भी है ये भी है वो भी है। जन अनजन यहाँ सब है जीवन, ये भी है वो भी है। दिल पहचान मेरे यार है तू जन, ये भी है वो भी है।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: खाबों का सफर आरजे सनी के साथ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। तो आइए आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास गीत 1950s एंड 60s की सुनाने वाले हैं। बहुत ही पॉपुलर चुने हुए गीत आपको सुनाएंगे और आज का गीतों का कलेक्शन पूजा के पास है। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनसे कुछ बातें करेंगे और कुछ खास उनके कलेक्शन 50s एंड 60s के वो भी सुनेंगे। पूजा, कैसे हैं आप?

0: ये जो गाना है सभी गानों में से मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट गाना है। इस गाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, इतना अच्छा लगा मुझे ये गाना। जैसे कि कभी अधूरा सा कुछ कहूँ तो तुम पूरा समझ जाना, हम तो उल्टे हैं तुम्हें, तुम हमसे ना कहीं उलझ जाना। मोहब्बत का इम्तिहान आसान नहीं, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं। मुद्दतें बीत जाती हैं किसी के इंतजार में, एक भी पल दो पल का ख्याल नहीं।
1: कभी और कभी पार इस फिल्म का 1954 का ये खूबसूरत गाना आपने अभी सुना। टैक्सी ड्राइवर की कहानी है। गुरुदत्त टैक्सी ड्राइवर का रोल इस फिल्म में करता है और एक एक्सीडेंट के कारण उसे जेल हो जाती है। उसके बाद गुरुदत्त जेल से जब छूट कर घर आता है तो घर में उसके बड़े भैया उसे घर से निकाल देते हैं। फिर वो बाहर जाता है और एक गैरेज में नौकरी करता है और जिस गैरेज में नौकरी करता है उस गैरेज के मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। तो कहानी इस तरह का क्लाइमेक्स वाला बताया गया है। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया पूजा, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला गाना कौन सा है आपके पास?
0: कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया,

ओके, कभी खुद पे कभी हालात पे, क्या बात। साहिल लुधियानवी साहब का लिखा यह बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, जयदेव का संगीत, हम दोनों 1961 का ये खूबसूरत गाना जिसे देवानंद साधना और नंदा पर पिक्चराइज किया गया था। और ये फिल्म देवानंद के डबल रोल को दिखाया गया है। कई बार ये क्लाइमेक्स इसमें आता है कि देवानंद एक जो मिलिट्री में रहता है और दूसरा एक उसका दोस्त है, दोनों के चेहरे एक होने के कारण कई बार क्लाइमेक्स इसमें कॉमेडी भी दिखाया गया है। तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी सुनते हैं।

0: पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब कौन सा गीत है आपके पिटारे में?
1: सर अब जो मेरा अगला गाना है उस गाने की बोल है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा अपना मुझे बनाएगा।

0: हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि उसके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मिले जो उसे समझता हो और हर समय हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ निभाए। और वो हमेशा ये सोचती है कि जो उसकी ज़िंदगी है वो अपने दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह दे। जैसे कि थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी, और मैं भी एक लड़की हूँ तो मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश होती है कि मेरे लिए भी कोई एक ऐसा आए जो मुझे अपने दिल में जगह दे। खूबसूरत से एक पल किस्सा बन जाते हैं, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में मिटे हैं जैसे, जिसने कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाते हैं।
1: ओके, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा ये खूबसूरत गाना, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, मदन मोहन का संगीत, शराबी 1964 का गाना आपने याद कराया है, जिसमें देवानंद मधुबाला और ललिता पवार पर पिक्चराइज किया गया है। देवानंद शराबी होकर भी एक अच्छे नेक इंसान का किरदार निभाया है। शराब अपने गम को बुलाने के लिए पीता है, जब गम खत्म होता है तो शराब भी छूट जाती है। तो आइए इस पिक्चर का ये गाना अभी आपके लिए। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पूजा अब कौन सा गीत है आपके पास?
1: सर अब जो मेरा अगला गाना है उस गाने की बोल है कभी रात दिन हम दूर थे। सर इस गाने में ऐसा होता है अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जरूरी तो नहीं हमारे जो हालात हों वो सब कुछ सही ही चले और हम जैसा चाहे वैसे ही हो। हमें प्यार तो दिल से होता है और अगर हम दूर है तो दूर रहने से तो प्यार और भी बढ़ता है। लेकिन इस गाने में उनकी दूरी और दूरी के बीच में जो रात और दिन का फासला होता है उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। हर पल हर घड़ी बस उसकी ही याद आती है। जैसे कि आसमान हमसे नाराज है, तारों का गुस्सा हमसे बेहिसाब है, वो सब हमसे जलते हैं क्योंकि चांद से भी बेहतर आप हमारे पास हैं। थैंक यू।
0: अच्छा थोड़ा गा के सुनाइए आप।

चलिए, बहुत ही अच्छा प्यारा सा भाव आपने इसमें दिखाया है। आनंद बख्शी साहब का लिखा, लता और रफी साहब का गाया, कल्याण जी आनंद जी का संगीत आमने सामने इस एल्बम से ये गीत है। तो आइए, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और प्रेम चोपड़ा पर पिचराइज किया गया ये खूबसूरत गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए।

0: पूजा कैसे हैं आप?
1: मैं आज बहुत खुश हूँ वापस से आ करके यहाँ पे।
0: अच्छा, आप कौन सा गीत है आपके पास?
1: सर अब जो मेरा अगला गाना है उस गाने के बोल है, तन्हाइयों में हमारी याद आएगी।

0: इस गाने में पूरी अंधेरी काली रात है और बिजली भी नहीं होती है, और जैसे कि थोड़ा सा बोल देती हूँ, मुझे बोलना तो नहीं आता ज़्यादा अच्छे से, पर फिर भी ट्राई करती हूँ। नज़र मिले तो प्यार हो जाता है, पलक उठे तो इजहार हो जाता है, ना जाने क्या कशिश है चाहत में, जैसे कोई अनजान भी हमारी जिंदगी का हकदार हो जाता है।
1: ओके, केदार शर्मा साहब का लिखा, मुबारक बेगम का गाया, स्नेहल भटनागर का संगीत हमारी याद आएगी। जी हाँ, 1961 का ये खूबसूरत गाना है जो बहुत ही पॉपुलर रहा। तनुजा, अशोक कुमार और बहुत सारे कलाकार इसमें थे। केदार शर्मा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म, जिसमें एक बहुत ही अलग कहानी बताई गई थी, कम उम्र की लड़की से जिसका पति शादी के तुरंत बाद मर जाता है और वो विधवा बन जाती है और समाज के नियम और बंधन में बंध जाती है। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं। टॉय इस फिल्म का खूबसूरत गीत पूजा ने याद कराया है, तो आइए सुनते हैं अभी।

0: आपने सुना पूजा, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, बहुत ही खूबसूरत गाने का कलेक्शन आपने सुनाया, अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा गीत है आपके पास?
1: तो सर अब जो मेरा गाना है उस गाने की बोल है, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों के मंजिल राही। इस गाने में जब कोई किसी से सच्चे दिल से प्यार करता है तो हर पल बस यही सोचता है कि कभी तो वो मिलेगी, बस एक बार दिख तो जाए। अगर वो दिख जाए तो ऐसा लगता है आज तो उसका दिन कहीं और से ही निकला हो, और किसी चांद का उसने दर्शन कर लिया, या फिर कोई ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा ना हो और वो अचानक से दिख जाए तो ऐसा लगता है कि वो पूरा हो गया। वो हर पल ऐसे ही डूबा रहता है कि कभी तो मेरी मंजिल में कोई राही मिलेगी, कोई हम सफर जो आगे साथ निभाए।

याद आ गया मुझे, ये एक आरती जो 1962 में रिलीज हुई थी फिल्म, उस फिल्म का ये गीत है। एक डॉक्टर की कहानी बताया गया है, अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप पर पिक्चराइज किया गया है ये फिल्म। और एक डॉक्टर जो है जिससे प्यार करता है लेकिन वो लड़की उससे नहीं प्यार करता, ऐसा कुछ क्लाइमेक्स लव स्टोरी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, रोशन शाह का संगीत से सबा, रोशन शाह का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो,

0: सुना है रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। पूजा जी बताइए, आप आगे कौन सा गीत है आपके पिटारे में?
1: सर अब जो मेरा अगला गाना है उस गाने की बोल है, कहीं झूम झूम रात ये सुहानी, पिया होले से छेड़ो दोबारा।

सर ये गाना बहुत ही अच्छा है और इस गाने में रात का सीनरी दिखाया गया है और इसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हैं और जैसे कि एक लफ्ज में बताना चाहूँगी, जब खामोश आँखों से बात होती है ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत होती है, तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता है, पता नहीं कब दिन से रात और कब रात से दिन होती है।

ये गाना मुझे लगता है 1959 में आई थी लव मैरिज इस एल्बम से। शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ ये गीत है, लता मंगेशकर का गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत। देवानंद बाला सिन्हा पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म लव मैरिज। स्पोर्ट बॉय बताया गया है, खेल में इनकी रुचि बताई गई, क्रिकेट से बहुत प्यार है, लेकिन घर की हालत कुछ और है और घर से इसे नौकरी के लिए मुंबई भेजा जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद भी उसकी आदत खेल के साथ छूटती नहीं। तो आइए इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओके पूजा, कैसे हैं आप? अब कौन सा गीत है आपके बिटारे में?
1: सर अब जो मेरा अगला गाना है उस गाने की बोल है, काहे तरसाए जीरा मोरी।

मैं थोड़े से लाइनें बोलने चाहूंगी। पल भर कहते हैं बात, फिर महीनों की दूरी बनाते हैं। कैसी मोहब्बत है जो दो तनख्वाहों की तरह निभाते हैं। कहने को शब्द नहीं, लिखने को भाव नहीं, दर्द तो हो रहा है पर दिखाने को घाव नहीं। मजाक में कह दिया उसने ये दिल तुम्हारा है, हक समझ कर हमने घर के लिए गिरवी रख दी। तुझे भूल कर भी ना भूल पाएंगे हम, बस यही एक वादा निभा पाएंगे हम। मिटा देंगे खुद को भी जहाँ से, लेकिन तेरे नाम दिल से ना मिटा पाएंगे हम।

ये गाना आपने चित्रलेखा एल्बम से है 1964 का, साई लिधन का लिखा, आशा और उषा मंगेशकर का गाया। और ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक अलग चीज बताने की कोशिश की गई थी। एक राजा को बताया गया है जो एक नर्तकी से प्यार करता है और राजा के अपने संबंधी उसे किसी और लड़की से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा की नर्तकी के साथ प्यार होने के कारण वो उसकी तरफ देखता नहीं। और फिर उनके घर वाले जो है एक साधु के पास जाते हैं और राजा को मनाने की कोशिश उसको बताते हैं। तो साधु कहता है ये मेरा 2 मिनट का काम है। तो राजा और साधु दोनों बातचीत करते हैं लेकिन राजा उस बात से इनकार करता है और फिर वो नर्तकी के पास जाता है साधु। साधु जब नर्तकी को समझाता है नर्तकी तो वो बात समझ जाती है और वो समर्पण हो जाती है साधु के पास, लेकिन साधु फिर उस नर्तकी से प्यार करने लगता है। तो इस तरह की कहानी इसमें बताया गया है। चित्रलेखा 1964 का ये खूबसूरत गाना आपने याद किया है, तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओके पूजा, बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों का कलेक्शन आपके पास है, अच्छा लग रहा है। आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा। आइए, आप कौन सा गीत है आपके पिटारे में?
1: मेरा जो दूसरा गाना है वो है तब 20 साल बाद मूवी का है, और उसकी बोल है कहीं दीप चले कहीं दिल चले।

खाने में बहुत ही अंधेरी घनी रात है और बिजली भी नहीं होती जैसे कि पुराने टाइम पे। आजकल तो होता है सभी जगह पे बिजली, लेकिन पहले के टाइम पे जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो सभी जगह पे दिए जल

0: चला करते थे। और इसके लिए थोड़ा सा बोलूंगी कि जब कोई ख्याल दिल से टकराता है, दिल ना चाहकर भी खामोश रह जाता है। कोई सब कुछ कहकर प्यार जताता है, कोई कुछ ना कहकर भी सब कुछ बोल जाता है। थैंक यू सर।
1: कहीं दीप जले कहीं दिल। 20 साल बाद 1962 का ये गीत आपने याद करा। शकील बनाई साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, हेमंत कुमार का संगीत। जी हाँ, विजय नाम के एक व्यक्ति की कहानी इस फिल्म में बताया गया है। उनके पूर्वजों की हत्या का पता लगाने के लिए वो अपने गांव आता है और फिर वहां पर तलाशना शुरू हो जाता है, जिसमें थ्रिलर क्लाइमेक्स सब कुछ बताया गया है। तो चलिए इस खूबसूरत गीत का आनंद उठाते हैं अभी।

0: बड़ी ही खूबसूरत लाइन है जो प्यार का मतलब बताती है कि प्यार में निगाहें कहीं और होती है, नज़ारा कहीं और होता है और निशाना तो कहीं और ही होता है। इसके लिए मैं दो लाइन बोलना चाहूँगी, ये प्यारी निगाहें याद रहेगी, मिलकर ना मिलने की अदा याद रहेगी, मुमकिन नहीं है कि तुम्हें भुला दूँ और उम्र भर तुम्हें भी मेरी याद रहेगी। थैंक यू सो मच सर।
1: ओके 1956 का ये गीत है CID इस एल्बम से, मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा, शमशाद बेगम का गाया, OP नैयर का संगीत। 1956 का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए, और इसी के साथ मैं और पूजा चाहेंगे इजाजत। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ, चंद्रलाइन ने आपके लिए। रिश्ता हमारा इस जहां में सबसे प्यारा हो, जैसे जिंदगी को सांसों का सहारा हो, याद करना हमें उस पल में जब तुम अकेले हो और कोई न तुम्हारा हो। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपनी मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद रहा।
1: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन.
4: आज मैं एक आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है. दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल. सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस. पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी. अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल. हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना. एक्सीडेंट कभी होता ही ना. द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो. और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए. दिस इज द पावर दैट वी हैव. लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर. दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे.
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

गोरे गोरे वो बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाके छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे वो बाके छोरे।

फूलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: क्या हुआ, इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो आज मनु?
1: बात ही कुछ ऐसी है पुराना स्तंभ जी, पता है मेरे पड़ोस में मिली दीदी रहती हैं। उनकी 2 साल पहले शादी हो गई थी और कल शाम वो घर वापस आ गईं। उनके ससुराल वाले उन्हें दहेज के लिए कब से तंग कर रहे थे।
0: तो फिर 2 साल रुकने की क्या जरूरत थी, ऐसे में तो 2 पल भी नहीं रुकना चाहिए।
1: लेकिन शायद उन्हें डर होगा कि उनके माता पिता को बुरा लगेगा या फिर कहीं उनकी तबीयत खराब हो गई तो।
0: बस यही अब बदलना है मनु, बेटी के माँ बाप को मजबूत बनना होगा। उनकी बेटी को कोई तकलीफ हो तो वो घर पे बता सके, कमजोर होने से मुश्किलें बढ़ती ही हैं, और बेटियों को भी सशक्त होना होगा। जुल्म सहने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी जिंदगी अकेले भी संवार सकती हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ अपनी ही क्या, वो तो हजारों लोगों की जिंदगी भी संवार सकती हैं। मदर टेरेसा या सावित्री बाई फूले, क्या वो महिला नहीं थी?
1: हाँ बिल्कुल सही कहते हैं आप पुराना स्तंभ जी, शायद हम खुद ही अपनी ताकत को भूल जाते हैं।
0: हाँ, हर नारी दुर्गा का स्वरूप समझे खुद को, ये याद दिलाए कि वो कौन है। वो तो असल में शिव शक्ति है, और तुम ही देखो, जब कभी शक्ति की जरूरत होती है तो देवताओं को नहीं बल्कि देवियों को पूजा जाता है।
1: सच, मैं आज ही जाके मिली दीदी से बात करती हूँ, वो ना बहुत टैलेंटेड है, मैं उन्हें अपना कुछ कार्य शुरू करने के लिए जरूर कहूँगी।
0: बिल्कुल कहो, बहुत अच्छा।
1: अच्छा, अभी आपने सावित्री बाई फुले का नाम लिया ना, उनके बारे में जानने की भी ना मुझे बड़ी इच्छा थी।
0: चलो ठीक है मनु, आज तुम्हारी पसंद से ही कहानी सुनाता हूँ। चलो मैं अब तुमको उनके बारे में कुछ बताता हूँ जिन्होंने महिलाओं की सक्षमता को उस समाज के सामने रखा जो उस वक्त एक सड़ी गली मानसिकता से जूझ रहा था, जहाँ पुरुषों का अधिपत्य था और महिलाओं का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उसी वक्त जन्म हुआ एक ऐसी महिला का जिसने अपने जीवन से नई विचारधाराएं लिखी।
1: अच्छा कौन?
0: मैं बात कर रहा हूँ सावित्री बाई फूले की, भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहली किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिबा फूले को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
1: अच्छा।
0: ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्री बाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्री बाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना।
1: अरे वाह,
0: वे एक कवित्री भी थी।
1: अच्छा,
0: उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता है मनु।
1: अच्छा।
0: सावित्री बाई फूले।

0: का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे के पास नाय गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्री बाई फूले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फूले से हुआ था। ज्योतिबा फूले के बारे में तो तुम जानती ही होगी।
1: हाँ हाँ, आपने बताया था ना।
0: हाँ बिल्कुल वही, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए थे और उनका पूरा पूरा साथ दिया था उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले ने।
1: अच्छा।
0: अठारह में पुणे में अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की।
1: अरे वाह।
0: एक वर्ष में सावित्री बाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए थे।
1: 5 नए विद्यालय, वो भी एक वर्ष में।
0: तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया था। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा,
1: सच में
0: इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी।
1: अच्छा।
0: सावित्री बाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया।
1: क्या बात है,
0: वह भी पुणे जैसे शहर में। उस समय की मानसिकता को परास्त करना, ये एक दूरदेशी सोच और खुले विचारों के साथ साथ हिम्मत का कर्तव्य भी था।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ऐसा करके उन्होंने कई विपत्तियों परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था।
1: और वो क्या
0: भाई, इतिहास में हमेशा जब भी किसी ने परिवर्तन की मांग की है या समाज के विरुद्ध सोचने का दुस्साहस दिखाया है तो उसे कभी भी स्वीकृति नहीं मिली। सहज तो बिल्कुल नहीं, अपितु कटु वचन एवं असत्य लांछनों का शिकार भी बनना पड़ा। मैं दाद देता हूँ सावित्री बाई फूले को, जिन्होंने न सिर्फ निडरता से बल्कि धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य को अपने जीवन में सफल किया।
1: और फिर क्या हुआ?
0: फिर समाज का कल्याण हुआ।
1: हाँ, लेकिन कैसे?
0: क्योंकि मनु ने जाके मिली दीदी को समझाया और उन्होंने अपने पैरों पे खड़े होकर सबको ये दिखा दिया कि अकेली लड़की क्या नहीं कर सकती।
1: अच्छा, मतलब आप इतिहास को छोड़कर आप भविष्य भी बताने लगे।
0: हाँ, क्योंकि अंग्रेजी की कहावत है, Whether you think you can, whether you think you can't, you are always right.
1: अच्छा, मतलब आप अगर सोचते हैं आप कर सकते हैं या सोचते हैं नहीं कर सकते, आप दोनों ही कंडीशन में सही हैं। क्या बात है पुराना स्तंभ जी, मैं तो अभी जाती हूँ और मिली दीदी को उनकी अपनी पावर्स को याद दिलाती हूँ और मैं अपनी तरफ से ना पूरी मदद करूँगी उनकी, और आगे की कहानी बाद में आकर सुनती हूँ। थैंक यू पुराना स्तंभ जी, बाय बाय।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्ते को एक नए नजरिए से देखते हुए एक बार फिर इस श्रृंखला में हम आपके साथ हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। जब नजदीक से देखा तो हमने ये पाया कि चाहे वो रिश्ता घर का हो, परिवार का हो या फिर बाहर हमारे जहां हम काम करते हैं हमारे ऑफिस का हो, उस रिश्ते को अगर आज जो कुछ मैंने जाना है, सीखा है अपने बारे में, उसको अगर मैं अपनी जिंदगी में लेकर आती हूं तो हर रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है। आज उस रिश्ते की बात करते हैं जो कि सचमुच खूबसूरत ही है, क्योंकि कहा जाता है कि बाकी सब रिश्ते तो शायद हमारे हाथ में नहीं होते, बने हुए होते हैं, लेकिन ये रिश्ता हम खुद चुनते हैं और वो रिश्ता होता है एक दोस्त का। आज कहीं न कहीं उसमें भी दरार पड़ती नजर आ रही है, कहीं अपेक्षाएं हैं दोस्त से, कहीं हमें लगता है कि हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास तोड़ा गया है, कहीं न कहीं पीड़ा उसमें भी नजर आ गई है। तो ऐसा क्या हो रहा है इस रिश्ते में भी, इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, आज उस बहुत खूबसूरत रिश्ते की हम बात करना चाह रहे हैं कि जो हर रिश्ते से बड़ा कई बार बन जाता है। हम हरेक की बात छोड़ देते हैं लेकिन अपने दोस्त की बात मान लेते हैं, वो दोस्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन आज के इस दौर में कहीं न कहीं उस दोस्ती को भी हमने ऐसा लगता है कि खो दिया है। हम हर बार ये कहते नजर आते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, कहाँ गई वो प्योरिटी दोस्ती में।
1: हम अपने रिश्ते किन चीजों पर आधारित करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप हैज टू बी परमानेंट। अगर फाउंडेशन कोई टेम्पररी चीज है तो वो फाउंडेशन हिलती रहेगी जब वो टेम्पररी चीज में कोई परिवर्तन आएगा। अब हमारी दोस्ती, क्योंकि दोस्त तो हम खुद से चूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई मे बी इट्स दी ओनली रिलेशनशिप जहां हमारे पास फुल फ्रीडम है, हम अपनी चॉइस से यू नो वी डिसाइड कि हम किसके साथ ये संबंध जोड़ेंगे। बाकी सारे संबंध तो जुड़ जाते हैं या बने हुए मिलते हैं। तो इसमें ये किस बात पर आधारित है? इज इट बेस्ड ऑन फिजिकल थिंग्स, अगेन टेम्पररी थिंग्स, लुक्स, दूसरा दिखने में कैसा है, फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटस, डिग्री, यू नो पोजिशन, ऑल दीज थिंग्स विच आर टेम्पररी। क्योंकि आज बहुत बार हम देखते हैं कि इन चीजों पर दोस्ती बनती है, यू नो ये इस पोजिशन पर है, ये तो बहुत काम की पोजिशन है, इनके साथ दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए, यू नो तो ये रिश्ता बनाकर रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता मेरे काम आने वाला है। तो ये रिश्ता क्या होगा, यू नो दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन, आज पोजिशन है तो आपने रिश्ता बनाकर रखा हुआ, पोजिशन गई, रिश्ता फिनिश्ड। तो फाउंडेशन क्या है? तो ये जब हम अपनी दोस्ती या संबंध में जोड़ते हैं, इसका फाउंडेशन शुड बी वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ द सोल रादर देन द रोल, जो उन्होंने अचीव किया है, अक्वायर किया है इस जीवन में, उस पर आधारित नहीं हो सकता। और जब वैल्यूज पर आधारित होगा तो वो परमानेंट है, और जो परमानेंट फाउंडेशन है वो हर ऊपर नीचे बात को क्रॉस करके चली जाएगी क्योंकि उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट डू आई लाइक इन यू, व्हाट इज इट अबाउट यू दैट लाइक, यू नो आई लाइक इट, विच वैल्यू अबाउट यू इज दैट यू नो अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड वंस आई बेस इट ऑन दोज वैल्यूज, तो आपकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होंगे, कभी भी नहीं। आप परिवर्तन हो सकते हैं, चेंज होंगे, दैट विल ऑलवेज बी फॉर द बेटर। एंड वंस आई हैव एक्सेप्टेड यू, कई बार लोग कहते हैं लेकिन उनके अंदर वो वैल्यूज थी जो आज
0: नहीं है,
1: शायद हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर थी जब हमारा ये संबंध

0: पे, एंड विच इज अ गुड थिंग इफ आई कैन शेयर विद समबडी तो वाई नॉट, बट विद फुल फेथ.
1: शिवानी एक और एस्पेक्ट में लेती हूँ कॉम्पिटिशन. साथ साथ हम पढ़ रहे हैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड है लेकिन उसकी परसेंटेज मुझसे ज्यादा आ जाएगी, कैन आई कम्पीट विद माई फ्रेंड? क्योंकि कम्पीट करना है अगर मुझे तो फिर दोस्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ कम्पीट कर रहा होगा या कर रही होंगी. सो कैन आई कम्पीट विद माई फ्रेंड, और जिसके साथ मैं कम्पीट कर रही हूँ सेकेंड या थर्ड पोजिशन के लिए, वो मेरा दोस्त हो सकता है?
0: Yes, हो सकते हैं. Generally we feel there are a lot of friendships which you know everyone is first, second, third, fourth in class. लेकिन फिर competition कोई चीज नहीं है. आपको marks चाहिए, आपको एक percentage चाहिए, वो भी जो हमारा present system बना हुआ है उस अनुसार हमें percentage चाहिए to go into the next compartment or to go into the next profession. लेकिन उसमें ये तो कहीं भी नहीं है कि अगर दूसरे को भी उतने marks मिले तो उससे आपको कोई problem होने वाली है. See, if my friend doesn't do well, I will not like it. You know, I will feel, because the friend is in pain. वो दर्द में है तो मुझे खुशी कैसे हो सकती है? और अगर फ्रेंड खुश है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा. बाकी इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन. आई परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, ही और शी ऑल्सो परफॉर्म्स टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी. फाइनली एक ने फर्स्ट आना, एक ने सेकेंड आना, एक ने थर्ड, एंड दैट इज डजेंट मैटर. माई परसेंटेज, येस, मे बी दैट मैटर्स, एंड आई जस्ट फ्लो विद इट. एंड इन फैक्ट इट्स फन टू डू इट टूगेदर. It should be fun rather than being a negative undercurrent. We can really do it with that spirit of let's do better than what we did before. Rather than let me do better than you and you do better than me, let me outperform myself rather than outperform you.
1: Yes, that's very important. Yeah. Shivani, ये शायद वो रिश्ता है जिसे हम मान के चल सकते हैं कि हमने चुना है तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं. लेकिन यही रिश्ता वो होता है जिससे हम सबसे ज्यादा भरोसा भी करके बैठे होते हैं. ये वो रिश्ता है जो हमें सबसे प्रिय होता है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ या वो भी छोड़ सकता है, और दूसरी तरफ ये कि क्योंकि ये मैंने अपनी चॉइस से बुना है तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, इसके लिए क्या मैं वर्क कर सकता हूँ?
0: सी, एक तो वी लिव टू मच इन पीछे क्या हुआ था या आगे क्या होने वाला है. तो ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, रिश्ते कभी टूटते नहीं है. एक एनर्जी कनेक्शन कभी टूटता नहीं है. ये हो सकता है कि समय परिस्थितियों के कारण हम कभी बहुत ज्यादा समय मिलते हैं और कभी हम काफी समय नहीं मिल पाते. हो सकता है एक कंट्री में चला जाए, दूसरा एक दूसरी कंट्री में हो, तो ये नहीं बोलेंगे कि रिश्ता टूट गया. वी जस्ट अवे. इट्स जस्ट दैट अर्लियर हम एक ही क्लास में एक ही बेंच पे बैठते थे, तो वी वर 8 आवर्स टूगेदर, एंड अब हम बिल्कुल एक दो अलग देशों में है. रिश्ता कहाँ टूटा? रिश्ता टूटता नहीं है. समय परिस्थिति हमें नजदीक या दूर ला सकती है, लेकिन हमें अभी जब हम स्कूल या कॉलेज में है हमें बैठकर ये नहीं सोचना कि वी विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर, ये कभी नहीं टूटेगा. टूडे, अभी का मोमेंट क्या है, अभी हमारा ये संबंध कैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सारा दिन फ्यूचर के बारे में सोचना, बिकॉज हम एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. अगर आज हम दोनों एक दूसरे को गारंटी पेपर भी लिखते कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा सो कॉल्ड, या वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल हैपन लाइक दैट. हो सकता है कि अगले 10 साल आप एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले, ये पॉसिबल है. या हो सकता है परिस्थितियां ऐसी कुछ आ जाए कि आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो भी. तो वाई गेट इन टू दैट दैट कन्फ्यूजन? इट्स अ कन्फ्यूजन एंड इट्स एन अननेसेसरीली कहें जकड़ के रखने की कोशिश करना. रिश्ता ये नहीं है कि आप मेरे ही हो और आप सारी उम्र मेरे ही रहोगे. नो, इट इज वी आर एट द प्रेजेंट मोमेंट टूगेदर, एंड हमें ये मोमेंट अच्छा लगता है, अगला मोमेंट अच्छा लगता है. ईच मोमेंट को हम, सो दैट्स लिविंग इन द प्रेजेंट. और ये लिविंग इन द प्रेजेंट हर एक रिश्ते में इम्पोर्टेंट है.
1: मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, दोस्त में क्या इतनी ताकत होनी चाहिए? मुझे दिख रहा है कि मेरा दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है, चाहे वो स्मोकिंग की शुरुआत है, चाहे वो कोई भी और लत है, या फिर किसी और नेगेटिविटी की. हाउ कैन आई ब्रिंग हिम बैक?
0: एम्पावरमेंट विद लव, क्योंकि लव वो पावर है जो वो वापस उनको ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति दे देती है. लेकिन वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि डोंट स्मोक, डोंट डू दिस, क्योंकि हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि ये अगर इस आदत की तरफ जा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है. क्योंकि जब भी हम कोई आदत की तरफ जाते हैं उसका रीजन होता है कोई ना कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, या तो डिप्रेशन, या घर में कोई इनसिक्योरिटी, या कोई

0: like so and so, but unhone mujhe nahi accept kiya, hai na. To jab unhe wo rejection milta hai, ye rejection ek bacche ki personality par itna deep impact chhod deta hai, kyunki the bachcha is very still not mature. Usse pata nahi hai ki rejection ko kaise handle karna. Usse ye bhi maturity nahi hai ki ye rejection वो सामने वाले व्यक्ति की अपनी चॉइस है. मुझे ये लगने लगता है कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, ये मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, यू नो, मेरे अंदर कोई कमी है. एंड इट इज द फर्स्ट सीड ऑफ एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि आई एम नो गुड. यू नो, जिनको मैंने लाइक किया उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते थे, उन्हें मैं क्यों नहीं अच्छा लगा. तो द फॉल्ट इज विद मी. माय सेल्फ कॉन्फिडेंस टोटली क्रैशेस, टोटली. सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से फिनिश्ड. अब ये पर्सनालिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि देन दे विल से, पहले तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, पहले तो सब कुछ ठीक था मेरे साथ, अब ये क्यों हो गया? क्योंकि मेरे अंदर वो रिजेक्शन को फेस करने की मेच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि अभी मैं वो एज पर नहीं पहुंचा टू अंडरस्टैंड. तो वो मेरी पर्सनैलिटी में एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, और ये कॉम्प्लेक्स मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप्स में आगे, मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में हर जगह एक इम्पैक्ट डालेगा. तो ये मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ, गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया जिसको मुझे लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ेगा. इस एक रिजेक्शन की वजह से मैं मेजोरिटी और रिश्तों में विश्वास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे धोखा मिला था, या तो यू नो देयर वाज अ रिलेशनशिप और वो टूट गया, तो उन्होंने मुझे धोखा दे दिया. अब अगर किसी ने मुझे धोखा दे दिया उस एज में, वो यंग एज में, आई कैरी दैट लाइफ लॉन्ग, एंड आई फील के सब लोग ऐसे हैं, धोखा देते हैं, मैच्योरिटी नहीं है. तो हम कितना नुकसान अपना कर देते हैं इन रास्तों पर. अभी
1: एक और एस्पेक्ट जो सबसे ज्यादा वायलेंस का एस्पेक्ट हम देख रहे हैं, वो है कि ऑब्सेसिव, जो कि वो मेरा ही है या वो मेरी है, इस उम्र में ही ये एहसास लेकर, और वो कहीं ना कहीं इतना वायलेंट हो रहा है. हाउ टू एक्चुअली हैंडल इट, यू नो, देर कैन बी अ गर्ल जिसको एक लड़का ये कहे कि यू नो आई लव यू, एंड उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट ही करता रहे कि वहां से नहीं रिजेक्शन. रिजेक्शन को कितनी बार वायलेंस में कन्वर्ट किया गया?
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज पावर ही नहीं है ना. पावर नहीं है तो जहां रिजेक्शन आ गई, नेगेटिविटी आ गई, तो उसे एक आउटलेट चाहिए. तो वो आउटलेट या तो सेल्फ वायलेंस पर हो जाएगा, आप अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट कर लेंगे ना. सो मेनी पीपल ट्राई टू कमिट सुसाइड, या अपना डैमेज कर देते हैं, या अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं सबसे, ये भी सेल्फ डैमेज है, या हम दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी नफरत अंदर भर गई है, तो वो आउटलेट कहां से आएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें ये जो हमारा एज है, दिस इज फॉर सिंपल ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप्स, वेरी हेल्दी रिलेशनशिप्स, जो हम बहुत लोगों के साथ बना सकते हैं. इस एज में आप ये नहीं डिसाइड करने की कोशिश करो कि मैं इनके साथ अपनी पूरी जीवन जीना चाहता हूँ, दिस इज माई पार्टनर. नो, बिकॉज राइट नाउ हम उस मेच्योरिटी लेवल पर ही नहीं है कि हम वो डिसाइड करें कि किसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहें. एंड जो हम फेज बिताने वाले हैं जिस एज का, अभी हम दोनों उस एज में नहीं है, तो रियली हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं. मे बी टुडे यू नो दे मे बी 15 इयर्स ओल्ड या 16 इयर्स ओल्ड, बट बाय द टाइम दे आर 25 दे विल बी टू डिफरेंट पर्सन, एब्सोल्युटली टू डिफरेंट पीपल. एंड तो इज इट पॉसिबल कि 15 या 17 की एज में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 25 या 40 की एज में हम एक दूसरे के साथ रहे? हाउ कैन वी डिसाइड दैट? बिकॉज दैट टाइम दैट पर्सन विल बी समबडी टोटली डिफरेंट. तो इस बचपने की एज में हम वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं. तो हम बहुत सारे गलत डिसीशंस उस वजह से ले लेते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एट अ वेरी अर्ली एज हमारी थॉट्स के अंदर इम्प्योरिटी आनी शुरू हो गई है. हम वो बॉडीली अट्रैक्शन और उस तरफ जो एक प्योरिटी की एज है, यू नो चाइल्डहुड इनोसेंस, चाइल्डहुड प्योरिटी को हम इतनी यंग एज में गवा देते हैं. और इम्प्योरिटी जहां आएगी वहां पीस वैनिश हो जाती है. एंग्जायटी, एंगर, ये बहुत जल्दी उस एज में, क्योंकि हमने देखा कि उस दैट इज द सीड, उससे अग्रेशन, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ये सब ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि थॉट्स के अंदर इम्प्योरिटी शुरू हो चुकी है. तो क्या ये वो एज है? एवरी चाइल्ड टूडे, every youth today needs to stop and ask themselves ke right time hai, let's do it at the right time. Har cheez ka ek samay hai aur us

0: समय पर ही उस संबंध की तरफ हम ध्यान दें। अभी का समय है वेरी गुड फ्रेंडशिप्स। हमें जरूरी नहीं है कि एक के साथ एक नाम जोड़कर मुझे रखना है कि दिस इज माय रिलेशनशिप। नो, लव सो मेनी फ्रेंड्स, व्हाई कांट इट बी लाइक दैट?
1: दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार हम कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम सहज जुड़ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम ऐसे सहज नहीं जुड़ रहे होते। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात होती है। हमने जब कहा कि दोस्त हम चुन सकते हैं, दोस्त वो लोग हैं जो हमें चुने जा सकते हैं, पहली बार हमारे हाथ में ये है, क्या हम जिनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो हमारे दोस्त ही होंगे या क्या हम देखें कि क्या वो दोस्त हमारे होंगे? और इस मोमेंट को तो हम अच्छे जी रहे हैं जो लंबा भी चल।
0: दैट्स व्हाट वी डोंट नीड टू डिसाइड अभी। सी, ये जो हम बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं ना, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये अभी डिसाइड करने की एज ही नहीं है। हर एज की अपनी इम्पोर्टेंस है। दिस इज द टाइम टू हैव फ्रेंड्स, यू नो, सो लेट्स कीप इट
1: ओपन
0: एट दैट। लेट्स जस्ट कीप इट एट दैट। उसको स्पेसिफिकली सेपरेट करने की कोशिश नहीं करें कि ये रिलेशनशिप बाकी सब रिलेशनशिप से अलग है। नहीं, दिस रिलेशनशिप इज लाइक ऑल अदर रिलेशनशिप, वेरी हेल्दी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। नहीं, ये डिफरेंट है। नो, बिकॉज टूडे फॉर यूथ और फॉर चिल्ड्रन इट्स मोर अ फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन रिलेशनशिप कभी फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड नहीं है। इट्स कॉन्शियसनेस, इट्स सोल्स, बिकॉज इट इज टू सोल्स जिनका कार्मिक कनेक्शन एक लंबे समय तक चलेगा। वो बॉडी कॉन्शियसनेस पर अगर आधारित होगा तो वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। और इस एज में जब हम डिसाइड करते हैं, जिसकी आप बात करें, दैट्स मोर बेस्ड ऑन बॉडी कॉन्शियसनेस, और उसकी फाउंडेशन ही जब देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो वो फाउंडेशन तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी, बिकॉज माई अट्रैक्शन विल कीप चेंजिंग। That is not a solid foundation for a relationship.
1: बिल्कुल सुधीर शिवानी, ये तो हमने उस उम्र की बात की जो काफी वल्नरेबल भी होती है और जहां दोस्ती बहुत जरूरी होती है, लेकिन हर एज में देखा गया है कि फ्रेंडशिप इज वन रिलेशनशिप वी लुक फॉरवर्ड टू। प्रोफेशन में क्या सेम प्रोफेशन में है हम, तब मैं दोस्त हो सकता हूं? क्योंकि ये भी बात कही जाती है कि प्रोफेशंस में दोस्ती नहीं होती है।
0: वो इसलिए क्योंकि हमने कंपटीशन डाला है और कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्ती कुछ भी नहीं है, इट इज अ हेल्दी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जहां कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन जहां हमने सोचा नहीं या तो ये आगे जा सकती है मैं, देन आई विल फील नहीं मैं, क्योंकि फिर आप एक दूसरे से कुछ शेयर नहीं कर सकते। यू कांट बी योरसेल्फ विद द अदर पर्सन। आपको बहुत यू नो केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी ऑन योर गार्ड। दैट्स व्हाई वी से बाकी तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज संबंध क्या है? दो आत्माओं का संबंध, एक दूसरे के साथ जो वो कम्युनिकेट करते हैं वो संबंध है। तो उसके ऊपर ना कोई प्रोफेशन इन्फ्लुएंस डाल सकता है, ना कोई पोजिशन, ना कोई स्टेटस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस। वी क्रिएट दोज कॉम्प्लिकेशन।
1: बिल्कुल, एक दोस्ती एक ऐसा एहसास है जो हमेशा से बहुत अच्छा लगता रहा है। शिवानी, आज इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। हर रिश्ते की तरह हमने ये भी देखा कि मित्रता, जिसे हम सबसे गहरा रिश्ता मानते हैं, उसमें भी जो कड़वाहट कहीं ना कहीं आ जाती नजर आ रही है वो हट सकती है। और मित्रता अगर हम जब यंग एज में होते हैं, उस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसे किस परिपेक्ष में लें तो ये फ्रेंडशिप जो है वो सालों साल चल सकती है। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09999344555, 09999344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अभी एक और रिश्ता बाकी है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है रिश्ता अपने आप से और परमात्मा से। कैसा होता है ये रिश्ता, इसके बारे में बात करेंगे अवेटिंग विद ब्रह्मा कुमारी। आप दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है.
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम. देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए.
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं।

0: है उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसके बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार और स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। बहुत से फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से ईमेल्स आ रहे हैं और ये बात हमें समझ में आ रही है कि जिन मूल्यों की हम बातें कर रहे हैं, जिंदगी के जिन मुद्दों को हम जान रहे हैं, जिनके आंसर्स तलाश रहे हैं, उसमें कई कई मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं जब उन्हें हम प्रैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी फिर से हैं, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति शिवानी। और सबसे पहली बात आज, क्योंकि शुरुआत ही मैंने सीधे इससे की है कि हमने खुशी की बात की थी, हमने टेंशन की बात की थी, एंगर की बात की थी और जिस तरह का हमारे पास रिस्पॉन्स आया हमारे दर्शकों का, उससे तो मतलब लग रहा है कि लोग जो है वो बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं। जैसे मैं भी बहुत मोटिवेटेड रही हूँ कि इसे इम्प्लीमेंट करने का, बात करने में, क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि बात समझ में आ जाए, समझ आ रही है लेकिन वो कंटिन्यूअस इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। खासकर एंगर के ऊपर जो हमने बात की थी, जो रॉन्ग मिथ्स हैं, यू नो, रॉन्ग नोशंस को लेकर हम चल रहे थे, पीपल हैव अंडरस्टूड दैट, यू नो, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि दे आर रॉन्ग, क्योंकि हम कहीं खुश नहीं हो रहे थे गुस्सा कर।
1: आपने देखा लेकिन कल अपने आप को
0: कि गुस्सा ना करूं मैं। हाँ, बिल्कुल मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की लेकिन मुझे जो मुश्किल ये आई कि मेरे साथ गुस्से का ये था कि अगर मुझे काम निकलवाना है तो मुझे थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, ये मैं मानती थी और मैंने कोशिश की कि मैं गुस्सा ना करूं और प्यार से कोशिश करूं, लेकिन वही पेशेंस चाहिए उसके लिए। और अल्टीमेटली आई रियलाइज कि मैं फिर बहुत ही यू नो लाइक सॉफ्ट हो गई, तो वो काम ही नहीं हुआ फिर। तो उसमें मुझे ये एक मुद्दा जो है कि गुस्सा ना करके, लेकिन अथॉरिटी तो रखनी चाहिए ना, वो कहीं वो बैलेंस
1: ये लेकिन जो ज्यादातर हमने देखा ना, जैसे आपके पास जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम फिनिश करना चाहते हैं लेकिन वो फिनिश नहीं हो पा रहा। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपको क्या लगता है गुस्सा खत्म करने में कितनी देर लगेगी? जैसे कई लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, आज अगर डिसाइड करें कि हमें अपने, क्योंकि परेशान तो सभी हैं उससे।
0: अच्छा, मुझे लगता है कि एक क्षण भी नहीं लगना चाहिए बेसिकली।
1: एक क्षण में खत्म हो जाएगा
0: नहीं, क्योंकि आपका माइंडसेट की बात होती है। जिस दिन हमारा माइंडसेट पूरी तरह से ये रियलाइज कर लेगा तो चाहे जितनी भी हैबिट पड़ी हुई हो, भाई लोग सिगरेट छोड़ते हैं तो एक मिनट में छोड़ते हैं,
1: वो भी तो करते, वो वन मिनट कौन सा चाहिए, वो रियलाइजेशन कौन सी चाहिए, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरे काम की चीज नहीं है। अभी हम क्या कहते हैं, गुस्सा अच्छा नहीं है, गुस्सा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा करना पड़ता है। ये जो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है, जब तक ये मेरे पास बिलीफ होगा तो वो चीज मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई है। जैसे घर में सामान संभाल के रखते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए, यू नो, एंड इन द प्रोसेस वी फिल अप आवर हाउस विद
0: सो मेनी थिंग्स विच आर, और उनका भी काम
1: है, बिकॉज वी केप्ट दैट थॉट कि पता नहीं कब काम में आ जाए। और एक्चुअली उसको बाहर फेंकने में कितना टाइम लगता, जिस दिन सोचा कि ये अब मेरे काम बिल्कुल नहीं आने वाला, हम उसे उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। गुस्सा पता नहीं कब मेरे काम आ जाए, कई ऐसी बातें होंगी जब मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। यू नो दीज जो थॉट्स हैं कि बिल्कुल खत्म कैसे हो सकता है, यू नो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूं। हाउ इज दैट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड? इट्स नॉट पॉसिबल। यू नो ये जो पूरी सीरीज ऑफ थॉट्स चलती है कि आज की दुनिया में सबके साथ काम करते हुए पॉसिबल नहीं है,
0: काम नहीं निकलवा पाऊंगी मैं, कहीं गुस्सा तो करना ही पड़ेगा
1: और बाकी लोग नहीं तो मेरा अंडियो एडवांटेज ले लेंगे, मुझे एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, तो थोड़ा तो गुस्सा चाहिए। अब जब तक वो थोड़ा तो गुस्सा चाहिए तो फिर वो अंदर संभाल के रखा हुआ है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे थोड़ा तो चाहिए? अगेन वी आर ऑलवेज इन दीज कॉन्ट्रडिक्शन, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना लेकिन मुझे थोड़ा तो चाहिए। खुद ही चूज किया, खुद ही उसे संभाल के रखा तो वो आपके पास ही रहेगा। जिस क्षण आप कहेंगे कि अब मुझे ये
0: पूरी
1: बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मेरे काम की चीज नहीं है, मैं हर काम और हर व्यक्ति से इसके बिना डील कर सकता हूँ, इट्स गॉन।
0: इट्स रियली गॉन, बट आई थिंक फॉर दैट वी हैव टू बी इंटरनली वेरी स्ट्रांग।
1: नो, वी जस्ट हैव टू गेट कन्विंस्ड एक्चुअली, वी डोंट इवन नीड टू बी स्ट्रांग, आई जस्ट नीड टू गेट कन्विंस्ड, आई डोंट नीड इट, वी आर नॉट कन्विंस्ड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वी आर नॉट कन्विंस्ड कि वी कैन वर्क विदाउट दैट, और वो अपने आप को कन्विंस करना, आई विल हैव टू टेक माई सेल्फ थ्रू यू नो अ फ्यू डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि हर स्टेप पर देखें, पहली बिलीफ कि गुस्सा तो चाहिए ही, चेक करें, या गुस्सा तो नॉर्मल है, चेक करें करके अभी क्या हो रहा है, कर रहे हैं और आगे काम करते जा रहे हैं, वी नॉट स्टॉपिंग एंड चेकिंग। गुस्सा करने के बाद कैसा फील हुआ, अच्छा लग रहा है, बॉडी इज फीलिंग ओके। आज डॉक्टर भी हमें बता रहा है कि एक क्षण का गुस्सा भी आपके ब्रेन से लेकर पूरे नर्वस सिस्टम और हर अपने शरीर के ऑर्गन पर इतना नुकसान कर रहा है, हाउ कैन इट बी गुड। जो चीज इतना डैमेज फिजिकली कर रही है वो इंटरनली कितना डैमेज कर रही होगी, हाउ कैन इट बी गुड। आई एम स्प्रेडिंग सो मच नेगेटिविटी इन द एनवायरमेंट, मेरे रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, हाउ कैन आई कॉल दैट थिंग गुड। उससे गुड कौन सी चीज निकल रही है, आई विल हैव टू आस्क माई सेल्फ। जब मैंने गुस्सा किया उसके बाद स्टॉप चेक, इसमें से गुड कौन सा निकला, जो मैं सारा दिन अपने आप से कह रही हूँ गुस्सा करना अच्छा है, थोड़ा तो गुस्सा करना पड़ेगा। Point out and write it down. What was the good that came out now? If it really came out, use it next time. If it didn't, tell yourself, no good. जितनी बार अपने आप को हर परिस्थिति में चेक करेंगे एंड अपने आप से बात करके कहेंगे no good, again this time no good, over a period of time I will convince myself. देखो दूसरों को हम कैसे convince करते हैं, अपने आप को भी तो convince करना पड़ेगा, क्योंकि we cannot change other people.
0: We have to change ourselves.
1: Unfortunately, पूरी जीवन औरों को बदलने की कोशिश में निकल जाती है और इतना टाइम और एनर्जी इसमें इन्वेस्ट हो जाता है कि अपने लिए टाइम और एनर्जी नहीं है। दूसरों को सलाह देना बहुत ईजी है, आप ये मत कीजिए, आप उन्होंने ये कह दिया कोई बात नहीं, आप भूल जाइए। हमें कुछ कोई कह देता है, अपने आप को कहना कितना ईजी मुश्किल लगता है, भूल जाइए कोई बात नहीं, काउंसिल योर सेल्फ, दैट्स मेडिटेशन। सेल्फ काउंसलिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, टॉकिंग। आप देखिए काउंसलर कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करेगा, आप बुरे हो, काउंसलर कभी नहीं कहेगा, कहेगा आप ठीक हो बिल्कुल, आप बस इसको ऐसा थोड़ा सा करो, यू कैन टेल योर सेल्फ दैट। हमें किसी काउंसलर के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए या इवन किसी पड़ोसी के पास या किसी फ्रेंड के पास काउंसलिंग के लिए जाने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वी कैन नॉट काउंसिल आवर सेल्फ। एंड फाइनली एक्चुअली बहुत ज्यादा हमारी कोई और काउंसलिंग नहीं कर सकता। अगर आप मुझे बैठकर अभी बहुत अच्छी राय दे भी, मुझे सुनने में अच्छी भी लगे, बट आई विल स्टिल गो बैक विद माई ओल्ड बिलीफ कि आप तो ठीक कह रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है जी मेरे बच्चे कैसे हैं, जी आपको नहीं पता, आपके हस्बैंड वैसे नहीं है ना, आपको नहीं पता मेरे हस्बैंड कैसे हैं, तो मेरे हस्बैंड कैसे वो अगर मुझे ही सिर्फ पता है तो फिर मेरी काउंसलिंग
0: मैं अपने आप
1: मुझे ही कर लेता।
0: अच्छा लेकिन जब हम बहुत अच्छी आपने ये बात कही कि जब हम काउंसलर के पास जाते हैं तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं बताते,
1: नेगेटिव नहीं,
0: लेकिन जब हम अपने आप से बात करते हैं तो पहली चीजें अपनी नेगेटिव,
1: और इसीलिए तो हम अपने आप
0: और डिप्रेशन में चले जाते,
1: डर लगते हैं, बिकॉज जैसे ही हम बैठते हैं अपने आप से हम बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं,
0: सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है,
1: राइट, एंड देन इट्स लाइक ये अच्छा नहीं है, एंड आई मूव आउट। जो वो हमने उस दिन बात की कि रोशनी में फिर उस चीज को तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर जैसे ही ट्राई किया तो बड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगा,
0: डर लगा।
1: तो एट एवरी स्टेप अपने बिलीफ को चेक कीजिए, एंगर इज गुड, नो। जब आप 8-10 परिस्थितियों से गुजरेंगे और हर टाइम, क्योंकि गुड कभी हो नहीं सकता वो, तो हर टाइम जब आपका फाइनल एनालिसिस निकलेगा नो इट वॉज नॉट गुड, वॉट गुड केम आउट ऑफ इट, नथिंग, धीरे धीरे यू विल टेल योर सेल्फ येस दिस बिलीफ वॉज रॉन्ग। पहले तो इसको साइड करो कि एंगर इज नॉट गुड, सेकेंड दूसरे ने किया तो मुझे भी करना ही होगा, चेक योर सेल्फ जस्ट टूडे मतलब एवरी डे मॉर्निंग डिसाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपन्स यू विल हैव टू प्रोग्राम, दिस इज प्रोग्रामिंग। आपको सुबह उठकर अपने आप से एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, अगर करना चाहते हैं आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सामने आ जाए, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा।
0: लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम ये आती है पीयर प्रेशर, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दे मैं चुप रह जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे।
1: आप ये सोच रहे हैं कि लोग ये सोच

0: रहे हैं कि गुस्सा एक ताकत है, ये आप सोच रहे हैं, एक्चुअली लोग ये नहीं सोचते हैं। जस्ट विजुअलाइज अ सीन, आप अपने आप को सिचुएशन में डालने की जगह सिचुएशन से डिटैच हो जाइए, उसमें खड़े होने की बजाय उन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाइए ना, बी अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस। आपके सामने कोई आया बहुत जोर जोर से गुस्सा कर रहा है, या यू आर द ऑडियंस, मेरे सामने कोई अभी आया बहुत जोर जोर से गुस्सा कर रहा है, यू आर वॉचिंग द सीन, ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर, दिस इज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एंड यू वॉच मी नाउ कि मैं शायद नहीं गुस्सा करूं ऊपर से, एंड आई रिमेन वेरी काम दैट टाइम, एंड आई कैन जस्ट स्माइल बैक, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दैट पर्सन गेट्स ओके, देन आई विल गो एंड टॉक टू हिम एंड से व्हाट आई वांट। यू आर एन ऑब्जर्वर, आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एम आई वीक, योर कंक्लूजन वॉज आई एम स्ट्रांग, बट आई कीप थिंकिंग, सी दिस इज रॉन्ग बिलीफ, मैं ये सोचूंगी कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, और आपको प्रूफ करने के लिए मैं चिल्लाना शुरू कर दूं, एंड फाइनली डाउन द लाइन मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं। इवन अगर आप सोचें कि आप मैं कमजोर हूं, दैट्स फाइन, वो आपकी सोच है। अगर मुझे ऐसा रहकर अच्छा लग रहा है, इफ आई फील मोर एनर्जाइज, क्योंकि गुस्सा करने के बाद आई एम डिस्चार्ज, आई एम एब्सोल्यूटली डी एनर्जाइज, एंड मेरा वो संबंध बिगड़ रहा है। अब आपका वो संबंध नहीं है, वो मेरा संबंध है, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आप क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं।
1: लेकिन होता ये देखा गया है कि आप किसी ने आपसे गुस्सा किया या आपकी इंसल्ट की और आप वापस नहीं रिएक्ट कर पाए, आप अंदर कुलबुलाते रहते हैं, वो जो एक कुलबुलाहट है वो, तो मेरी एनर्जी डिस्चार्ज अगर हो जाती तो बेहतर था। कई बार
0: ये भी एक बिलीफ है, और समवेयर डाउन द लाइन मेडिकली उसको राइट भी प्रूफ कर देते हैं कि अंदर अंदर नहीं घुटना चाहिए, बाहर निकाल दो। लेकिन उस प्रोसेस में, क्योंकि कुछ समय हमने वो धारणा को लेकर देखा कि अंदर नहीं रखो, बाहर निकाल दो, लेकिन फिर हम निकालते ही रहे हर टाइम, यू सी, देन वी नेवर रियली गॉट ओवर इट। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी चीज को फोर्सफुली भी छोड़ना पड़ता है, आपको उसको दो बार चार बार शायद वो आपको अंदर तकलीफ देगी, पांचवी बार वो अंदर भी तकलीफ देना बंद कर देगी। लेकिन अगर हम अपने आप को हर टाइम ये कह देंगे नहीं वो अंदर तकलीफ देती है, इससे अच्छा बाहर निकाल दो, व्हेन विल इट गेट ओवर, इट विल गो स्टेप वाइज ना, फर्स्ट आई स्टॉप्ड डूइंग इट, पहले हम फिजिकली किसी पर हाथ भी उठा देते थे, फर्स्ट अटेंशन हाथ नहीं उठना चाहिए, सेकेंड अटेंशन मुख से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, थर्ड अटेंशन गलत नहीं सोचना चाहिए, सो मे बी इफ आई कांट डू इट दिस वे देन आई विल हैव टू डू इट दिस वे, बट आई विल हैव टू डू इट, आई कांट गिव माई सेल्फ द एक्सक्यूज कि नहीं निकालना बहुत अच्छा इसलिए करते रहो, दैट गेव अस मोर फ्रीडम कि गुस्सा कर दो, करने से आप हल्के हो जाओगे।
1: हाँ,
0: किसको आज तक हल्का फील हुआ है गुस्सा होने के बाद? होते ना इल्यूजन, आप गुस्सा कर दो आप हल्के, हल्का इज लाइटनेस, हल्का इज हैप्पीनेस। गुस्सा करने के बाद हल्का कब फील होता है? गुस्सा करने के बाद तो बहुत भारी लगता है,
1: बहुत बुरा लगता है एक्चुअली, हैवी और लाइट की बात,
0: वही बुरा मतलब दैट इज हैवीनेस ना, अपने आप से अंदर गिल्टी या अपने आप से क्या जरूरत थी, इसके बिना भी तो चल सकता।
1: अच्छा, और कई बार हम कहते हैं इतना गुस्सा कर देते तो था,
0: वो भी
1: चले गए, वो भी ज्यादा कह दिया मैंने कुछ, इतना नहीं कहना चाहिए था,
0: क्योंकि जब रिएक्ट करते हैं तब कोई कंट्रोल नहीं होता है, तब ज्यादा और कम उस टाइम याद रहने वाला नहीं है, तो वो अपने आप से एटलीस्ट इनिशियली जब हमने ट्राई किया तो इट वॉज लाइक अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब ये कुछ भी बोले तो हो सकता है। शुरू में क्या हुआ कि ऊपर से नहीं कहा, अंदर बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, अभी भी कई बार ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो स्टेज तक तो पहुंच जाए कि बाहर से तो बोलना बंद करें, धीरे धीरे अंदर से भी बंद हो जाता है।
1: यहाँ एक जो हमने पहले भी बात थोड़ी आधी छूटी थी ये कि जब अथॉरिटी की बात कि अभी तक मैंने कहा कि मेरे लिए था कि भैया गुस्सा करूंगी तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं करते हैं। लेकिन जब मैंने ये कोशिश की कि भैया गुस्सा नहीं करते हैं, प्यार से काम कराने की कोशिश करते हैं, तो प्यार से काम हुआ ही नहीं, तो मैंने बोला चलो काम ही नहीं होता, लेकिन ये भी तो नहीं होता,
0: वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम लीडर या व्हाटएवर प्रोजेक्ट हेड, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करनी है, या एज अ पेरेंट बच्चों के साथ, ये उस तरफ भी एप्लीकेबल है। लेकिन गुस्सा एंड डिसिप्लिन, कई लोग डिसिप्लिन के नाम पे बहुत गुस्सा कर देते हैं कि अगर मैंने, मुझे बच्चों को तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, वैसे ही उनकी हालत देख लो आज, इतना आपने डिसिप्लिन उस तरह से करने की कोशिश की, उनकी हालत आज देखिए क्या है, वो खुद ही इतना हॉलो हो गए हैं अंदर बिल्कुल। तो गुस्सा और डिसिप्लिन, लाइक वी डिस्कस्ड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, गुस्सा

0: is reaction, discipline is response. किसी से कोई गलती हो गई है, हम उस टाइम कैसे रिस्पॉन्ड करें? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, सामने से कोई चलते हुए आ रहा है, चलते चलते बीच में एक पत्थर था, उसका पैर उससे ठोकर लगा, वो गिर गया, चोट लगी, बहुत जोर से चोट लगी। आप एक पेरेंट हैं या आप एक टीम लीडर हैं, अब आपका क्या रिस्पॉन्स होगा?
1: डेफिनेटली विल गो आई गो एंड फाइंड आउट कि ज्यादा चोट नहीं लगी हो, या यू नो उसको ये समझाऊंगा कि देख के चलिए, और चोट
0: पहले किस चीज को अटेंड करेंगे?
1: उसकी चोट
0: को आप उसे उठाएंगे, उसे हील करेंगे। पहले आप उसे वहां खड़े होकर लेक्चर नहीं देंगे कि चलने का सही तरीका कैसा होता है, क्योंकि अगर आप देंगे भी तो वो सुनने की हालत में नहीं, ही इज इन पेन। फर्स्ट ट्रीट द वुंड। लेकिन हम अगर लेक्चर दें, और लेक्चर देना भी अगर हम और ही जोर से उसको पीटने लगे लाठी से, तुम ऐसे चले कैसे, तुम गलत चले कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिरने की, वॉट काइंड ऑफ डिसिप्लिनिंग इज दिस? तो सिमिलरली एक कंपनी में या एक पेरेंट के साथ किसी ने कोई गलती कर दी है, वो व्यक्ति ने गलती करने के बाद ही हिमसेल्फ नोज ही इज मेड अ मिस्टेक, और द चाइल्ड हिमसेल्फ नोज आई हैव नॉट डन वेल इन माई एग्जाम्स, बट दैट टाइम दैट पर्सन इज ऑलरेडी इन पेन। उसको अंदर ऑलरेडी पता है कि मेरे से गलती हुई है, अब मुझे डांट पड़ने वाली है। नाउ यू नो दैट फियर एलिमेंट इज देयर, ही इज इन पेन। यू एज अ लीडर, यू एज अ पेरेंट, व्हाट्स योर रोल राइट नाउ? यू हैव टू रिमेम्बर दैट। हम वही कर रहे हैं कि दूसरा गिरा हुआ है, वो दर्द में है, हम वहां उसको खड़े होकर और पीटते हैं। तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने ये किया क्यों? जब वो ठीक हो जाता है तब हम उसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब वो दर्द में है हम उसे और पीटते हैं, उसे लेक्चर देते हैं।
1: जब वो उसे कुछ
0: वो उस समय सुनने की समझने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं हम इनको इतना समझाते हैं लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा समझाने का समय गलत था। हम तब समझा रहे थे जब वो समझने वाली स्थिति में नहीं थे,
1: जब ऑलरेडी प्रॉब्लम।
0: जस्ट लुक एट द सिचुएशन ना, कि मेरे से कोई गलती होगी एंड माई बॉस जस्ट सेज नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, मैंने भी ऐसी गलतियां की थी, इट्स अंडरस्टैंडेबल, एंड ही टेक्स यू, ही जस्ट एक्सेप्ट्स यू, हील्स योर वुंड। लेकिन फिर वो हील होने के बाद फिर वो आपको बैठकर आपसे अच्छी तरह से बात करता, लेकिन उस टाइम वो भी सही बोलने की स्थिति में, क्योंकि वो रिएक्शन वाला मोड खत्म हो गया है, और आप भी उस टाइम अच्छी तरह से समझने की स्थिति में, और क्योंकि जब आप दर्द में थे तब उसने आपको सपोर्ट दी थी, वो आपकी बात और भी अच्छी तरह से सुनेगा। अगर आप उसे कुछ कहेंगे भी उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो दर्द में है और तब आप उसको बोल रहे हैं, तब आपकी सही बात भी
1: समझ ही नहीं
0: आएगी, अच्छी नहीं लगेगी,
1: पहुंच ही नहीं पाएगी,
0: आप अच्छे नहीं लगेंगे उस टाइम, आप ही अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए एक बच्चे को वो पेरेंट उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा होता। एक बच्चे के मार्क्स कम आए, एक बच्चा फेल हो जाए, मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रेन हु कमिट सुसाइड, व्हाई डू दे कमिट सुसाइड? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेसिंग द पेरेंट, नॉट बिकॉज दे फेल्ड। तो रीजन कितना अलग है। आज अगर वो पेरेंट को जिसका बच्चा चला गया उसे ये पता चले कि मेरे डर के कारण वो बच्चे ने अपनी जीवन दे दी, वो पेरेंट क्या कहेगा? तुम वापस आ जाओ, मैं तुझे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। नाउ व्हाट्स द यूज? दैट्स द पॉइंट। नाउ व्हाट कैन वी डू? वो बच्चे के अंदर पहले से वो विश्वास होना चाहिए था कि माय पेरेंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट वुड हैव हैपेंड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरी कोई भी गलती होगी वो मुझे समझ लेंगे, एंड ऐसे पेरेंट्स हैं, वी हैव दैट काइंड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बट देन वी नीड दैट मोर नाउ।
1: यस,
0: गलतियां हो रही है।
1: वी हैड अ कॉलर, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आए हैं। इनफैक्ट हमारे साथ मुंबई से शिखा का ये फोन था, और उनकी यही प्रॉब्लम जो आज हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि शी इज गॉट अ डॉटर हु इज 9 ईयर ओल्ड, और वो ये कह रही थी कि शी इज अ वर्किंग वुमेन, उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी रह रहे हैं साथ में, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप क्योंकि इतने साल 10 साल शादी को भी हो गए हैं तो ठीक ठाक है, पर कोल्ड है। बेटी को ऑलमोस्ट मदर इन लॉ ने बोला बिकॉज शी इज अ वर्किंग वुमेन, एंड अब जब 9 साल की बच्ची हो गई है, देन शी सेज, शिखा सेज कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बच्चा तो मेरे हाथ से चला गया है, क्योंकि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई डॉटर, एंड नाउ आई वॉन्ट टू डेवलप दिस रिलेशनशिप एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड, सडनली शी हैज बिकम सो रूड। मेरे मदर इन लॉ के साथ जो मेरा रिलेशनशिप होता है उसका रिस्पॉन्स मेरी बेटी के साथ मुझे दिखने लगता है, और वो मेरे साथ इतनी कुछ, अब मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई हूँ। शी वॉज लिटरली क्राइंग, यू नो, व्हेन शी कॉल्ड अप एंड शी सेड कि

0: मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा मेरा अपना ही नहीं रहा और नौकरी करना भी मेरी मजबूरी थी क्योंकि यू नो पूरा फाइनेंशियल सब कुछ डिपेंड करता था बाकी सारी चीजें। तो अब मैं क्या करूं, कैसे वो रिलेशनशिप दोबारा डेवलप करूं?
1: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर खुद डिप्रेशन में है मतलब खुद बहुत लो फील कर रहे हैं, दूसरे को हील नहीं कर पाएंगे, दूसरे को प्यार देना है वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि खुद अंदर नफरत भरी हुई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, जो दूसरे को देना चाहते हो वो पहले खुद अपने अंदर भरा हुआ होना चाहिए। अब इनके केस में शायद जो हो रहा है, फर्स्ट फैक्टर इज कि द मदर इन लॉ इज कंट्रोलिंग द चाइल्ड, यू नो दैट समवेयर इन द सबकॉन्शियस दैट इज क्रिएटिंग अ बिगर प्रॉब्लम। यू नो वो एक एलिमेंट जो बीच में आ रहा है कि मेरी बेटी मेरा न सुनने के बजाय उनका सुन रही है।
0: लेकिन बेटी के लिए भी बिल्कुल जायज है कि वो बचपन से जो करता
1: तो वो एक नेचुरल बॉन्डिंग है, तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो वो तो एक नेचुरल बॉन्डिंग थी, लेकिन इनको जो अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपने आप को वो राइट थिंकिंग पैटर्न पे लाना पड़ेगा कि फाइनली शी इज हर ग्रैंड मदर, शी इज डन सो मच फॉर हर, आफ्टर ऑल आई कुड वर्क ओनली बिकॉज शी वॉज देयर, तो मेरा तो मतलब जैसे आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उसने उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश करके आज ये मिसिंग एलिमेंट है और इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं।
0: बट यू नो व्हाट शी सेइंग एक्चुअली कि वो उनकी जो परवरिश है वो उन्होंने अपने बेटों की भी परवरिश कोई बहुत अच्छी नहीं करी। यू नो ना बट दैट्स अगेन शी सेज कि शी वाज इंटेलिजेंट गर्ल, शी सेज कि वो बच्चे को भी जो कर रही है क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, खाने का पीने का पढ़ाने का पूरा तरीका बदल गया है। अब जब मैं उसे अपने बच्चे को अपने हिसाब से करना चाहती हूँ जो कि आज के परिवेश में देखते हुए सही है, तो शी डजंट वांट दैट।
1: शिखा को क्या करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अभी वो शायद सटली सबकॉन्शियसली वो बच्चे को अपनी ग्रैंड मदर से छीनने की कोशिश कर रही होगी। एंड सिंपल बात यह है कि एक नेगेटिव
0: थॉट प्रोसेस
1: एक पॉजिटिव रिजल्ट जेनरेट नहीं कर सकता। अगर हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए उसकी इनपुट भी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव इनपुट दे पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट डाले और पॉजिटिव आउटपुट हो इम्पॉसिबल। तो जहां उनका ये थॉट है वो परवरिश गलत थी, मुझे उसको उससे अब ले लेना है, शी शुड कम अंडर माय कंट्रोल, शी शुड नॉट लिसन टू हर, शी शुड लिसन टू मी, ऑल द थॉट्स आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। तो ऑब्वियसली जब हम नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं इतनी ज्यादा, तो वो बच्चा मेरे करीब आने की बजाय
0: दूर, बहुत दूर हो जाए,
1: और भी दूर, और कहीं ऐसा ना हो कि वो शायद बहुत ज्यादा दूर हो जाए, बिकॉज आई एम सेंडिंग ओनली नेगेटिव एनर्जी।
0: व्हाट शुड
1: नेगेटिव एनर्जी उसको रिपेल करेगी ना, सी नेगेटिव एनर्जी ऑलवेज टेक्स मी अवे फ्रॉम अ पर्सन, एंड इस प्रोसेस में वो अपनी मदर इन लॉ से भी बहुत दूर हो जाएंगी, अपने हस्बैंड से भी हो सकता है कि डिस्टेंस हो जाए, बच्चे से डेफिनेटली डिस्टेंस हो जाएंगे। तो थॉट प्रोसेस को एक एक जो इन्होंने ये थॉट ली इसको थोड़ा सा चेक करें। फर्स्ट मेरी ग्रैंड मतलब मेरी मदर इन लॉ ने जो किया बहुत अच्छा किया, आई एम ग्रेटफुल टू हर, एंड एक्चुअली गो एंड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। दूसरा, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी परवरिश की होगी, उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और आज मेरी बेटी जो है वो उनकी वजह से उस तरह से बनी है। थर्ड शी कैन डू इज गो एंड डिस्कस विद हर कि बेबी विद द चेंजिंग टाइम्स डू यू फील इट इज ओके, क्योंकि इट्स नॉट राइट कि जिसने इतनी मेहनत की थी आप जाके उससे कोई चीज को छीन लो, वो बच्चा भी आपके साथ वो रैपो नहीं बिल्ड करेगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक टीम बनाएं, आप दोनों मिलकर अब उसकी परवरिश करें और वो बच्चे को इतना वो स्नेह दे, इतना प्यार दे, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब मदर एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट एन ऑफिस रिलेशनशिप, इट इज जस्ट वन, शी इज जस्ट वन स्टेप अवे, सो शी शुड टॉक टू हर मदर इन लॉ एंड मिलकर वो जो उनको चेंजेस लाने हैं परवरिश में उनके साथ मिलकर करें, उनसे दूर होकर ना करें, तब वो करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड शी एंजॉय द प्रोसेस एंड ऑल थ्री ऑफ देम will come closer and the way she's doing it right now all three of them are going to go absolutely away and just give lot of love lot of love internally and lot of love internally tab diya jata hai jab koi negative thought nahi hogi hum kehte to hai matlab no mother will say ke I don't love my child lekin ye jo sare negative thoughts hain ye usme ek leakage hai to jitna ye hat jayenge aapka jo pyar hai wo undiluted you know ekdam unadulterated hai absolutely pure and selfless uska result acha nahi hai
0: बिल्कुल। और बहुत यू नो बिकॉज इनकी प्रॉब्लम एक बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन इसको इस तरह से इंटरप्रेट करके आई वॉज लुकिंग फॉर

0: देखा सामने आया कि जिस चीज को उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है और कितना जेन्युइन, किसी भी काउंसलर के पास जाएंगे तो उन्हें भी वो जेन्युइन ही लगेगा, लेकिन वो जो नेगेटिविटी इनके अंदर खुद ही जनरेट,
1: वो खुद ही उसको पॉजिटिव कर लेंगे,
0: कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टर शिवानी, आज एक बार फिर एंगर को हमने, एंगर के आस्पेक्ट्स को लेने की कोशिश की और ये बात क्लियर होती जा रही है कंटिन्यूसली, यू नो, कि हमारे रॉन्ग बिलीव्स जो है वो गलत थॉट्स जनरेट करते हैं, गलत एनर्जी जनरेट करते हैं, एंड नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली रिपेल्स, एंड देन पॉजिटिव थॉट्स विल क्रिएट पॉजिटिव डेस्टिनी। थैंक यू सो मच। और आपको बता दें कि देखिए, जैसे कितने सारे हमारे पास लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी स्वागत करते हैं। और कोशिश हम ये करें हर रोज, जैसा कि सिस्टर शिवानी बता रही है, कि पॉजिटिव थॉट्स को ही जनरेट करने की कोशिश करें। इसके लिए यही जरूरी है कि अपने बिलीव, अपनी मान्यताओं को सही रखें। आप हमें कॉल कैसे कर सकते हैं, फोन कीजिए 9873666555 पर, और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी फिर आपके साथ होगा, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत,

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

जाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग

0: ये सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाले स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM।
1: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं
1: बीसवीं सदी का आरंभ काल भारत में जबरदस्त राजनीतिक चेतना की जागृति का काल था। राजनीतिक चेतना के इस जागरण में जहां हमारे राजनेताओं का हाथ था वहीं पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। गणेश शंकर विद्यार्थी भी ऐसे ही एक पत्रकार थे जिन्होंने अपने समाचार पत्र प्रताप के द्वारा राष्ट्रवादी पत्रकारिता की अलग जगाई थी। कथन और कलम के कर्मयोगी सांप्रदायिक सहिष्णुता के काबा और काशी मानवता के मक्का और मथुरा विद्यार्थी लोकप्रिय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के प्रेरणा स्रोत भी थे। 1913 से 1930 तक का शायद ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन होगा जिसका प्रचार प्रसार और आंशिक नेतृत्व गणेश शंकर विद्यार्थी या उनके अखबार ने न किया हो। उनका मानना था कि हमारे देश में विभिन्न धर्म भाषा जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं, यही हमारी विशेषता भी है और यही हमारी राष्ट्रीयता। अपने 18 साल के अत्यंत सक्रिय जीवन में वे 5 बार जेल गए, कभी आंदोलन में भाग लेने के कारण, कभी लेख लिखने के कारण और कभी उत्तेजनापूर्ण भाषण देने के कारण। जिन क्रांतिकारियों के पास इस

0: स्थायी आमदनी का कोई जरिया नहीं होता, विद्यार्थी उनकी जीविका का जिम्मा उठाते। 29 जनवरी 1931 को उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि जीवन भर अमानुषिकता और असज्जनता के विरुद्ध लड़ता रहा, ईश्वर बल दे ताकि मैं आगे भी लड़ सकूं। बल तो उनमें बहुत था, लेकिन ईश्वर ने उन्हें वक्त नहीं दिया। लिखने के एक माह 25 दिन के बाद 25 मार्च को वे अमानुषिक शक्तियों का शिकार हो गए।
1: क्या बात है काका, आज बड़ी जल्दी जल्दी कहाँ निपटा रहे हैं?
2: हाँ, आज वो कॉलेज के लड़के आने वाले ना, और भाई उनके साथ बैठ जाऊंगा तो फिर समय का पता ही नहीं चलेगा।
1: अरे काका, आप भी कहाँ इन कॉलेज के लड़कों में लगे रहते हैं?
2: अरे भाई, हफ्ते 10 दिन में एक आध बार आते हैं तो उनके साथ कुछ अच्छी बातें कर लेता हूँ, मुझे भी कुछ सुनने सुनाने का मौका मिल जाता है।
1: लीजिए, आ गए आपके सुनने सुनाने वाले।
2: हाँ हाँ, तू चल चल चल चल, तू भट्टी देख और छोटू से कहना बाहर वाले ग्राहकों का ध्यान रखे।
3: नमस्कार काका।
2: नमस्कार बेटा, नमस्कार, क्या हाल है?
3: सब बढ़िया है काका, और अब आप चाय पिलवा देंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा।
2: हाँ बिल्कुल, अभी लो। अरे राजू बेटा, जरा चाय लगा दे इधर। अरे रेडी रंजन भाई, कुर्ते और झोले का राज क्या है?
3: काका, असल में अपने रंजन भाई को पत्रकार बनने की धुन सवार हो गई है, इसलिए ये आजकल कुर्ता और झोले में रखी किताबों के साथ ही मिलते हैं।
2: चलो अच्छा ही है, पर भाई माफ करो, पत्रकार बनने के लिए खादी का कुर्ता नहीं, सिद्धांत जरूरी होते हैं, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी के थे।
4: गणेश शंकर विद्यार्थी?
2: अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने आजादी के लिए कलम को ही अपना हथियार बनाया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने हर गलत बात को पाठकों के सामने रखा।
4: अच्छा, तो काका आज इन्हीं के बारे में बताइए ना।
2: चलो ठीक है। हाँ, तो कहाँ से शुरू करूँ? चलो जन्म से ही बताता हूँ। गणेश शंकर का जन्म इलाहाबाद में हुआ। बचपन से ही वो बहुत तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उनके पिताजी का तबादला जब मुंगावली से भेलसा यानी आज के विदिशा में हुआ, तो बालक गणेश की उम्र 10-11 वर्ष की रही होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही उन्हें पढ़ने पढ़ाने का शौक लग चुका था।
5: अरे ये क्या पढ़ रहा है गणेश?
6: ये अखबार है, मैं बड़गवासी पढ़ रहा हूँ, तुम भी कुछ पढ़ोगे? मेरे पास एक दूसरा अखबार भी है, ये लो पढ़ो, भारत मित्र।
5: अरे चल भी ना, अभी खेलते हैं, तू तो बस जब देखो तब पढ़ता ही रहता है।
6: अरे नहीं, तुम लोग खेलो, मुझे तो इसकी सारी टिप्पणी पढ़नी है।
5: अच्छा ये बता गणेश, इतना पढ़ता क्यों है? क्या तुझे बहुत बड़ा बनना है?
6: नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो बस पढ़ना है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।
5: अच्छा ठीक है, तू पढ़, मैं तो चला खेलने।
6: ठीक है, कल विद्यालय में मिलेंगे। कौन?
7: डाकिया।
6: लो बेटा, पत्र है गणेश शंकर के नाम से।
5: जी
6: लाइए। अरे ये तो मैंने ही डाला था।
5: तुमने?
6: अच्छा, तभी ये बैरंग है।
5: बैरंग?
6: पर मैंने तो टिकट लगाया था।
5: पर बेटा, पोस्ट कार्ड का टिकट काट कर किसी दूसरे पर क्यों लगाया?
6: उससे क्या, टिकट तो टिकट है, मैं इसे बैरंग नहीं मानता।
5: अरे पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम पत्र बांटने का है बस, और ये पत्र बैरंग है।
6: ठीक है, मैं डाक विभाग जाकर पता लगा लूंगा, आप जाइए।
3: फिर क्या हुआ काका?
2: फिर क्या बेटा, बालक गणेश ने उस बात के लिए ऊपर तक लिखा पड़ी की और आखिर डाक विभाग को अपनी गलती माननी पड़ी।
3: पाप रे, उस उम्र में इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी मेहनत।
2: छोटी सी बात नहीं बेटा, गणेश बचपन से ही अन्याय के खिलाफ जमकर लड़ने वालों में से थे।

अरे ये किताब तो मैंने कभी दफ्तर में देखी नहीं। चलो समय बिताने के लिए मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ।

0: ये तुम क्या कर रहे हो गणेश? है मैंने तुम्हें कोई काम दिया था और तुम यहाँ बैठकर किताबें पढ़ रहे हो।
1: सर मैंने रद्दी करेंसी में आग लगा दी है।
0: और क्या, फिर यहाँ किताब पढ़कर अपना शौक पूरा कर रहे हो?
1: लेकिन किताब पढ़ना तो कोई बुरी बात नहीं।
0: अगर किताबें ही पढ़ना है तो घर में रहकर पढ़ो, नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं।
1: जी जैसा आप ठीक समझे।
0: क्या?
1: जी हाँ, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता, आप तक मेरा इस्तीफा पहुंच जाएगा। नमस्कार।
2: वाह, पढ़ने के लिए नौकरी छोड़ दी।
3: हाँ, ये पहली नौकरी थी, दूसरी का भी लगभग ऐसा ही हाल हुआ।
2: कैसे?
3: असल में उन दिनों कर्मयोगी नाम की पत्रिका आती थी जिसमें क्रांतिकारी लेखों की भरमार होती थी, इसलिए पढ़ने के शौकीन उसे छिपकर पढ़ते थे, लेकिन गणेश तो गणेश थे।
1: क्या बात, कर्मयोगी, क्या संपाद की है आज का कर्मयोगी का ये अंक, ज्वलत लेखों से भरा हुआ है। और पंडित जी ने तो सचमुच कमाल कर दिया।
4: गणेश शंकर, आप ये क्या पढ़ रहे हैं विद्यालय में, कर्मयोगी? अरे आप जैसे अध्यापक को ये शोभा नहीं देता।
1: क्षमा करें प्रधान अध्यापक जी, ये कोई व्यसन नहीं जिससे शाला का वातावरण दूषित हो, ये तो पुस्तक है जिससे विचारों को शुद्धता प्राप्त होती है।
4: देखिए, मुझे आपके निजी विचारों से मतलब नहीं, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की पुस्तक का शाला के विद्यार्थियों पर गलत असर होगा, अतः आप अगली बार ऐसी गलती ना करें।
1: महोदय, यदि आपको लगता है कि मेरे ये पुस्तक पढ़ने से छात्रों के चरित्र पर बुरा असर पड़ता है तो मेरे यहाँ काम करने का कोई औचित्य ही नहीं। आप मेरी जगह किसी ऐसे को रख लें जो कर्मयोगी ना पढ़ता हो।
4: पर आप।
1: नमस्कार, जय हिंद।
5: गणेश, तुम्हें पिछली नौकरी छोड़े काफी समय हो चला है, क्या कहीं और कोशिश नहीं की?
1: क्या फायदा मित्र, नौकरी ढूंढू भी तो क्यों, कहीं अखबार पढ़ने पर पाबंदी है तो कहीं देश हित में जारी पत्रिका पर। अब नौकरी के लिए मैं भला पढ़ने पढ़ाने को तो नहीं तज सकता।
5: हाँ ये तो है गणेश, एक थानेदार मेरे परिचित हैं, उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें उनके पुत्र को घर पर पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है। कहो तो बात करूं भाई, यहाँ तो बात ही पढ़ने पढ़ाने की है, क्या कहते हो?
1: तुमने कल के सवाल हल कर लिए?
6: नहीं।
1: क्यों?
6: मैं खेलने चला गया था।
1: वो तो ठीक है, पर खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है।
6: मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है।
1: क्या?
6: जी, मेरा दिल कलम किताब में नहीं लगता।
1: अच्छा, ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
7: अरे आइए आइए मास्टर साहब, कहिए कैसी चल रही है पढ़ाई? मेरा बेटा कहीं आपको तंग तो नहीं करता?
1: जी नहीं, तंग तो नहीं, पर
7: क्या, कहिए, हिचकिचाइए नहीं।
1: जी बात ऐसी है कि आपके लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता और इसलिए आपके सुपुत्र को पढ़ाने का पैसा मैं मुफ्त में लेना नहीं चाहता, इसलिए।
7: वाह
1: जी,
7: जिस अध्यापक के विचार इतने अच्छे हों उसका मेरे लड़के के पास बैठे रहना भी हितकर ही होगा। आप कृपया आते रहें, मुझे आशा है आपके सानिध्य में उसे रास्ता मिल ही जाएगा।
8: भाई वाह, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की ऐसी मिसाल कहाँ मिलेगी?
3: हाँ, पर अभी तो जैसे गणेश शंकर की असल जिंदगी शुरू हुई। उन्हें तो काम की चिंता थी जो वो हमेशा से करना चाहते थे। हाँ, वे अपने मनपसंद की पत्र पत्रिकाओं में कर्मयोगी और अभ्युदय के लिए लिखने लगे और धीरे धीरे उनके लेखन की चर्चा होने लगी।
9: आइए आइए डॉक्टर साहब, और बताइए क्या नया ताजा लिख रहे हैं?
10: अरे मैं कहाँ, आजकल तो वो नया लड़का लिख रहा है, गणेश शंकर, देखा नहीं क्या उलझुल जुलझुल लिखता रहता है।
9: हाँ, दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम की उपस्थिति के रहते बड़ौदा नरेश का आत्मसम्मान भरा व्यवहार उसे गलत नहीं लगता
4: और सारी दुनिया से परे वो उसे सही ठहरा रहा है।
10: अरे नया खून है, एक दो उबाल में ठंडा हो जाएगा।
4: लेकिन हैरत की बात तो ये है डॉक्टर साहब कि आलोचना के दौर में कुछ बड़े लोगों का समर्थन भी उसे मिल रहा है। साहित्य व लेखन के कुछ बड़े नामों को उसके लेखन में निर्भीकता और पारदर्शिता दिखाई दे रही है।
7: अरे हाँ साहब, कल ही मैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिलने सरस्वती के दफ्तर गया था, तो वहाँ नारायण प्रसाद जी बैठे थे और बातें चल रही थी गणेश शंकर विद्यार्थी की।
5: कहिए पंडित जी, कैसा लगा बालक का ये लेख?
11: सचमुच ही कमाल लिखा है। इसके लेखन में सलीका भी है और सच कहने का साहस भी। क्या आप इसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं?
5: हाँ हाँ, यदि कोई काम हो तो कहिए।
11: असल में हमें सरस्वती के संपादन के लिए एक सहायक की आवश्यकता है।
5: अरे वाह, मैं आज ही उसे आपके पास भेजता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके सानिध्य में काम करके उसे बड़ी खुशी होगी। चलिए मैं चलता हूँ।
11: अरे बैठिए तो।
5: नहीं पंडित जी, मैं उसे भेजता हूँ। नमस्कार।
11: नमस्कार
12: जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिलना है।
11: आइए, मैं ही हूँ। आप कौन?
12: वो आपने बुलाया था, मैं गणेश शंकर विद्यार्थी।
11: ओहो, तो तुम हो, मिलकर खुशी हुई। बैठो। अरे बैठो ना, सचमुच बहुत अच्छा लिख रहे हो।
12: धन्यवाद, मेरा सौभाग्य जो आपको मेरा लिखा पसंद आया। मैं तो ना जाने कब से आपके लेखन का भक्त रहा हूं। आप सच में सरस्वती के माध्यम से साहित्य की सच्ची सेवा कर रहे हैं।
11: भाई तो फिर तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ।
12: जी
11: हाँ भाई, बात दरअसल ऐसी है कि मुझे सरस्वती के संपादन के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। यदि तुम चाहो तो इस पद पर कार्य कर सकते हो। 25 रुपए माहवार मिलेंगे। कहो, क्या कहते हो?
12: ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे विद्वान की छत्र छाया में काम करने का सुअवसर मिला है। मैं इस कृपा के लिए आपका आभारी हूँ।
11: अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा गणेश, तुम ये बताओ कि गणेश शंकर तो तुम्हारा नाम हुआ, पर ये विद्यार्थी क्या है?
12: छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा मानना है कि हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारे ज्ञान का भंडार कभी पूरा नहीं होता। हम वास्तव में कभी आचार्य नहीं होते, विद्यार्थी बने रहते हैं। और मैं सदैव विद्यार्थी ही बना रहना चाहता हूं, इसलिए अपने नाम के आगे विद्यार्थी लिखता हूं। यही मेरा उपनाम भी है और पहचान भी।
11: तुमने तो सच में आनंदित कर दिया। देखता हूं सीखने की इस लगन के चलते तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे।
10: दिल से ही दुआ दी थी पंडित जी ने, और शायद इसीलिए गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्य और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने लग गए। सरस्वती और फिर अभ्युदय में काम करने के बाद एक समय ऐसा

0: भैये देख पड़ा था आपका क्या लिखा है?
1: अखबार नहीं सच्चाई का आईना है।
2: वाह रमेश।

0: मैं ऐसा तो अपना धंधा ही बंद हो जाएगा।
1: साहित्य और साहस का संगम है प्रताप, प्रताप गणेश का।

0: समझे। इतनी रात गए कौन हो सकता है?
1: दरवाजा खोलिए, मैं डीआईजी हूँ।
0: इस समय कहिए क्या काम है?
1: काम नहीं, बस ऐसे ही हाल चाल पूछने चला आया।
0: साफ साफ बताएं क्या बात है?
1: विद्यार्थी जी, आपका प्रताप जाहिर बगाए सरकार और कुछ बड़े लोगों पर वार करता रहा है, लिहाजा मजबूरन मुझे पूछताछ के लिए यहाँ आना पड़ा। मैं प्रेस की तलाशी लेना चाहता हूँ,
0: लेकिन
1: अभी इसी वक्त।
0: चलिए
1: आप आगे चलिए।

0: Egypt.
1: A table. Niche, taras. Kagaz hi kagaz. Chalo. Inme to kuch nahi. Vidyarthi di, un almariyon ki chabi kahan hai?
2: सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, अतः आपको इस कुर्सी पर बैठना शोभा नहीं देता।
1: ठीक है, तो आप अलग

0: और उस रोज दंगे की आग को बुझाने निकले विद्यार्थी जी खुद ही सरे राह दंगों की बलि चल गए।
1: तो क्या किसी पर कार्यवाही नहीं हुई?
0: भीड़ का चेहरा नहीं होता बेटा, बस एक दौर चला श्रद्धांजलियों का। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सहित तमाम लोगों ने उनकी मौत को देश के लिए, साहित्य जगत के लिए एक बड़ा सदमा बताया।
1: सच में जन्म से लेकर मृत्यु तक सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे वो। काका, अपने आप को विद्यार्थी कहने वाले बड़े बड़ों को शिक्षा दे गए।
2: हाँ, न सिर्फ प्रताप के जरिए बल्कि हर एक काम के जरिए उन्होंने देश का प्रताप बढ़ाया। काका, मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि यदि मैं पत्रकार बना तो मैं भी जिंदगी भर विद्यार्थी बनकर रहूंगा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमको अभी से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो, अब बातें बातें बहुत हो गई, मैं जरा काम काज देख लेता हूँ। है
1: बिल्कुल काका, हम लोग भी चलते हैं, बहुत देर हो गई है।
2: अच्छा काका,
0: अच्छा काका, नमस्कार।
3: अरे ओ राजू,
4: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणे आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
1: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
1: थैंक यू सो मच
2: सिस्टर। लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि खुद को स्वर्ग बनाना है, अपने अंदर स्वर्ग बनाना है, वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, किस किस से अब चिढ़ते रहेंगे, किस किस के, और फाइनली एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा था कि लोगों के बारे में सोच सोच के उनके बारे में उनके मिस्टेक्स या उनकी नेचर और जो उनसे डिस्टर्ब होते होते होते होते होते उनको जवाब देने में उस तरह से रिएक्ट करने में मैं भी उन्हीं की तरह बनता जा रहा हूँ।
1: How does change reach the whole world? होता ही ऐसे है, एक व्यक्ति कुछ करेगा, उसको देख एक और करेगा, फिर एक और करेगा, एंड वेरी सून पूरा समाज ऐसा करेगा। अब इसका ऑपोजिट करते हैं, हम फिर से वापस अपनी ओरिजिनलिटी पे जाते हैं, हमें देख एक और जाएगा और एक और जाएगा और एक और जाएगा।
2: पॉसिबल है ये?
1: तो उस साइड पॉसिबल था तो ये साइड क्यों पॉसिबल नहीं है?
2: अच्छे की तरफ जल्दी नहीं आते लोग,
1: जाते हैं।
2: एक बात बताइए,
1: क्योंकि
2: कोई मेरे से जब बात नहीं करे अच्छी तरह से तो मैं दूसरे दिन उससे अच्छी तरह बात नहीं करता हूँ, बड़ा इजी है। कोई बहुत अच्छा हो तो मैं वैसा अच्छापन लेके उतना मैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता हूँ,
1: थोड़ा सा अच्छा हो जाते हैं ना, हो गया कमाल,
2: हो गई
1: वंडरफुल, यही तो करना है। आपने कहा अगर कोई मेरे से बहुत अच्छे से करे तो मैं थोड़ा

0: अच्छा हो जाता हूँ, हो गया, वही तो करना है।
1: एक पॉइंट ये अच्छा लगा और दूसरा ये लगा, जैसे मुझे अभी चलते चलते बात करते करते याद आया कि मैंने किसी को ऐसे करा तो उसने इतना सा कर दिया, तो वो तक मुझे हर्ट होता था। मैंने बोला अच्छा नेक्स्ट टाइम, हम इतना कर रहे हैं और ये ऐसे करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो मिलते हैं देखते हैं, मैं वेट करता रहता कब वो करेंगे और मैं ऐसे करूं। तो इमेजिन करो कितना अपने आपका टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और
0: एनर्जी वेस्ट, अपनी पावर वेस्ट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी ओरिजिनलिटी से हम खुद ही खुद को दूर करते गए।
1: क्योंकि मेरा स्ट्रांग बिलीफ था ना, एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस मीन्स ओ वीक मैन। बदला लो, मारो उसको, जवाब दो, खड़े रहो, फाइट।
0: सोशल कंडीशनिंग हमें करवाते है ना, एंड ये एक इम्पोर्टेंट और चीज, जब हम एक संस्कार में अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्ट करेंगे तो ओवरऑल आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्ट हो गई, तो बाकी छह गुण भी हम शिफ्ट हो गए।
1: मतलब नहीं समझा।
0: सेवन ओरिजिनल क्वालिटीज है ना आत्मा की,
1: लव, पीस,
0: लव, पीस, हैप्पीनेस, पावर, प्योरिटी, विजडम, ये आत्मा की सेवन क्वालिटीज है ना। अगर हमने किसी एक को कॉपी किया, सपोज किसी ने रूडली बात की तो हमने गुस्सा किया, एक कॉपी किया, मतलब हम पीस की क्वालिटी से हटे। लेकिन आत्मा ही अपनी ओरिजिनलिटी से हटी तो सिर्फ पीस की क्वालिटी में नहीं वो हटेगी, उसकी थॉट्स गलत चली अंदर तो वो प्योरिटी की क्वालिटी से हटी, उसके प्रति, सामने वाले के प्रति गलत थॉट क्रिएट की, वो अपने लव की क्वालिटी से हटी, वो आत्मा दूसरी आत्मा की वजह से डिस्टर्ब हुई तो अपनी पावर की क्वालिटी से हटी, और ये सब चीजें कर रही है तो अपनी विजडम की क्वालिटी से तो हट ही गई है वो पूरी तरह से।
1: डू यू नो एनी वन ऑन अर्थ जो कि डिस्टर्ब नहीं होता, हर्ट नहीं होता किसी बात पे?
0: आप?
1: मैं?
0: हाँ,
1: हर्ट होता हूँ
0: हर बात में, नहीं होते, सिंपल,
1: हर एक के साथ नहीं होता, हर बार हर एक के साथ नहीं होते।
0: इसका मतलब कुछ बार कुछ लोगों के साथ हम स्टेबल रहते हैं, इसका मतलब स्टेबिलिटी हमारा संस्कार है?
1: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
0: आप कभी भी किसी के भी साथ एक भी बार स्टेबल नहीं रहते?
1: रहता हूँ जहाँ नहीं बोल पाता, जैसे पोजीशन में कोई बड़ा हो, उम्र में कोई बड़ा हो।
0: चलो ठीक है, उसी भी रीजन से रहे तो ना,
1: जिससे बहुत ज्यादा प्यार हो
0: तो बस हो गया, जिससे बहुत ज्यादा प्यार हो, मीन्स ऑल दैट आई नीड इज द क्वालिटी ऑफ लव, पर रहते हैं ना?
1: नहीं, उल्टा भी तो होता है, जैसे लोग बोलते हैं ना, जिससे प्यार करते हैं उससे ही हर्ट होते हैं, दूसरा कोई भी बोले आई डोंट केयर।
0: किसी परिस्थिति में किसी के साथ स्टेबल रहते हैं या नहीं रहते?
1: एक आध बार रहा
0: पूरे जीवन में, अभी तक एक आध बार स्टेबल रहे होंगे? नहीं, सारा दिन में मैं देखती हूँ इतनी बार।
1: हाँ वैसे देखो, एज ए प्रोफेशनल मैंने कम से कम 300 डायरेक्टर के साथ काम किया होगा, कई बार कितने डायरेक्टर क्या क्या बोलते, क्या कहते, मैं हाँ जी ये सर करके निकल जाता था।
0: किया आज सिर्फ सारा दिन में चेक करना, कितनी सारी बातों को हम सहन कर लेते हैं, कितनी सारी बातों में हम चुप हो जाते हैं, कितनी सारी बातों में हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया, हम सब करते हैं। आप सारा दिन में कितनी बार?
1: थोड़े दिन पहले किसी ने मेरी ब्रांड न्यू शर्ट एक लड़के ने वॉशिंग मशीन में उसको दिया था, मैंने धो के ला, वो पूरा बुल साफ फट गई पूरी। ठीक है कोई बात नहीं, तो वो रोने लग गया, आप मुझे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे?
0: तो किया,
1: या एक एग्जांपल में
0: लगा, सिचुएशनल ऐसे कोई बात है ना, कभी कोई आपसे गलत तरह से भी बात करेगा ना सारा दिन में, तो आप देखना आप छोड़ देंगे उस बात।
1: बड़ी बात से गुस्सा नहीं आता मुझे,
0: छोटी बात,
1: छोटी छोटी मीन जी, छोटे छोटे क्वालिटी ऑफ थिंकिंग से आता है जो इंसान वो माइंड गेम करना।
0: क्वालिटी ऑफ थिंकिंग किसकी?
1: अगले बंदे की। हाँ,
0: तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को छोटा क्यों बनाते हैं उस टाइम?
1: तो मेरा रिएक्शन नेचुरल ऐसा है,
0: मेरा रिएक्शन मैं चूज करता हूँ,
1: बैठ के चूज करता हूँ। अगर आप मुझे बोलते हैं
0: आज चूज करेंगे, आज चूज करेंगे कि सामने वाले की अगर मुझे लगता है कि वो थिंकिंग छोटी है तो मैं अपनी थिंकिंग को बहुत ऊंचा बना लेता हूँ। मैं क्यों अपनी थिंकिंग को छोटा कर रहा हूँ? ये छोटी थिंकिंग नहीं है। अगर अगर मैं विश नहीं करूँ आपको,
1: हाँ,
0: तो मेरी थिंकिंग छोटी, आप भी ऊपर से विश नहीं करे तो आपकी भी थिंकिंग छोटी, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है आपको?
1: मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ
0: करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो हमारे लिए

0: कंफर्टेबल है वो करते जाओ। वो हम आगे देखेंगे कि हम सप्रेस नहीं करेंगे, हम सफोकेट नहीं होंगे, हम ही अंदर नहीं घुट जाएंगे। दैट विल सी व्हाट वी हैव टू डू, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि ये हम कर सकते हैं।
1: क्या नहीं कर सकते हैं चाहो तो,
0: क्या नहीं कर सकते हैं चाहो तो, ब्यूटीफुल। तो मतलब हम कर सकते हैं,
1: चाहना ही नहीं है ना, बदला लेने की भावना रहती है ना, ठीक है इसने ऐसा किया।
0: अब हमने अंडरस्टैंड किया उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरा हो रहा है, मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल। क्यों हम आज कह रहे हैं खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, ये वाला तरीका यूज करते करते तो खाली हुए ना अंदर।
1: मन बुद्धि को मुझको बचपन से ट्रेन किया गया कि एक मारे चार मारो, डरना नहीं, तो फिर क्या करेंगे?
0: तो आज फिर से ट्रेन करेंगे, जब उस मन ने तब कहना माना था तो आज भी तो कहना मानेगा।
1: अभी तो ग्रुप पक्का हो गया ना आपकी भाषा में, संस्कार पक्के हो गए, हैबिट हो गई है।
0: तो हमने बनाया था, हम फिर से नया बना देंगे। संस्कार बनाना बहुत इजी है, मन को चेंज करना भी बहुत इजी है।
1: नहीं नहीं
0: नो, बहुत इजी है, प्रोवाइडेड आई वांट टू डू इट। द मिनट आई वांट टू डू इट, इट्स गोइंग टू बिगिन एंड इट्स ऑलरेडी बिगन फॉर यू, यू नो दैट।
1: नहीं मेरा तो है, लेकिन मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ,
0: हाँ?
1: मेरी पुरानी बातों का और थोड़ा सा उसका अभी, उसका मतलब उसकी दो मटकी है अभी, ऐसा नहीं कि पूरा हाथी दिखा
0: नहीं, एक मिनट, पुरानी बातों की अभी सिर्फ दो में अटकी है।
1: हाँ जी,
0: तो बाकी कहाँ गया?
1: बाकी साफ होता गया।
0: तो जब इतना सारा साफ होता गया तो डूब को जाने में कितना टाइम लगेगा?
1: वो डिस्टर्ब करती है मुझे।
0: इम्पोर्टेंट इज मैंने इतना सारा साफ किया तो ये भी तो साफ हो जाएगा।
1: नहीं, मुझे ये डर है कि वो डूब के साथ वापस न आ जाए ना पीछे।
0: हम अटेंशन रखते हैं ना हर रोज कॉन्शियस, इसीलिए डेली स्टडी, डेली मेडिटेशन। एक टेबल है घर पे, उसको रोज साफ करना है। एक दिन हम घर में एंटर किए, हमने देखा वो टेबल तो बहुत सालों से साफ ही नहीं हुई है, तो उसके ऊपर धूल धूल धूल, इतनी लेयर्स बनी हुई थी। ठीक है, अब हम उस घर में रहने लगे तो ऑब्वियसली हम उस टेबल को रोज साफ करेंगे। तो अब क्या होता है, हम पहले दिन ही आके हमने बहुत सारी धूल की लेयर तो ऐसे ही उड़ा दी, तो फर्स्ट वाइप में बहुत सारी धूल तो फर्स्ट वाइप में मिट जाती है। फिर उसके नीचे रह जाते हैं छोटे छोटे छोटे छोटे मार्क्स, जो ऐसे फर्स्ट वाइप में नहीं मिटते, जिनके ऊपर ना थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ता है अच्छे से। लेकिन साथ साथ ये इम्पोर्टेंट होता है कि रोज एक बार कपड़ा जरूर मारना है, जिस टेबल पे रोज कपड़ा मारेंगे अब तो वो साफ ही रहेगी ना, देयर इज नो चांस कि वो इतनी सारी लेयर्स ऑफ धूल वापस आ जाएगी उसके ऊपर, वो तो अब नहीं हो सकता,
1: बहुत मिनिमम आएगी और वो साफ करते रहेंगे तो निकल भी जाएगी।
0: और धीरे धीरे तो हमें अभ्यास हो जाएगा, धूल आई साफ, धूल आई साफ। यू नो कुछ लोग देखो कितने क्लीन होते हैं, हर थोड़ी देर के बाद आके साफ करते हैं, ये नहीं करते कि दिन में एक ही बार साफ करेंगे।
1: रेस्टोरेंट्स में होता है, होटल्स में,
0: हर थोड़ी देर बाद साफ।
1: एक आदमी खा के उठा साफ, दूसरा आदमी खा के उठा साफ,
0: बस सिंपल है। एक को मिले उसके बाद साफ, किसी ने कुछ कहा उसके बाद साफ।
1: ये इतना अच्छा, इमेजिन एक्टर आई कैन इमेजिन, खाने की टेबल पे वो डोसा इडली सांभर खाया, लड़का आया साफ, दूसरा फिर आया कस्टमर आया साफ, ऐसी हर एक।
0: मैं आई, विश नहीं किया साफ करो, फिर मैं आई, ठीक से बात नहीं की उसके बाद साफ करो,
1: ये मुझे
0: फिर उसके बाद कोई और आया उसने तो गलत ही बोल दिया, साफ करो, साफ करते जाओ करते।
1: अच्छा देखो, ये जो रेस्टोरेंट में बॉयज सर्व करते हैं, वेटर्स होते हैं, लड़के होते हैं, वो साफ करके चले, दे डोंट इवन केयर वो खाया कौन आया था, कब गया था, अपना पैसा देके निकल भी गया।
0: उनका रोल है,
1: उसका रोल है सिर्फ साफ रखना।
0: मेरा रोल है सिर्फ अपने आप को साफ रखना, कौन आया था, क्यों उसने वो खाया था, और क्यों उसने खाते खाते गिराया भी था, ठीक से निकाल सकता था वो,
1: आधा छोड़ के भी गया, जूठा छोड़ा,
0: सोचो
1: पैसा वेस्ट किया, इतना सब कहाँ सोचते,
0: सब क्यों
1: उठाया प्लेट फेंका निकला।
0: अपना रोल, अपना रोल, हम तो यही कर रहे हैं आज, वो आया क्यों, आके फिर ऐसे खाया क्यों, फिर ऐसे बोला क्यों।
1: बट ये लड़का, अगर डीप थिंकिंग करो, जो साफ करता है टेबल को, ही मस्ट बी सेइंग ना, कम वॉट में कोई चैलेंज हो, आधा छोड़े, जूठा छोड़े, ज्यादा मंगाए, कांच तोड़े, आई डोंट केयर, माई जॉब इज जस्ट टू क्लीन। कोई भी आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कैसा भी आ जाए,
0: एंड वो टाइम वेस्ट ही नहीं कर सकता उन लोगों के बारे में सोचने में,
1: क्योंकि उसको फिर रिजर्व रखना है।
0: हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अब दूसरे

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

महाराष्ट्र तेरा, वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास तेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भोचाल है।

मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। एक दिल हम, एक लौ हम, एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे, एक मगर तस्वीर है। जो हमें बांधे वो धागा है, नहीं जंजीर है।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है एकाग्रता व मौन में निकट संबंध। जैसा कि हम सभी देखते हैं, एकाग्रता व मौन में निकट का संबंध है। किसी कार्य में जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति मौन में गहरा उतरता जाता है। कार्य के प्रति लगन, निष्ठा, एकाग्रता एवं मौन से कार्य कम समय पर पूरा हो जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध जैन साहित्यकार टोडरमल उन्हीं अपना प्रसिद्ध ग्रंथ मोक्ष मार्ग लिख रहे थे। ये तीन होता क्या है कि भोजन करते समय वह अपनी माँ से बोली, माँ लगता है आज आप भोजन में नमक डालना भूल गई हो। तो माँ जो है वो मुस्कुराई और बोली, बेटा लगता है आज दो दिन अपना ग्रंथ पूरा कर लिया है। टोडरमल चौंक गया और पूछा, साथ चकित तो होकर कहा कि माँ, हाँ माँ, मेरा ग्रंथ आज पूरा हो गया है, लेकिन आपको इस बात का पता कैसे चला? माँ ने कहा कि नमक तो मैं तेरे खाने में 6 माह से नहीं डाल रही थी, लेकिन उसका अभाव तुम्हें आज पहली बार अनुभव हुआ, क्योंकि तुम आज ग्रंथ लिखन में धारित मौन व लगन एकाग्रता से बाहर आ गए हो। इससे मैंने अनुमान लगा लिया। तो आपने देखा, माँ ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को कैसे पहचान गया कि आज इसने अपने कार्य को पूरा कर लिया है। तो इसी तरह हम देखते हैं एकाग्रता की एक मिसाल और है स्पेस एक्स अंतरिक्ष अभियान के संस्थापक जो एक है 20 लाख कार के जो कंपनी के मालिक है एलन मस्क, उनका भी यही है कि उसे बचपन में पुस्तकों के अध्ययन का शौक था। वो पुस्तक में इतना एकाग्र हो जाते थे।

कि उसे माँ के पुकारने का भी पता नहीं चलता था। उसकी माँ को यह लगने लगा कि मेरे बेटे के कान खराब है, क्योंकि निकट से पुकारने पर भी उसे मेरी आवाज जो है वो सुनाई नहीं पड़ती है। उसने अपने पुत्र के कान का ऑपरेशन करा डाला, परंतु बात नहीं बनी। माँ को बाद में यह समझ में आ गया कि मेरा पुत्र एकाग्रता की पराकाष्ठा रखता है, जिससे वह अपने कार्य में इतना मशगूल हो गया है कि उसे आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देता। छात्र जीवन में एक बार इलन मस्क स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ रहा था। सड़क से एक बाराती जो है वो बाराती बैंड बजाते हुए वहां से गुजर रहे थे। थोड़ी देर में एक व्यक्ति वहीं पर आया और वहां पर आकर किलन से पूछा कि बैंड पार्टी इधर से जा चुकी है क्या? किलन ने कहा कि मैं पढ़ रहा था, अतः कौन आया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी होती है एकाग्रता। एकाग्रता जो है मौन के गर्भ से ही पैदा होती है। तो आपने देखा, एकाग्रता अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो वो एकाग्रचित होकर ही हर कार्य को संपन्न करता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है एकाग्रता व मन में निकट संबंध। यह देखा गया है कि जिसकी जीवन में मौन व पवित्रता की जितनी प्रधानता होती है, उसे वर्तमान में ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से चल रहे जो कोई ऐश्वर्य कार्य का बोध उतनी ही सहजता से हो जाता है। मौन व पवित्रता अमीरों के बजाय गरीबों में ज्यादा है, अतः वे ईश्वर के समीप सहजता से आ जाते हैं। मौन जो है ज्ञान मन चिंतन से गहराता है और तन मन धन की पवित्रता से ईश्वर से योग युक्त होना सहज हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं गणेश जी की एकाग्रता, यहाँ पर देखते हैं यादगार है, ग्रंथों में वर्णन आता है कि वैदिक ज्ञान के विस्तार के बाद महर्षि वेदव्यास ने 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत को लिपिबद्ध करने का संकल्प किया। कहा जाता है कि वह धारा प्रवाह श्लोकों का उच्चारण करते थे और गणेश जी की एकाग्र होकर उसे लिपिबद्ध करते थे। गणेश जी उसे एकाग्र होकर लिपिबद्ध करते थे। कार्य पूरा होने पर महर्षि ने गणेश जी से कहा, महाभारत आपकी लेखनी से प्रस्तुत ग्रंथ है, मैंने तो केवल शब्दों की सृष्टि की है, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। गणेश जी ने कहा, प्रत्युत्तर उन्होंने दिया कि महर्षि, मैं इस कार्य में ये श्रेय का पात्र नहीं हूँ, आप तो ज्ञान की साक्षात मूर्ति और शब्द ब्रह्मा के साक्षात कोश ही। महर्षि ने देखा था कि लेखन के दौरान गणेश जी पूरे समय पूरी तरह से मौन थे, अतः उन्होंने प्रश्न किया, गणनायक मैं आपके वाक संयम व मौन को देखकर हतप्रभ था, कृपया मौन के महत्व से मुझे अवगत कराए। हम इसकी आप कृपा करें कि आखिर मौन क्या है। इस पर गणेश जी ने कहा, इंद्रियों का दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, दीर्घायु व ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इंद्रियां संयम का

aroma that walks in you. Good. To hear. Father, we need to see. Any injury you got in him, sutter, ujata hai. Adhik murni se aksar. Angar, hum jo hai wo avanchit shabd mukh se nikalte hain. Isse raag dvesh, irsha, jaise dugun banate hain. Atah, ek ek shabd vichar karke hi bolna chahiye. Is tattva gyan se maharshi vedvyas फूल की धूप थी। बाप ने देखा कि महर्षि वेदव्यास जो इतने बड़े लेखक थे, उन्होंने भी गणेश जी के मन से इतनी प्रभावित हुए कि उनकी एकाग्रता के बारे में जानकर वो जो है वो फूल की धूप थे। तो ये है मौन व्रत। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है मौन जो है एकाग्रता व मौन में निकट संबंध। तो हम देखते हैं कि दर्शन जो है आत्मा करती है, किस चीज की? करोड़ों सुनते हैं परंतु कोई कोई सुन पाता है, क्योंकि सुनना एक बात है और सुन लेना बिल्कुल दूसरी बात है। सुनना अर्थात शब्दों को प्राप्त करना, सुन लेना अर्थात अभिप्राय यही ज्ञान को प्राप्त करना, उस पर अमल करना। सुनना क्रिया है और सुन लेना क्रियान्वयन है। मंदिर में करोड़ों भक्त आते हैं आरती गाने और प्रवचन सुनने को क्या कहते हैं, क्रिया करते हैं, परंतु कोई कोई ही आरती के भाव में एक कर भाव विभोर होते हैं और प्रवचन से स्वपरिवर्तित होते हैं। सुन लेना अर्थात समझ लेना, इसे कर्म में लाकर लाभान्वित होना। देखा जाए तो भक्तों के द्वारा मंदिर में इष्ट देव को मात्र देखा ही जाता है। बिरला ही कोई भक्त होता है जो देखता नहीं बल्कि साक्षात्कार या दर्शन करता है। देखती आंखें है और दर्शन आत्मा करती है। जो दर्शन करता है वह दीर्घान भी नहीं रहता और इष्ट देव के गुण व स्वरूप को जानता है, उनके स्वरूप में खो जाता है। वह फिर तृप्तता का अनुभव करता है। एक राजयोगी योग के दौरान खुली आंखों से सामने के स्थूल पदार्थों को नहीं देखता बल्कि मन की सूक्ष्म आंखों से परम धाम में परम पिता शिव का दर्शन कर रहा होता है। तो आपने देखा कि अगर मनुष्य चाहे तो अपनी एकाग्रता से, अपनी दिव्य गुणों से, जो उनके अंदर होती है आत्मा के जो दिव्य गुण है, उसको एकाग्रचित अगर कर लिया जाए, उसमें अगर टिक जाया जाए, तो उससे एक मौन में रहना तो एक उसका जो निकट जो उसका संबंध है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसकी एकाग्रता के कारण वो ईश्वर से भी अपनी जो है उनकी तृप्तता का अनुभव कर सकता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इसकी।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मुझे सुन आपका फिर से स्वागत करती और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है एकाग्रता व मन में निकट संबंध। जैसे कि हम देखते हैं मनुष्य सारे दिन में पता नहीं कितने लोगों से कितना कुछ सुनता व देखता रहता है और यदि वह सारी बातों पर एकाग्र होकर अमल करे तो उसका दिमागी संतुलन हिल जाए। यह कुदरती व्यवस्था है कि मनुष्य काम की बातों को तो सुनकर उन पर अमल करता है परंतु बेकार की बातों को सुनते हुए भी अनसुना कर देता है। उसी प्रकार वह सारे दिन में

कुछ बोलता है, परंतु उसमें दूसरों के द्वारा अमल करने के लायक बातें कम ही होती है। तो बेकार की जो बातें होती हैं, उन बातों को तो बोलना बंद क्यों नहीं किया जाए। कोई भी मनुष्य भला यह क्यों चाहेगा कि वह बेकार की बातें भी बोले और दूसरे उसे सुना हाँ और अनसुना कर दे। परंतु उसके स्मृति में ही यदि बहुत ज्यादा बेकार भरा हो तो वह बेकार स्वतः ही चेतना में आकर जीभ से बाहर रहने लगता है। यदि इससे बचना है तो जागरूकता का अभ्यास करना होगा, अर्थात यह ध्यान रखना होगा कि अवचेतन मन में भरी व्यर्थ की बातें लंबे समय तक स्मृति में ताजा न की जाए, ताकि वे पहले पुरानी में पढ़कर और फिर बहुत पुरानी में पढ़कर अवचेतन मन में चली जाए और अंततः अपना वजूद खो दे। फिर साथ साथ यह भी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ नया बेकार न पैदा किया जाए, अर्थात अर्थहीन महत्वहीन बातों को ना तो बोला जाए और न ही सुना जाए। जीभ के मन का अभ्यास भी इसमें सहायक होता है, या फिर मितभाषी होकर रहा जाए, जो श्रेष्ठ संग से संभव है। तो आपने देखा कि हमें अगर मन को धारण भी करना है, हाँ, मन का जो निकट जो संबंध है उसकी एकाग्रता से ही उसका निकट संबंध है, और उसमें अगर हमारी एकाग्रता हमारी दृढ़ संकल्प के साथ हो तो उसपे हम स्वतः ही हम उसपे अमल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरवस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई।

0: मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। This is my checking for today.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

देख ले जिस दिन माइकल को, रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता।

कितना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए, लोग दीवाना है जो यूं इस पैसे पे मरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा कर।

0: है
1: मोहब्बत निकलते चले ये वफा खूब है
2: हाय नादान तेरी

क्या कहने क्या खूब कही है दिल की है। हमारे यार तुम भी तो कुछ कहो अपने दिल की।

लता जी लोग कहते हैं भाई तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नजर में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज दी है, इल्म को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उनके करम है।

0: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

ने घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बॉटर सिरा कूड़े घुमुराया मारे गेल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बॉटर सिरा कूड़े

Maradona.

मेरी अदीर से दिल तू मुझे अरे दिल है परिचय।